0: வணக்கம் நேயர்களே, ஆகாஷவாணி சென்னை வானொலி நிலையம். இன்று சக ஆண்டு 1948, ஆஷாட மாதம் 2ஆம் நாள், திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2057, ஆணி திங்கள் 9ஆம் நாள், 2026ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் 23ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை. 100.1 FM கோல்டு அலைவரிசையில் எமது காலை நேர ஒலிபரப்பு ஆரம்பமாகிறது. இனி ஒலிக்க இருப்பது செய்தி அறிக்கைகள், டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே மனோஜ். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से विकसित हो रही भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय शक्ति है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित सम्मेलन में कहा कि पिछले दशक में भारत की उपलब्धियां राष्ट्र प्रथम की भावना से निर्देशित रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लिए गए निर्णय और कार्रवाई सदियों तक देश के भविष्य की आधारशिला रहेंगी।
2: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
1: प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन में अपनी हाल की भागीदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के प्रति भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की चेतना में सदियों से सहेजी गई स्मृतियां जीवंत हैं। वर्तमान में उठाए गए कदम अगले 1000 वर्षों के लिए भविष्य को आकार देंगे। सरकार के 12 वर्ष के सेवा कार्यों का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश के लगभग 45,000 गांवों तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि आज कुछ लोग संविधान की बात उठाते हैं, लेकिन जब वे सत्ता में थे तो नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में संविधान का नाम लेने पर ही गोली तक मार दी जाती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान और मेक इन इंडिया जैसी पहल इस कारण सफल हो सकी है क्योंकि देश के लोगों ने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा और देश के प्रति कर्तव्य निभाए। आर्थिक सुधारों से मध्यम वर्ग को मिल रहे लाभों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कर राहत उपायों से परिवारों की कर मुक्त आय बढ़ी है। भारत और मोरक्को के बीच आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में हुई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉक्टर विनोद बाहड़े और मोरक्को के राष्ट्रीय न्यायिक पुलिस ब्रिगेड के प्रमुख हिशाम बाली ने की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण और बेहतर कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नैफेड के

नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। उम्मीद है कि ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। लखनऊ आग हादसे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थी मारे गए और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं, जिससे ये प्रक्रिया ज़्यादा आसान और सुलभ हो जाएगी। फीफा विश्व कप में इस समय अमेरिका के फिलाडेल्फिया में ग्रुप 1 के मुकाबले में फ्रांस और इराक के बीच मैच चल रहा है। इससे पहले ग्रुप जे के मैच में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी ने 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: நிர்வாகம் குறித்த மண்டல பயிலரங்கு ஸ்ரீநகரில் பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைச்சகம் சார்பில் இன்று நடைபெறுகிறது. நாடு முழுவதும் உடல் உறுப்பு தானம் செய்வதற்காக தாமாக முன்வந்து பதிவு செய்துள்ளோரின் எண்ணிக்கை 500,000 என்ற மைல்கல்லை எட்டியுள்ளதாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. சர்வதேச ஒலிம்பிக் தினம் இன்று கடைபிடிக்கப்படுவதையொட்டி சென்னையில் மாநில விளையாட்டுத்துறை சார்பில் அது தொடர்பான நிகழ்ச்சி இன்று நடைபெறுகிறது. விளையாட்டுச் செய்தி. ப்ரோ ஹாக்கி லீக் போட்டியில் இந்தியா இன்று பாகிஸ்தானை எதிர்கொள்கிறது. லண்டனில் 7 மணிக்கு இப்போட்டி தொடங்குகிறது. மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள். மக்களை மையமாக கொண்ட சீர்திருத்த நடவடிக்கைகளுக்கு கடந்த 12 ஆண்டுகளில் உயர் முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக பிரதமர் திரு நரேந்திரமோடி கூறியுள்ளார். உயிரி எரிசக்தி பயன்பாட்டை அதிகரிக்க நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்று புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தித்துறை அமைச்சர் திரு பிரஹலாத் ஜோஷி தெரிவித்துள்ளார். தமிழகத்தில் அரசு சட்டக்கல்லூரிகள் மேம்படுத்தப்படும் என்று மாநில சட்டத்துறை அமைச்சர் திரு நிர்மல்குமார் கூறியுள்ளார். மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய பகுதிகள் மற்றும் வட தமிழகத்தின் சில இடங்களில் இன்று மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. ப்ரோ ஹாக்கி லீக் போட்டியில் இந்தியா இன்று பாகிஸ்தானை எதிர்கொள்கிறது. இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகிறது.
1: இயம் ஆகாஷவாணி. சம்ப்ரதி வார்த்தாஹ ஸ்ரூயந்தாம் பிரவாச்சகஹ புனித த்ரிபாடி. अथ वार्ताः. भारतस्य द्रुतगत्या वर्धमानस्य विश्वसनीय वैश्विक शक्तिरूपेण परिवर्तनस्य प्रेरक शक्तिः राष्ट्रप्रथमस्य सिद्धान्तः एव अस्तीति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तम्. नवदिल्ल्याम् एकेन निज वार्तावाहिन्या आयोजिते सम्मेलने सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अवदत् यत् विगत दशके देशस्य उपलब्धयः विश्वासे स्थिरतायां बृहत्तर वैश्विककल्याणाय प्रतिबद्धतायां च निहिताः सन्ति.
2: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है. भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है.
1: सम्प्रति G7 शिखर सम्मेलने स्वस्य सहभागितायाः उल्लेखं कुर्वन् सः अवदत् यत् राष्ट्रियहितं सर्वोपरि स्थापयितुं भारतस्य अविचल प्रतिबद्धतां वैश्विकनेतारः स्वीकृतवन्तः. सर्वकारस्य 12 वर्षाणां कार्यकालस्य उल्लेखं कुर्वन् प्रधानमन्त्री अवदत् यत् स्वच्छ भारत, मेक इन इण्डिया, खादिप्रचारः, स्थानीय उत्पादानां समर्थनम् इत्यादयः उपक्रमाः सफलाः अभवन् येन नागरिकाः राष्ट्रनिर्माणस्य भावम् अङ्गीकृतवन्तः. प्रधानमन्त्री अवदत् यत् सद्यः एव केषुचित् वर्षेषु प्रायः 25 कोटिशः जनाः निर्धनवर्गात् बहिः समागताः येन विशालः नव मध्यमवर्गः उद्भूतः, आर्थिकक्रियाकलापाश्च प्रवर्धिताः. लखनऊनगरे 15 छात्राणां मृत्योः दुःखद अग्निघटनायाः अनन्तरं द्रुतकार्याचरणस्यान्तर्गतम् आरक्षकाः गतरात्रौ 6 जनानां विरुद्धम् FIR इति पञ्जीकृतवन्तः, तेषु 4 च निगडिताः. मुख्यमन्त्रिणः योगी आदित्यनाथस्य निर्देशानुसारं लखनऊ विकास प्राधिकरणस्य अग्निशामक विभागस्य विद्युत् विभागस्य च 4 अधिकारिणः अपि निलम्बिताः अभवन्. लखनऊनगरे अग्निघटनायाः सन्दर्भे अलीगंजनगरस्य आरक्षकैः BNS तथा उत्तरप्रदेश अग्निशामक सेवा अधिनियमस्यान्तर्गतं प्रासंगिकखण्डेषु 6 अभियुक्तानाम् अन्याञ्च उत्तरदायिजनानां विरुद्धं FIR पञ्जीकृतम् अस्ति. यत्र ह्यः दुःखद अग्निप्रकोपः अभवत् तस्मिन् भवने अनधिकृत निर्माणस्य विषये 16-2000 वर्षे विध्वंसादेशः प्रसारितः आसीत्, परञ्च मासद्वयाभ्यन्तरे एव आदेशः निरस्तः अभवत्. एतदतिरिच्य राज्यसर्वकारेण अग्निघटनायाः उच्चस्तरीय अन्वेषणस्य आदेशोऽपि प्रदत्तः. घटनायाः अन्वेषणार्थं SIT इति विशेष अन्वेषणदलस्य निर्माणमपि कृतमस्ति. दलं 7 दिनेषु एव स्वस्य प्रतिवेदनं समर्पयिष्यति. ह्यः अपराह्णे दुःखद अग्निघटनायां न्यूनातिन्यूनं 15 जनाः मृताः. तेषु अधिकतया

0: नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग।
1: दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे।
0: पहचान से मिला काम थोड़े समय के लिए रहता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर रहती है।
1: वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी, खेल कोई नया सुबह शाम कर प्यारे।
0: एक नए दिन की नई सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे लेकर। मैं हूं मनोज और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सुभद्रा रामचंद्रन। नमस्कार सुभद्रा।
2: नमस्कार मनोज, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू हियर अ न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। हैप्पी ट्यूसडे फ्रेंड्स, गेट योर कप ऑफ टी और कॉफी एंड सेटल डाउन एज वी किक स्टार्ट द प्रोग्राम विद सम न्यूज हेडलाइंस।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्र प्रथम के हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता से सफल हुई है।
3: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचा का उल्लेख किया। देश की मजबूत अवसंरचना पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि मेट्रो सेवा से प्रतिदिन 1 करोड़ से अधिक यात्रियों को सुविधा हो रही है। वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियों, विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
3: भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है। ये गति आगे और तेज होगी कि हमारा सपना जितना बड़ा है, हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे। और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
2: President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at the second civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in 3 categories, Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. The second civil investiture ceremony of 2026, today the President will confer 65 Padma Awards. A report.
4: This year, the government has announced a total of 131 Padma Awards

0: These include 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards. Among the awardees, 19 are women, while 16 individuals will be awarded posthumously. The Padma Awards, namely Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri, are amongst the highest civilian awards of the country. Tennis legend Vijay Amritraj, actor Mammootty, playback singer Alka Yagnik and cricketer Rohit Sharma are among 65 prominent personalities who will receive the Padma Awards from the President today. Instituted in 1954, these awards are announced on the occasion of the Republic Day every year. The award seeks to recognize work of distinction and is given for distinguished and exceptional achievements in various fields and disciplines, including art, literature, education, sports, medicine, social work, science and engineering, public affairs and trade and industry. Soumya Sharan, Akashwani News, Delhi.
1: On this occasion, we are broadcasting special programs as part of our series, People's Padma on Akashwani.
2: मैदाब का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है, तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है, इसलिए जो है सुबह को 4-5 घंटे या 3 घंटे काम किया जाता है।
3: So finally, idea of a human milk bank, and I started then the first human milk bank in Asia.
4: जब हमारे majority community का youth और minority community का youth, चाहे उसमें कश्मीरी पंडित बच्चे हैं या सिख बच्चे हैं, वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, वो ये जानें कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करना
5: डिजाइन मेनी इक्विपमेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ मटेरियल्स एक्चुअली कैरेक्टराइजेशन ऑफ द मटेरियल्स लाइक रेजिस्टिविटी थर्मो इलेक्ट्रिक पावर विच इज अ वेरी सेंसिटिव प्रॉपर्टी ऑल दीज थिंग्स वी डेवलप्ड इट आवरसेल्फ एट अ वेरी वेरी लो कॉस्ट
6: मेरा एडमिशन हुआ वहाँ से PhD तक की पढ़ाई में थी PhD से की और बराबर स्टेट प्रोग्राम फिर मैं करने लगी जहाँ मुझे काफी मान सम्मान मिला मेरी आवाज को लोगों ने हाथों हाथ लिया मुझे काशी की लता का सम्मान भी मिला है तो इस तरह करके वो यात्रा वैसे शुरू हुई
7: 10-12 वर्ष पासून मी तो सिकाय लागलो बनाता माल इकडे व्यवसाय नहीं
8: I started learning the tarpa when I was 10 to 12 years old This ancient art is a matter of pride for us Adivasis and we have preserved it.
9: My mama, when he came to know that I too have hemophilia, he used to tell me he should become a doctor or do some research in this field.

0: Through these episodes, we bring insights into the lives and contributions of Padma awardees. The programs will be broadcast today on 100.1 Akashwani Go from 9:10 a.m. onwards. They can also be heard on News on AIR app and News on AIR official YouTube channel.
1: लखनऊ आग हादसे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थी मारे गए और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और उत्तर प्रदेश अग्नि सेवा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 6 नामित अभियुक्तों और कुछ अन्य व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने अलीगंज में इस इमारत को सील कर दिया है, परिसर में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। फॉरेंसिक यूनिट और फायर ब्रिगेड की टीम यहां से जांच के लिए सबूत एकत्र करेगी। इस घटना के बाद संबंधित इमारत को लेकर विकास प्राधिकरण की पहले की कार्रवाई और पुराने रिकॉर्ड जांच के दायरे में आ गए हैं। वर्ष 2016 में अनाधिकृत निर्माण को लेकर इस इमारत को गिराए जाने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में ये आदेश रद्द कर दिया गया। राज्य सरकार ने इस अग्निकांड की उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है। इसके लिए विशेष जांच दल गठित की गई है और 7 दिन के अंदर रिपोर्ट देने को कहा गया है।
0: Union Cooperation Minister Amit Shah will launch the National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India, NAFED, auction portal in New Delhi today. The launch of the portal is an important step towards strengthening transparency, efficiency and ease of operations in the auction process.

0: The portal is expected to provide a digital platform for streamlining auction-related activities, enhancing the overall functioning of NAFED in the interest of farmers, member institutions and stakeholders.
1: यूरिया डाई अमोनियम फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे चार भारतीय मालवाहक जहाज पिछले सप्ताह होर्मुज जल डमरू मध्य को सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाड़ा बंदरगाह, ओडिशा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि देश में कुल उर्वरक भंडार 196 लाख टन है। पिछले वर्ष इसी अवधि तक ये आंकड़ा 168 लाख टन था। मंत्रालय के अनुसार आयातित उर्वरकों की खेप से देश में मौजूद उर्वरक भंडार अधिक समृद्ध होगा तथा किसानों की कृषि आवश्यकताएं पूरी होंगी।
0: Indian Embassy in Doha has announced that Qatari authorities have confirmed the deaths of 12 Indian nationals in the Ras Laffan incident Sunday night. In a social media post, the embassy extended its condolences to the bereaved families and offered prayers for the departed souls. It also stated that Qatari authorities confirmed all those injured in the incident are in stable condition and receiving appropriate medical treatment. External Affairs Minister Dr. Jaishankar has expressed grief over the loss of lives and injuries, including those of Indian nationals.
1: कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमेरिकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। किदांबी श्रीकांत अपने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू का सामना करेंगे। गैर वरीयता प्राप्त सानीत दयानंद जापान के युदाई ओकीमोतो के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगे, जबकि एस शंकर मुथुसामी सुब्रमण्यम राउंड ऑफ 32 में एक क्वालिफायर खिलाड़ी से मुकाबला करेंगे। महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा जर्मनी की यवोन लीग के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज का सामना करेंगी। मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव रावत और मनीषा के इंडोनेशिया के वेरावन एहसान आदम और सेरेना कानी के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगे।
0: In the opening match of the London round of the FIH Pro League, the Indian men's hockey team will take on arch-rivals Pakistan today. This will be the first encounter between India and Pakistan since the Asian Champions Trophy clash in Hulunbuir, China in 2024, where India emerged victorious with a 2-1 win. In the FIFA World Cup, France defeated Iraq 3-0 in a group one match at Philadelphia Stadium early morning to secure their passage to the knockout stages. Earlier, Argentina defeated Austria 2-0 in their Group J match in Arlington, United States last night to secure a place in the round of 32.
1: और अब रुख करते हैं महानगरों के समाचारों का। पहले दिल्ली की खबर। दिल्ली सरकार ने 23 सरकारी सेवाओं को समयबद्ध सेवा वितरण व्यवस्था में शामिल कर दिया है। ये निर्णय दिल्ली राइट ऑफ सिटीजन टू टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विस अधिनियम 2011 के अंतर्गत लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस निर्णय से आम नागरिकों के साथ साथ उद्योग, व्यापार, होटल, पर्यटन और सेवा क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों को लाभ होगा।
0: Going to Chennai now, traffic police registered 2,825 cases during a special enforcement drive conducted across the city between June 19 and 21 to curb traffic violations, improve road safety. The three-day operation was carried out to ensure safe and accident-free movement of vehicles. A total of 355 traffic police personnel were deployed with 122 vehicle checkpoints established at strategic locations. Bengaluru News now, a Karnataka delegation led by former Minister and MLC N.S. Bose Raju met Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu and Irrigation Minister Nimmala Rama Naidu to invite them to the June 25 celebration marking the successful replacement of all 33 gates of Tungabhadra Dam. Hyderabad News now, Telangana Academy for Skill and Knowledge and Society for Elimination of Rural Poverty have signed a Memorandum of Understanding to enhance skills, digital literacy and financial awareness among self-help group women across the state. Officials said the agreement aims to strengthen women economically and socially. Under the MOU, women will receive training in banking correspondent services, digital and financial literacy, business management, entrepreneurship and sustainable livelihoods. And Manoj, over to you now for

0: अब महाराष्ट्र मुंबई की खबर। महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को मानसून सत्र के पहले दिन राज्य विधानसभा के दोनों सदनों में 97,706 करोड़ 40 लाख रुपए की पूरक मांगे पेश की। इनमें सबसे अधिक 20,552 करोड़ रुपए पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर किसान ऋण माफी योजना के लिए आवंटित किए गए हैं। इसके बाद केंद्र की राज्यों के लिए पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के तहत ब्याज मुक्त ऋण के लिए 10,007 करोड़ 10 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रस्तावों में विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए 7,367 करोड़ 32 लाख रुपए और सिंहस्थ कुंभ मेले की योजना और कार्यान्वयन के लिए 3,000 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। अब कोलकाता पश्चिम बंगाल का रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वपन दास गुप्ता ने कल विधानसभा में 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध बजट पेश किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के अनुसार ये बजट समावेशी है और इसका उद्देश्य विकसित भारत के हिस्से के रूप में विकसित बांग्ला का निर्माण करना है। पश्चिम बंगाल की नई सरकार के पहले बजट में सामाजिक सुधार, महिला सुरक्षा से लेकर शिक्षा, कृषि, उद्योग विकास से लेकर अवसंरचना उन्नयन, पर्यटन, पर्यावरण से लेकर स्वास्थ्य सेवा तक हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया है। सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 20% की वृद्धि की है। पेंशन भोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के समान वेतनमान बनाए रखा जाएगा। प्रत्येक पुलिस स्टेशन में नारी सहायता डेस्क और गश्त के लिए दुर्गा सुरक्षा दल स्थापित किए जाएंगे। ये और अब महानगरों के मौसम का हाल जानते हैं। पहले दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम का हाल जानते हैं। दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। यहां का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या गरज के साथ तूफान आने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। कोलकाता में आज बारिश के साथ तूफान आने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं सुभद्रा से।
1: यस मनोज, चेन्नई इज लाइकली टू विटनेस अ पार्टली क्लाउडी स्काई विद द पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट रेन और थंडरस्टॉर्म। द टेम्परेचर्स आर एक्सपेक्टेड टू रेंज बिटवीन अ मिनिमम ऑफ 27 डिग्रीज मैक्सिमम ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस। बेंगलुरु विल एक्सपीरियंस जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर इज एक्सपेक्टेड टू बी 20 डिग्रीज वाइल द मैक्सिमम मे रीच 29 डिग्री सेल्सियस। हैदराबाद इज लाइकली टू सी अ जनरली क्लाउडी स्काई अगेन विद द पॉसिबिलिटी ऑफ रेन और थंडरस्टॉर्म or dust storm. Temperatures are expected to range from 26 degrees to 39 degrees Celsius. And Manoj?
0: और अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के जिक्र का। उससे
1: yes.
0: पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचना।
1: Yes, on this day, that is June 23rd, the entire world, comes together to observe United Nations Public Service Day. This annual event, of course, honors the dedication of public servants around the globe, and it serves as a reminder of the hard work, the toil that happens behind the scenes in our local and national governments. This is rooted in the values of transparency, inclusion, and accountable governance. The Public Service Forum is the United Nations flagship global platform dedicated to strengthening the capacity of public institutions and promoting effective, responsive, and of course, people-centered service delivery. And you know, this year, the government of Georgia is proud to host the Public Service Forum 2026 under the theme, Transforming Public Institutions, Advancing Innovations, Accountability, Participation, and Inclusion.
0: 23 जून का दिन देश और दुनिया के इतिहास में काफी महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं। 1953 में आज ही के दिन जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कश्मीर में कैद के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। 1980 में आज ही के दिन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बड़े पुत्र संजय गांधी एक विमान दुर्घटना में मारे गए। 1994 में आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने दक्षिण अफ्रीका की सदस्यता को मंजूर किया। उत्तर कोरिया द्वारा परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाए जाने की घोषणा हुई।
1: And, you know, in the year 630, that is really going way back, world's oldest parliament, the Icelandic parliament, was established. And 1894, International Olympics.

0: आज जयंती है रहमान की। उनका जन्म 23 जून 1921 को हुआ था। वे एक भारतीय फिल्म अभिनेता थे जिनका करियर 1940 के दशक से लेकर 1970 के दशक के अंत तक रहा। वे गुरुदत्त की टीम का अभिन्न हिस्सा थे और उन्हें प्यार की जीत, बड़ी बहन, प्यासा, चौदहवीं का चांद, साहेब बीबी और गुलाम, दिल ने फिर याद किया, छोटी बहन और वक्त जैसी फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। आइए सुनते हैं उन पर फिल्माया छोटी बहन फिल्म का ये गीत।
1: जाऊं कहां बताए दिल,

आज जन्मदिन है डॉक्टर जब्बार पटेल का। उनका जन्म 23 जून 1942 को पंढरपुर में हुआ है। वे भारत के एक मराठी भाषा के थिएटर और फिल्म निर्देशक हैं। 1973 में उनके द्वारा निर्देशित विजय तेंदुलकर का नाटक घासीराम कोतवाल आधुनिक भारतीय रंगमंच में एक क्लासिक माना जाता है। वे मराठी सिनेमा में क्लासिक फिल्मों के निर्माता हैं, जैसे समना, जैत रे जैत, उम्बरथा, सिंहासन। उनकी कुछ अन्य फिल्मों में मुक्ता, एक होता विदूषक और मुसाफिर शामिल हैं। उनकी सबसे प्रशंसित फिल्म है 1999 की डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। उन्होंने अपनी मराठी फिल्म मुक्ता के लिए 1995 में राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का नरगिस दत्त पुरस्कार जीता। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म जैत रे जैत का ये गीत।

आज जन्मदिन है राज बब्बर का। राज बब्बर का जन्म 23 जून 1952 को उत्तर प्रदेश के टुंडला में एक पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ था। वे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के 1975 बैच के छात्र रहे हैं। नई दिल्ली में अभिनय का प्रशिक्षण लेने के बाद वे बॉम्बे चले गए और 1970 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस रीना रॉय के साथ अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। बी आर चोपड़ा की फिल्म इंसाफ का तराजू में एक भयानक रोल से उन्हें काफ़ी चर्चा मिली। इसके बाद वे बी आर चोपड़ा के बैनर की फिल्मों का अहम हिस्सा बन गए। दीपक पाराशर और सलमा आगा के साथ निकाह और स्मिता पाटिल के साथ आज की आवाज़ में नजर आए। उन्होंने पंजाबी सिनेमा में भी सफलता हासिल की। आपकी मुख्य फिल्म में आप तो ऐसे ना थे, अगर तुम ना होते, इंसानियत के दुश्मन, आंखें आदि हैं। आइए नज़र डालते हैं उनकी कुछ गीतों और उनके संवाद पर।

0: और अब समय आपसे विदा लेने का हो गया है, तो अनुमति दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की। अगर आप आज सवेरे कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर।
1: थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अग्निकांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 और आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक ले जा रहे 4 जहाज हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। कतर ने रास लाफान LNG विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को साझा किया है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता में सफल हुई है।
3: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। देश की मजबूत अवसंरचना पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियां, विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
3: 2014 में करीब 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर करते थे, आज करीब 1,28,00,000 लोग हर रोज मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अब वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी अच्छी सड़कों, अच्छे हाईवे से समय तो बच ही रहा है, गाड़ियों की मेंटेनेंस पर होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। बीते वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है, इससे कई छोटे छोटे शहरों में भी मिडिल क्लास को हवाई यात्रा की सुविधा पहली बार मिली है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
3: भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है, ये गति आगे और तेज होगी कि हमारा सपना जितना बड़ा है हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे। और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
2: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन की विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्व

अबला का, कभी सारे समाज का, गली गली में इंसानियत का खून हो रहा है, हमारी आजादी का खून हो रहा है, और हम चुपचाप खड़े देखते रहते हैं। पुलिस कुछ करना नहीं चाहती, कानून कुछ कर नहीं पा रहा, इसलिए मुझे पिस्तौल उठानी पड़ी।

0: मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे।
1: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: हमारी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में पद्म पुरस्कार पाने वाले सम्मानित व्यक्तियों के जीवन, उनके कार्यों और समाज में उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
2: नैराब का काम सीखा, अंगूली का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है, तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
3: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
0: ये विशेष कार्यक्रम आज सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 पर प्रसारित किया जाएगा। श्रोता इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने BNS और उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 6 नामजद आरोपियों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। राज्य सरकार ने आग की घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दे दिए हैं। घटना की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल SIT का गठन किया गया है, जिसके सदस्य 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। SIT में अतिरिक्त मुख्य सचिव धर्मार्थ कार्य, पर्यटन और संस्कृति अमृत अभिजात और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। कल दोपहर लगी भीषण आग में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर 16 से 25 साल की उम्र के छात्र थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ NEFED के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में NEFED की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केंद्रित पहल का भी शुभारंभ करेंगे। यूरिया, डाई अमोनिया फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे 4 भारतीय मालवाहक जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश की कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, ओडिशा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल हैं। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के अधिकारियों ने रास लाफान क्षेत्र में

0: रविवार रात हुई दुर्घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घटना में घायल सभी लोगों को उचित चिकित्सा उपचार मिल रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय नागरिकों सहित अन्य लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोहा स्थित भारतीय दूतावास कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीय नागरिकों के परिवारों की सहायता कर रहा है। कतर की सबसे बड़ी गैस रिफाइनरी में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए और 66 अन्य घायल हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कश्मीर से जम्मू जाने वाले वाहनों को सवेरे 11:30 बजे से पहले नवयुग सुरंग पार करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं जम्मू से कश्मीर जाने वाले वाहनों को प्रतिदिन दोपहर 3 बजे के बाद सुरंग में प्रवेश नहीं मिलेगा। परामर्श में घाटी के कई महत्वपूर्ण स्थानों के लिए समय सीमा भी तय की गई है। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
1: कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। किदाम्बी श्रीकांत अपने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू का सामना करेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी। महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज का सामना करेंगी। वहीं हॉकी में FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना पाकिस्तान से होना है। उधर फीफा विश्व कप में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया है। वहीं न्यूयॉर्क में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराया। इस बीच आज सवेरे 8:30 बजे से जॉर्डन और अल्जीरिया के बीच मैच खेला जाएगा। इससे पहले अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लोव क्लोस का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
0: मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालय क्षेत्र और सिक्किम में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, तटवर्ती कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, केरल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बृहस्पतिवार तक तेज हवाएं चलने और गरज के साथ वर्षा का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद मुकेश। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, अमेरिका ईरान के बीच बात बनी, 60 दिन में होगा अंतिम समझौता। ईरान के तेल से पाबंदी हटी, स्विट्जरलैंड के बुर्गेन स्टॉक रिसॉर्ट में घंटों चली वार्ता। बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई, जेडी वेंस ने बैठक को ऐतिहासिक बताया। पंजाब केसरी ने तनाव के बीच उम्मीद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जेडी वेंस अमेरिका के भावी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा है। अगर शांति समझौता विफल रहता है तो ट्रंप इसका पूरा दोष वेंस पर डाल देंगे। ये शांति समझौता वेंस के राजनीतिक करियर के लिए दोधारी तलवार बन चुका है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस्तीफे का ऐलान किया। बर्नहम ने पीएम पद की दावेदारी पेश की। स्टार्मर बीते 10 साल में ब्रिटेन के पीएम पद से इस्तीफा देने वाले 6ठे व्यक्ति। जनसत्ता की सुर्खी है, लखनऊ के अलीगंज में इमारत में लगी आग, 12 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने हालात का जायजा लिया, जांच के लिए SIT गठित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों की हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। दैनिक जागरण ने लापरवाही की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, बहुत दिन नहीं हुए जब देश की राजधानी में अवैध होटल में आग से 20 से अधिक लोग मारे गए थे। माना यह गया था कि इस घटना से सीख ली गई होगी, लेकिन लखनऊ की आग से पता चलता है कि ऐसा नहीं किया गया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश

सरकार ने लखनऊ अधिकरण कांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक लेकर आ रहे 4 जहाज हुरमुज जलडमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज प्रिंसिपल ऑफ नेशन फर्स्ट हैज बीन ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड इंडियाज ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ फास्ट ग्रोइंग क्रेडिबल एंड रिलायबल ग्लोबल पावर। President Draupadi Murmu to confer Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan today. Uttar Pradesh government suspends four officials in connection with Lucknow fire incident. Four accused arrested. Four ships carrying fertilizers heading towards Indian ports after crossing Strait of Hormuz. Qatari authorities confirm death of 12 Indian nationals in Ras Laffan LNG explosion. And Lakshya Sen and Tanvi Sharma to lead India's challenge at US Open Super Badminton Tournament beginning today in California. Prime Minister Narendra Modi has said the principle of nation first has been the driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. Addressing a summit organized by a private media house in New Delhi, the Prime Minister said the country's achievements of the past decade were rooted in trust, stability and a commitment to the larger global good.
2: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है, और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं अभी दो तीन दिन पहले जी समिट से लौटा हूं और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है।
1: Referring to his recent participation in the G7 summit, Mr. Modi said, world leaders recognized India's unwavering commitment to putting national interests first, a philosophy that continues to shape the country's policies and development agenda. Highlighting the government's 12 years in office, the Prime Minister said, initiatives such as Swachh Bharat, Make in India, promotion of Khadi and support for local products succeeded because citizens embraced the spirit of nation building.
2: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में अगर आप तराजू से तोलोगे, हर निर्णय, हर कदम, हर प्रयास, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया। देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं।
1: Mr. Modi said nearly 25 crore people had moved out of poverty in recent years, leading to the emergence of a large new middle class and boosting economic activity.
2: 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, न्यू मिडिल क्लास में आए हैं, तो इसका फायदा केवल उन परिवारों तक नहीं रहता बल्कि मिडिल क्लास का भी इतना फायदा होता है, क्योंकि ये नया कंज्यूमर है जो इकोनॉमी को ड्राइव करता है, उसे अल्टीमेटली मिडिल क्लास के लिए अवसर बनते हैं। यानी गरीबी कम होना केवल वेलफेयर का ही विषय नहीं है, यह अवसरों के विस्तार की गाथा है, नई एस्पिरेशन की प्रेरणा है।
1: President Draupadi Murmu will present the Padma Awards during the second civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories: Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. The President will confer 65 Padma Awards today. A report.
3: This year, the government has announced a total of 131 Padma Awards. These include 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards. Among the awardees, 19 are women, while 16 individuals will be awarded posthumously. The Padma Awards, namely Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri, are amongst the highest civilian awards of the country.

0: पहुंच रहे हैं हम।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति।

0: ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

0: அரங்கிசை நிகழ்ச்சியில் இதுவரை ஆணையாம்பட்டி எஸ் கணேசன் அவர்களின் ஜலதரங்க இசை கேட்டீர்கள். எம் ஏ சுந்தரேஸ்வரன் அவர்கள் வயலின், கே வி பிரசாத் அவர்கள் மிருதங்கம்.
1: தொடர்வது செய்திகள்.
2: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே மனோஜ். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की प्रतिबद्धता को समझा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में स्वच्छ

0: भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता से सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही हैं, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचा का उल्लेख किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। कल हुई इस बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। लखनऊ आग हादसे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इस पोर्टल की शुरुआत नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते से भारतीय किसानों, मछुआरों, कारीगरों और छोटे व्यापारियों को वैश्विक स्तर पर कारोबार करने में मदद मिलेगी। इससे रोजगार सृजन भी बढ़ेगा। एक अंग्रेजी दैनिक के लिए लिखे गए आलेख में वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होने वाला ये समझौता ब्रिटेन में भारतीय सामानों की पहुँच बढ़ाएगा। यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे 4 भारतीय मालवाहक जहाज पिछले सप्ताह होर्मुज जल डमरू मध्य को सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाड़ा बंदरगाह, ओडिशा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल है। फीफा विश्व कप 2026 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया में ग्रुप आई के मुकाबले में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया। इसके साथ ही फ्रांस के नॉकआउट चरण में पहुंचने का रास्ता साफ हो गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: क्रेडिबल इकोनॉमी भी है और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं अभी दो तीन दिन पहले जी समिट से लौटा हूं और दुनिया का हर नेता हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है।
1: Referring to his recent participation in the G7 summit, Mr. Modi said world leaders recognize India's unwavering commitment to putting national interests first, a philosophy that continues to shape the country's policies and development agenda. Highlighting the government's 12 years in office, the Prime Minister said initiatives such as Swachh Bharat, Make in India, promotion of khadi and support for local products succeeded because citizens embraced the spirit of nation building.
0: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में अगर आप तराजू से तोलोगे हर निर्णय हर कदम हर प्रयास उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया। देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं।
1: मिस्टर मोदी सेड नियरली 25 करोड़ पीपल हैड मूव्ड आउट ऑफ पॉवर्टी इन रीसेंट इयर्स लीडिंग टू द इमर्जेंस ऑफ अ लार्ज न्यू मिडिल क्लास एंड बूस्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at the second civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories: Padma Vibhushan, Padma Bhushan, and Padma Shri. The President will confer 65 Padma Awards today. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said that the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, will help Indian farmers, fishermen, artisans and small businesses to prosper globally and accelerate job creation. Writing an article for an English daily, the minister said that the agreement, which will come into force on the 15th of July this year, will provide comprehensive market access for Indian goods in the United Kingdom across a wide range of sectors. He said that it will immediately eliminate tariffs on about 99% of tariff lines, creating enormous opportunities for Indian exports. Uttar Pradesh government has taken action against four state government officials in connection with the Lucknow fire incident, which claimed lives of 15 students. The state police has registered a case against six individuals and arrested four accused persons last night. Four officials from the Lucknow Development Authority, Fire Department and Electricity Department have been suspended following directives from Chief Minister Yogi Adityanath. At least 15 people, mostly students aged 16 to 25, died in the tragic fire yesterday afternoon. The fire broke out at an animation coaching center operating above a shop in the Purnia area of Aliganj, triggering panic amongst students. Nine students were injured and have been admitted to King George's Medical University, Lucknow. Most of the deaths were caused by suffocation. Iran has denied Vice President J.D. Vance's claim that Tehran will allow nuclear inspectors back into the country after the first round of negotiations in Switzerland. And Indian equity markets open on a flat note today after a multi-session rally driven by easing tensions in West Asia. Sensex opened at 77.086, down 8 points, while Nifty started the session at 24,071, lower by 32 points. That is the end of the...
2: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल रहा है। उर्वरक लेकर आ रहे चार जहाज हुर्मुज जलडमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। कतर ने रास लाफान LNG विस्फोट में 12 भारतीय

0: नागरिकों की मौत की पुष्टि की। ईरान ने अमरीकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के दावे का खंडन किया कि अमरीका अब परमाणु निरीक्षकों को फिर आने देने की अनुमति देगा। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता से सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। देश की मजबूत अवसंरचना पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियां, विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
1: 2014 में करीब 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर करते थे, आज करीब 1,28,00,000 लोग हर रोज मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अब वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी अच्छी सड़कों, अच्छे हाईवे से समय तो बच ही रहा है, गाड़ियों की मेंटेनेंस पर होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। बीते वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है, इससे कई छोटे छोटे शहरों में भी मिडिल क्लास को हवाई यात्रा की सुविधा पहली बार मिली है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
1: भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है, ये गति आगे और तेज होगी कि हमारा सपना जितना बड़ा है हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे। और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। भारत और मोरक्को के बीच आतंकरोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण तथा बेहतर कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की गई। यूरिया, डाई अमोनियम फास्फेट और सल्फर लेकर आ रहे चार भारतीय मालवाहक जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने बताया कि ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, ओडिशा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि देश में कुल उर्वरक भंडार 196 लाख टन का है। पिछले वर्ष इसी अवधि तक यह आंकड़ा

सौ 68 लाख टन था। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। दोहा में भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के अधिकारियों ने रास लाफान क्षेत्र में

0: आस लाफान क्षेत्र में रविवार की रात हुई दुर्घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घटना में घायल सभी लोगों को उचित चिकित्सा उपचार मिल रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय नागरिकों सहित अन्य लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोहा में भारतीय दूतावास कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीय नागरिकों के परिवारों की सहायता कर रहा है। कतर की सबसे बड़ी गैस रिफाइनरी में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए और 66 अन्य घायल हो गए थे। ईरान ने स्विट्जरलैंड में अमरीका के साथ वार्ता के पहले दौर के बाद अमरीकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के इस दावे का खंडन किया है कि ईरान अब परमाणु निरीक्षकों को हथियारों के निरीक्षण की अनुमति देगा। श्री जेडी वेंस ने दावा किया कि ईरान बातचीत के बाद परमाणु निरीक्षकों को आने देने की अनुमति देने पर सहमत हो गया है। श्री वेंस ने यह भी कहा कि इस बारे में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से शीघ्र बातचीत हो सकती है। दोनों देशों के बीच कल बातचीत में अमरीकी वित्त विभाग ने ईरान को आर्थिक प्रतिबंधों से 60 दिन की छूट दी है। इससे ईरान की अर्थव्यवस्था को राहत मिलेगी तथा ईरानी कच्चे तेल का उत्पादन अमरीकी डॉलर में बिक्री और आपूर्ति स्वीकृत हो जाएगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने लग्जमबर्ग के विदेश मंत्री जेवियर बेटेल और वहां के लोगों को उनके राष्ट्रीय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत लग्जमबर्ग साझेदारी लगातार और मजबूत होती रहेगी। और अब खेल जगत के समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
1: कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। किदांबी श्रीकांत अपने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू का सामना करेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी। महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज का सामना करेंगी। वहीं हॉकी में FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना पाकिस्तान से होना है। उधर फीफा विश्व कप में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया है। वहीं न्यूयॉर्क में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराया। इसके साथ ही मेसी 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोस का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
0: जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कश्मीर से जम्मू जाने वाले वाहनों को सवेरे 11:30 बजे से नवयुग सुरंग पार करने की अनुमति नहीं होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल रहा है। उर्वरक लेकर आ रहे 4 जहाज होर्मुज जल डमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। कतर ने रास लफान LNG विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की। ईरान ने अमरीकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के दावे का खंडन किया। ईरान अब परमाणु निरीक्षकों को फिर आने की अनुमति देगा। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं पीतल पर नक्काशी के विशिष्ट कलाकार चिरंजी लाल यादव के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं संजय तिवारी।
1: सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।
2: धन्यवाद जी।
1: जब आपको ये पता चला कि आपको चयनित किया गया है, कैसा लगा आपको उस टाइम?
2: मैं मुरादाबाद बुद्ध विहार कॉलोनी में एक प्रोग्राम लगा था, तो उसमें था। वहाँ पर जो है हमारे डीआरसी ऑफिस के योगेश कुमार जी थे उपायुक्त, और डीएम साहब थे, कमिश्नर साहब थे आनंद सिंह। उन्होंने बताया कि भाई वो घोषणा हो गई है, तो वो जो है फटाफट दौड़े दौड़े आए वो, और उन्होंने सबसे पहले डीएम साहब ने और कमिश्नर साहब ने बधाई दी।
1: आपने ऐसा क्या किया है, आपके काम की क्या खासियत है, क्या काम करते हैं आप, इसके बारे में डिटेल से बताइए।
2: सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि 1970 से बराबर काम कर रहा हूँ, बीच में बहुत कठिन आई, लेकिन काम नहीं छोड़ा मैंने इस काम को देखते हुए। और जो मैंने बच्चों को ट्रेनिंग दी है तो बोले कि भाई ये इनको जो है इनाम उनाम मिले हुए है पहले से ही, तो सब कुछ देख कर जो है उन्होंने ऐसा किया। ये
1: क्या क्या काम करते हैं आप, क्या कैसी नक्काशी करते हैं?
2: जब हम 20-22 साल की उम्र में थे पढ़ाई करने के बाद, तो हम श्री अमर सिंह जी से हमने काम सीखा। ये काम सीखने के उपरांत तो वहाँ जो है 3 साल की ट्रेनिंग चली थी सरकारी, तो उसमें जो है हमने ट्रेनिंग पाई, तो 2 रुपये महीना भी हमें मिलता था और काम भी सिखाते थे वो। इसके उपरांत तो जो है हम 4-5 साल तक वो काम किया, उच्च कोटि के हमने काम सीखे, जो कि आज हमारे जो है जीवन में काम आ रहे हैं वो। और हमने मैराब का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है, तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है, इसलिए जो है सुबह को 4-5 घंटे या 3 घंटे काम किया जाता है। हमारी संगत जो रही वो ऐसी रही कि अपने ही मतलब सीनियर के साथ रहना, उनसे जानकारी लेना, उनके पास बैठना उठना, औजारों का भी हमें ज्ञान मिला।
1: काम के सिलसिले में आप पूरे देश में भी गए हैं और शीशों में भी गए हैं, तो वहाँ से क्या सीख मिली और क्या लेकर आए, क्या देकर आए वहाँ?
2: दिल्ली में गए थे, दिल्ली में जो है हमने बहुत प्रोग्राम किए हैं, कुतुब मीनार है, लाल किला है, तो वहाँ से हमें जानकारी मिली डिजाइनों की, और डिजाइन सेंटर भी घूमे हम वहाँ पर, डिजाइन लेके वही आइटम पर जो है उकेरा, तो नया डिजाइन माना गया, तो हम जो है घूमते घूमते जो है ऑल इंडिया में पूरे घूम लिए, अपने काम का प्रदर्शन भी किया, और राजस्थान के हैं, और बेंगलोर में चित्रकला परिषद है, चित्रकला परिषद में जो है वहाँ पर हमने जो है पुरानी इमारतों का भी डिजाइन दिया, कैसे कैसे मतलब ये टहनी बनती है, कैसे डिजाइन बनते हैं, जो झालर वहाँ बन हुई है वही झालर हमने अपने आइटम पर बनाई है, तो उससे जो है नयापन आया।
1: विदेशों में कहाँ कहाँ आप गए, क्या क्या किया आपने?
2: विदेशों में हम बांग्लादेश गए, फ्रैंकफुर्ट जर्मन सिल्वर जर्मनी
1: जी,
2: तो वहाँ पर अपने काम का हमने डेमो किया, प्रदर्शन किया और बिक्री भी की।
1: तो अब जो है मौजूदा सरकार से, विशेष रूप से केंद्र सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
2: केंद्र सरकार सही काम कर रही है, बढ़ावा दे रही है या शिल्पियों को, इसके अलावा हम तो यही चाहेंगे सरकार जो है किसी तरह की ऐसी योजना बनाए जिससे कि ये लड़के नई पीढ़ी के बच्चे जो है काम सीखें।
1: आप क्या चाहते हैं कि नई पीढ़ी इस काम के लिए आगे आए?
2: हम तो चाहते हैं कि भाई कम से कम 30-40 बच्चों को ट्रेनिंग दें, तो उसमें से अगर 10 भी कामयाब हो गए तो काम बढ़ेगा।
1: आपने अपने घर में बच्चों को कितना ये हुनर जो है बांटा है, सिखाया है?
2: वैसे तो हमारी फैमिली में सभी लोग काम करते थे, हमारी वाइफ भी करती थी, हमारे जो बेटे हैं ये भी करते, कुप सिंह जी है, इनको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, स्टेट अवार्ड मिला हुआ है, ये काम कर रहे हैं और हमारा भी हाथ बटाते हैं।
1: इस काम को लेकर भविष्य कैसा दिखता आपको?
2: हाँ, भविष्य सही है, क्योंकि हमारा जो काम है वो साधारण काम नहीं है, हमारा उच्च कोटि का काम है, इसके कारीगर बहुत ही कम है।
1: तो आप चाहते हैं कि आप जैसे जो आपकी विशेषता है वो और नई पीढ़ी पे भी आए और लोग बिताए?
2: हाँ, हम तो चाहते हैं कि कोई ना कोई हमारी मृत्यु के बाद जो है कम से कम नाम तो रहे, कि भाई हमें जो है वहां से जानकारी मिली है, प्राप्त हुआ है, उनके शागिर्द हैं, काम सीखे कोई ना कोई लड़का, तो हम बता सकते हैं।
1: सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे कि वो कुछ ऐसा काम करे जो ये आपका नक्काशी का काम लोग इंटरेस्ट लें उसमें, युवा इंटरेस्ट लें?
2: हाँ, कम से कम 1 साल का तो वो ट्रेनिंग जो है प्रशिक्षण ले, वो लड़का 23 साल में कारीगर बन जाएगा वो, इसके लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर खोले, उसमें मास्टर प्राप्त उनके पद पर जो है वो चुने। हाँ।

0: हमें जो नए किसी को जो ना तो काम सीखना चाहिए, लगन से भी काम सिखाया उस आदमी को जो है मौका मिलना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, 1982 में मुझे मास्टर क्राफ्टमैन के पद पर चयनित किया था, तो मैं उड़ीसा स्टेट गया था डिस्ट्रिक्ट पुरी, तो वहां मैंने लगभग 200 कारीगरों को काम सिखाया वहां पर, तो वहां कामयाब हो गए, तो मैंने 2 साल तक वहां पर रहा। मैं
1: आपको ये काम करते हुए कुछ सम्मान भी मिले हैं, क्या क्या अवार्ड मिले हैं अब तक आप?
0: 1970 से तो काम में जुड़ा हुआ हूँ, काम करते करते उच्च कोटि का भी जो काम है उसकी गुणवत्ता जो हासिल की है मैंने, इसके बाद में जो है स्टेट अवार्ड मुझे 2 बार मिल गया, के बाद में नेशनल अवार्ड मिला, नेशनल के बाद में शिल्प गुरु मिला, शिल्प गुरु के बाद में इसकी घोषणा हो गई। और मैंने जो अब तक प्रोग्राम किए हैं प्राइवेट नहीं किए हैं, सारे सरकारी हैंडीक्राफ्ट बोर्ड के जो एग्जीबिशन लगती हैं, ताल कटोरा, प्रगति मैदान, इंडिया गेट पे, सूरजकुंड मेला है, आगरा ताजमहोत्सव है, तो मैंने ऐसे ऐसे प्रोग्राम किए हैं, तो वहां मेरी चर्चा होती है, सब टीवी पर दिखाते हैं।
1: आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है और क्या क्वालिफिकेशन आड़े आई इसमें?
0: हाँ, 7वीं पास किया था, मैं तो बहुत ही गरीब परिवार से हूँ जिसका कि मतलब बड़ा मुश्किल था आलन पालन, तो बस पढ़ाई करने के बाद इस काम में लग गया। काम करने के बाद तो मेरे मन में यही इच्छा थी कि भाई हम जो है मजदूरी ना करके जो है सप्लाई का काम करें, खुद बना कर बिक्री करें, तो जो हमारे सीनियर थे घासीराम जी उनके साथ मिलकर मैंने काम किया ही है, तो सप्लाई का काम भी मेरा चल गया, और सप्लाई काम ऐसा चला कि अब हर स्टेट में हमारा माल जाता है, सरकारी शोरूम में मेरी सप्लाई रहती है।
1: आपके कहने का मतलब ये है कि अगर आदमी हुनर सीख ले तो बहुत ऊंचे मकाम पर
0: जी
1: जा सकता
0: जी
1: है, तो
0: अपना रोजगार जो है खुद मतलब चला सकता
1: और फेमस भी हो सकता है, फेम भी
0: है
1: पा सकता है।
0: जी। मुझे एक साहब मिल गए थे वहीं उड़ीसा प्रोग्राम में, तो आए उन्होंने बधाई दी, बोले चिरंजीवी लाल आप ही हो क्या? मैंने कहा हाँ जी। बोले वेशभूषा से और आपके आचरण से तो नहीं मालूम होता है, तो मैंने कहा मैं तो साहब साधारण रहता हूँ, मैं तो कारीगर आदमी हूँ, तो बहुत खुश हुए वो
1: तो ये अगर रोजगार इसमें कमाना चाहते हैं जो युवा है खासतौर से, तो
0: जी।
1: उनके लिए क्या कहने चाहिए?
0: देखो युवा जो है ना वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन रुचि होनी चाहिए मन में, तो जब रुचि होगी जब तो काम कर पाएगा, रुचि है उसको कंप्यूटर के काम में, तो हम उनसे कहते हैं कि भाई ये वो भी करो, इसमें भी तो आप थोड़ा सा समय दो, वो भी काम करेगा आपका कंप्यूटर भी।
1: तो सरकार ऐसा क्या करे जो, क्योंकि ये जो हमारी ये पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें हैं, पुरानी चीजें हैं, बड़ी महत्वपूर्ण है और हमारी विरासत है, एक तरह से ही ये जिंदा रहे।
0: ट्रेनिंग सेंटर खोलने चाहिए, और ऐसा नहीं नक्काशी के काम का हो, रंग भराई का हो, मोल्डिंग का हो, हाँ दो दो मतलब वो रखनी चाहिए कि सिलाई का हो, वेल्डिंग का हो,
1: इसका जो पूरा काम है वो सारा सिखाया
0: हाँ
1: जाए उसको।
0: जी जाने इसके उद्योग हैं,
1: जी।
0: जैसे यहाँ पर पीतल का उद्योग है तो मुरादाबाद में होना चाहिए, अमरोहा में लकड़ी ढोलक का काम है तो होना चाहिए, अलीगढ़ में है जहाँ छपाई का, वहां होना चाहिए, इससे वृद्धि भी होगी।
1: तो आपकी ये जो उपलब्धि है, ये सम्मान मिला है, तो इसका श्रेय किसे किसे देना चाहेंगे?
0: सबसे पहले तो मैं अपने जो गुरुजी हैं हमारे जिनसे काम सीखा है, तो उनका भी मतलब मैं वो कहूंगा कि भी पता नहीं क्या भाग्य किस्मत की बात है, जो कि वहां से हमें काम सिखाया हमें लगन से, वो हमने भी रुचि से सीखा, और मुझे जो है इस काम के लगभग 55 साल का अनुभव है।
1: अच्छा,
0: हम बराबर काम कर रहे हैं, बीच में बहुत अड़चन आई 1980 में जब दंगा फिसाद हुए थे, तो बड़ा मुश्किल था घर से बाहर निकलना, उस समय बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा,
1: घर वालों का क्या सहयोग रहा है?
0: ये तो मतलब हौसला बुलंद रखते थे, यार चिंता मत करो सब हो जाना, कैसे खाना पीना का काम चलेगा वो सब हो जाना, तो हमारी मिसेस ने भी जो जोड़े हुए पैसे थे वो निकाले, हाँ बुरे वक्त पे जब हम ऐसे पैसे खर्च नहीं करेंगे तो कब करेंगे, तो काम चलता रहा, मतलब हिम्मत नहीं आ रही हम, हाँ काम छोड़ा नहीं, तो आज उसी की बदौलत है जो इस काम मतलब उन्नति पाई है हमने।
1: तो ये थे मुरादाबाद निवासी चिरंजी लाल यादव, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी पीतल पर नक्काशी के विशिष्ट कलाकार चिरंजी लाल यादव के साथ विशेष बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे संजय तिवारी। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।

0: சுகமான ராகங்கள் நிறைவு பெற்றது. தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அன்று.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே கனகலதா. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की प्रतिबद्धता को समझा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियां नागरिकों की प्रतिबद्धता से हासिल हुई हैं।
2: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी

0: खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में 16वें ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। कल हुई इस बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते से भारतीय किसानों, मछुआरों, कारीगरों और छोटे व्यापारियों को वैश्विक स्तर पर कारोबार करने में मदद मिलेगी। इससे रोजगार सृजन भी बढ़ेगा। एक अंग्रेजी दैनिक के लिए लिखे गए आलेख में वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होने वाला ये समझौता ब्रिटेन में भारतीय सामानों की पहुंच बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि इससे लगभग 99% शुल्क तुरंत समाप्त हो जाएंगे और भारत से निर्यात बढ़ेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इस पोर्टल की शुरुआत नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे 4 भारतीय मालवाहक जहाज पिछले सप्ताह होर्मुज जलडमरू मध्य को सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, ओडिशा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल हैं। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज शुरुआती कारोबार में बिना किसी उतार चढ़ाव के खुला। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 20 अंक की बढ़त के साथ 77,116 पर, जबकि निफ्टी 24,098 पर बना हुआ था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। Prime Minister Narendra Modi has said the principle of nation first has been the driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. Addressing a summit in New Delhi last night, the Prime Minister said the country's achievements over the past decade were rooted in trust, stability and a commitment to the larger global good.
0: Bharat fast growing economy bhi hai, ek credible economy bhi hai, aur Bharat rising power ke saath saath super power tak le gaye, lekin main itna zarur kahunga ki Bharat reliable power hai. Main bhi 2-3 din pehle G summit se lauta hu aur duniya ka har neta, har desh is baat ko bhali bhanti samajhta hai. कि आज के भारत के लिए

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। इसके अंतर्गत सुनिए जम्मू कश्मीर में समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुने गए समाज सेवी ब्रिजलाल भट्ट के साथ हुई विशेष बातचीत। चर्चा का संचालन कर रहे हैं जगमोहन शर्मा।
2: नमस्कार, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्सियत की जिन्हें इस वर्ष पद्मश्री जम्मू कश्मीर से समाज सेवा के क्षेत्र में देने की घोषणा की गई है। हमारे साथ हैं ब्रिजलाल भट्ट जी, आपका आज के इस प्रोग्राम में स्वागत है। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि आपको किन किन कामों के लिए ये मिल रहा है।
3: देखिए, अभी जो आपने बताया मुबारकबाद मुझे आप दे रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं, जिस

0: संस्था से मैं जुड़ा हूँ, विवेकानंद अराक मेमोरियल विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी. तो ऑब्जेक्टिव है मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग, मानव सेवा से राष्ट्र उत्थान. ये स्पिरिचुअली ओरिएंटेड सर्विस मिशन के जरिए होता है, इसलिए ये मैं समर्पित करता हूँ विवेकानंद राक मेमोरियल विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी को, जिन्होंने मुझे अवसर दिया नागडंडी के माध्यम से समाज सेवा कश्मीर में करने का. मैं ये समर्पित करता हूँ अपने जो हंड्रेड्स कार्यकर्ता मेरे साथ जुड़े हैं, काम करते हैं, हमारी एक्टिविटीज में शामिल हैं. मैं खास तौर पर ये समर्पित करता हूँ कश्मीर में जो नई पौध है, हमारा जो यूथ है उनको.
1: आपके बारे में हम जानते हैं कि आप प्रशासनिक सेवा में रहे हैं और अब आप समाज सेवा के साथ जुड़े हैं. आपका ये सफर समाज सेवा के साथ जुड़ने का कब शुरू हुआ और कैसे आप प्रेरित हुए, आपका रुझान इस तरफ किस तरह से हुआ?
0: मैं गांवों की पैदावार हूँ, अनंतनाग का रहने वाला हूँ. नागडंडी अनंतनाग से 7-8 किलोमीटर दूर है, तो बचपन से जुड़ा था, लेकिन सेवा में था. सेवा के सारा आयामों में और खास तौर पर 90 में पलायन हो गया, निकल गए, तो उस टाइम मेरे दिल में ये बात आ गई कि ये जो सर्विस के बाद मैं कश्मीर में ही रहूं ताकि ऐसे कुछ कार्य करें जिससे ये विस्थापित समाज जो है फिर से अपने जड़ों के साथ जुड़े.
1: जी,
0: तो नॉर्मल अगर आप देखेंगे 850 ये जो प्रकल्प, जिसमें नागडंडी भी एक प्रकल्प है
1: जी,
0: तो सब प्रकल्प में या जितने भी 1000 केंद्र हैं सारे भारतवर्ष में, उनमें सारे एक्टिविटी चलती रहती हैं. संस्कार वर्ग में हो, योग वर्ग में हो, स्वाध्याय वर्ग में हो, केंद्र वर्ग में हो, ये एक्टिविटी नॉर्मल सब यूनिट्स में चलती है. लेकिन कन्याकुमारी मैनेजमेंट ने सोचा कि इन एक्टिविटीज के साथ जो ऑब्जेक्टिव्स में हमारे हैं, कुछ हम ऐसे ऑब्जेक्टिव एडिशनली जोड़ें जिससे ये जो विस्थापित समाज है फिर से अपने जड़ों के साथ जुड़े, जिससे कश्मीर में पीस प्रमोट हो और इंट्रा एंड इंटर स्टेट इंटीग्रेशन प्रमोट हो फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी.
1: जी, आपने विवेकानंद की बात की, स्वामी विवेकानंद, उन्होंने पूरी दुनिया को संदेश दिया था भाईचारे का, और जैसा भारत का संदेश है वसुधैव कुटुंबकम कि पूरा विश्व जो है एक कुटुंब है. आप इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं जो ये काम कर रहे हैं, किन किन एक्टिविटीज के जरिए आपका कश्मीर घाटी में प्यार का, अमन का संदेश पहुंचा रहे हैं?
0: हम विवेकानंद थॉट मिशन को लेके वहां काम करते हैं, तो नेशनल एक्टिविटीज में हमारा 10 दिन का योग शिक्षा शिविर होता है नागडंडी में, जिसमें 15-20 स्टेट्स का पार्टिसिपेशन होता है.
1: जी,
0: आपको छोटा सा भारत नजर आता है वहां पर. स्पिरिचुअल रिट्रीट प्रोग्राम होता है, वो उसमें भी बाहर के स्टेट्स का पार्टिसिपेशन और हमारे JKUT का भी पार्टिसिपेशन होता है, वो आध्यात्मिक उस रूप में करते हैं. हमारा संस्कार वर्ग में बच्चों का प्रोग्राम्स होते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्सेज जो कश्मीर में हम करते हैं, वहां हमारे बच्चे या बच्चियां काम करते हैं, सर्विस करते हैं, हम उनके बच्चों के बारे में सोचते हैं.
1: जी,
0: तो उनको हम संस्कार वर्ग में उनके साथ उनको जोड़ना चाहते हैं, नागडंडी के साथ जुड़े भी हैं. अभी हमने 3 दिन का हमने संस्कार वर्ग में प्रोग्राम किया. ऐसे अब ये जो हम पीस प्रोसेस वहां करते हैं, पीस प्रोसेस जो मेरा मानना है, तब तक पीस प्रोसेस बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकती जब तक सिविल सोसाइटी मीट्स ना हो.
1: जी,
0: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ, उनकी नजदीकियां ना बढ़े.
1: जी,
0: वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सी के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करना है. मैं तो ये समझूंगा इस वक्त जो टॉर्च बेयरर्स कश्मीर में हैं, जो मैं काम करता रहता हूँ, मुझे लगता है ये यही यूथ है, चाहे मेजॉरिटी कम्युनिटी का हो या माइनॉरिटी कम्युनिटी का हो. हमें तो अब फॉलो करना चाहिए, हमें इनके पीछे पीछे चलना चाहिए. अगर हमने सोच रखी होती 89-90 में, हमने बुजुर्गों ने अपना रोल अदा किया होता, तो ये 36 साल का पलायन नहीं हमने देखना पड़ता. तो इस वक्त जो यूथ काम कर रहा है, यूथ समझ गया है ICYC एक्टिविटी से कुछ नहीं निकलेगा, जो कुछ निकलेगा प्यान से निकलेगा, और इसके रिजल्ट्स निकल गए. अभी मैं बता रहा हूँ अपना तजुर्बा, 2010 से मैं मुख्य सेवक के रूप में हूँ. मेरा टीम है बहुत बड़ा, उसमें हमारी मातृशक्ति भी है, उसमें हमारी युवा शक्ति भी है. तो हमने ये देखा कि इस वक्त एक चेंज नजर आई है, हर जगह हमारा ये जो दीप जल रहे हैं, जहां जहां अंधकार है वहां रोशनी हो रही है, और इस वक्त आप नौजवान के हाथ में कलम देख रहे हैं. रिजल्ट है, हमारा अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है, गांव का एक नौजवान वो हमारा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर है, कंपटीशन से आया है. इसी तरह कुलगाम में यंग बॉय कंपटीशन से आया है, श्रीनगर में यूथ है कंपटीशन से आया है. तो ये रियलाइजेशन आने लगी, और खास तौर पर पेरेंट्स जो हैं वो ये समझने लगे बच्चों को हमें

संस्कार वर्ग में ट्रेनिंग देनी है, पढ़ाई की ट्रेनिंग देनी है, तो इसमें मैंने आपको बता दिया योग शिक्षा शिविर होते हैं, स्पिरिचुअल रिट्रीट प्रोग्राम होते हैं, आपका ये जो बाकी प्रोग्राम यूथ मीट्स होते हैं, तो संस्कार ये नेशनल प्रोग्राम है, हर जगह होते हैं। एडिशनली जो हमने कश्मीर के लिए किया है वो ट्रेडिशनल जो हम इवेंट्स किया करते थे, जैसे रामनवमी का हवन है वहाँ हर साल होता है, नागपंचमी का हवन है हर साल होता है, ज्येष्ठ अष्टमी माता खीर भवानी का हर साल होता है, बल्कि 97 में एक हमने सोचा कि हम एक ऐसी जगह लें कश्मीर में, सेंट्रली लोकेटेड हो कश्मीर में, जहां हर साइड से हर डिस्ट्रिक्ट से आराम से लोग आ सके, ये प्रोस्पेक्टिव में हमने देखा, उस टाइम के सिचुएशन को नहीं, आगे क्या होगा, तो हम ऐसी जगह का चयन करें जो मैनेजेबल हो फेयरली फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, हम ऐसी जगह

0: एजिबल हो फेयरली फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू. हम ऐसी जगह ले जिस पर टोटल आस्था हो कम्युनिटी की, डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी. तो खीर भवानी का चयन हो गया, वो जगह ले ली. आपको मैं बताऊं, मैं उस टाइम ब्यूरोक्रेसी में था लेकिन नागडेंडी के साथ जुड़ा था. तो दो ट्रक्स में नागडेंडी से सामान आया, 300 GI शीट्स, पोल्स लाए और लेबर 20-25 लाए. लेकिन वो जो हमारा यूथ है तो वहां शेड बनाया खीर भवानी में, ताकि उसके शेड के नीचे हम ये भंडारा सेवा शुरू करें. तो 97 में शुरू किया, 400-500 लोग थे. लेकिन चलते चलते इस साल हमारा 27वां साल था, तो 30,000-35,000 लोग वहां आए, विस्थापित लोग. उसमें हमारी बहनें, हमारे जो भाई बच्चे उसमें होते हैं, इतने ही मेजॉरिटी कम्युनिटी के भी वहां होते हैं
1: जी.
0: अब इट्स नॉट ओनली दैट, मैंने देखा ये जो 97 से, वैसे मैं फिर 2010 से चेयरमैन भी रहा हूं, मैं देखता रहा एवरी एनुअली ग्रेजुअल इंक्रीज
1: जी.
0: तो वहां केंद्र बना, फिर देन इट बिकेम अवर पॉइंट ऑफ कंसर्न कि इसको हम, ये जो पीस वहां खड़ा हो गया, आराम से लोग आते हैं करते हैं, ये पीस कैसे लेटरली परकुलेट हो
1: जी.
0: तो अभी आपको मैं बताऊं, और खुशी है मुझे कि ये 15-20 जगह ऐसे हवन होते हैं कश्मीर में. चाहे आप बारामूला कुपवाड़ा में देखो, शुपियन मंजगांव में देखो, आप दिवसर कुलगाम में देखो, लोगरी पोरा में देखो, अकिनगांव में देखो, लुगबोन में देखो, सारे कश्मीर में ज्येष्ठाष्टमी के ऐसे हवन होते हैं. तो पीस प्रोसेस हो गई, और ये हवन भी, इसमें जो लॉजिस्टिक सपोर्ट, हमारे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का लॉजिस्टिक सपोर्ट रहता है इसमें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए, हमारा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का भी इसमें सपोर्ट एनकरेजमेंट होता है. तो ये चलते आ रहे हैं. तो ये प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं, इसका हर साल ये असर होता है.
1: अब जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं तो इसको भारत के सर का ताज कहा जाता है, और अपने आप में ही एक छोटा हिंदुस्तान है, क्योंकि यहाँ भी अलग अलग मजाहिब से ताल्लुक रखने वाले, अलग अलग जबान बोलने वाले लोग यहाँ पर मिलकर रहते हैं. और जम्मू कश्मीर की हम पूरी बात करें, जम्मू शहर जो बसा, यहाँ शेर और बकरी को इकट्ठे पानी पीते देखा. कश्मीर की हम बात करें तो वहाँ अरमदारे कश्मीर, जिन्हें नंद ऋषि भी कहते हैं, वहाँ पर हिंदुओं और मुसलमानों की एक जैसी आस्था रही है. आप महाराजा हरि सिंह के समय की बात करें तो वहाँ एक मुस्लिम बहुल इलाके में हिंदू राजा और सभी खुशहाल उसमें रहते हैं. ये खूबसूरती है हमारे जम्मू कश्मीर की. लेकिन बदकिस्मती से एक दौर ऐसा आया कि हम अंधेरे की तरफ चले गए, गुमराह हो गए, या जिस तरह से भी. आज आप किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से जम्मू कश्मीर तेजी से खुशहाली, तरक्की, अमन के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता है?
0: देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आपने ऐसी बात छेड़ी आपने विद रेफरेंस रिकॉर्ड, मैं प्रैक्टिकली आपसे बताता हूँ. हमारी जॉइंट फैमिली थी अनंतनाग में, 40-50 लोग इस फैमिली में थे, एक साथ रहते थे, इंटीग्रेटेड थे. तो सब बच्चों का, हमारे सारे बच्चे जो हैं ईश्वर की कृपा से अच्छे अच्छे पोस्ट पर रहे हैं. तो हमारा ये था कि सवेरे उठना, 4:45 उठना, तो इंद्रनाग है, वहां पर चश्मा है, उधर नहाना, फिर केंद्र में जाना, गुरुद्वारा में जाना, वहां से प्रसाद लेना, उसके बाद हम देवी बल था उधर, प्रसाद लेना, ऋषि साहब के जियारत के पास जाना, प्रसाद लेना, वो देते थे शीरीन, वहां हम चक्कर लगा के फिर हम घर जाते थे, फिर हमें चाय मिलती थी. ऐसा मेरा ही नहीं, सब बच्चों का ऐसा होता था. यही हमारे जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के बच्चे हैं, उनमें भी यही संस्कार थे. और इन संस्कारों की वजह से हमारा बचपन जो ऐसा है, मैं इस वक्त सोचता हूँ मेरे दोस्त उस टाइम कहाँ थे, वही मेजॉरिटी कम्युनिटी के बच्चे. जबानी याद, गुरुद्वारा एक जगह, मंदिर एक जगह, और शेरबाग नीचे, तीनों एक जगह थे. किसी ने किसी का एक इंच नहीं खाया
1: जी.
0: अब इसको तो मैं कह रहा हूँ. और बचपन में जब हम जाते थे, निकलते थे, मुझे आशीर्वाद मिलता था, जो हमारे मुस्लिम मेजॉरिटी की फैमिली एल्डर्स, मेरे पिताजी के दोस्त और अपने पंडित बरादरी के जो एल्डर्स थे दोस्त, इतना हमारा भय रहता था उनका, हम गलत काम नहीं कर सकते थे. मैं मुस्लिम वाले में ही रहता था, मुसलमान का बच्चा जो मेरे से छोटा, मेरे साथ तेजी से भी नहीं बात कर सकता था. अगर मैं बोलूंगा वो हो गया, ये हो गया, तो मैं रिवर्स गियर में जा रहा हूँ. हमको आगे चलना है. हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी के बच्चे और माइनॉरिटी कम्युनिटी के बच्चे जो हैं, एक साथ हैं. और आपको एक खास तौर पर मैं सारे नेशन को बताना चाहता हूँ, ये जो 5-6 हजार बच्चे विस्थापित समुदाय के वहां गए हैं, आई कीप टेलिंग देम, यू आर द एम्बेसडर्स, आप में हिस्ट्री में आपका नाम लिखा जाएगा. दे हैव नॉट गॉन देयर टू सर्व मॉनिटरी बेन्स के लिए, वो तो करना है, वो इसलिए गए हैं कि उनको अपनी मातृभूमि की खुशबू ने लाया है. आई हैव इंस्टेंसेस, मोस्ट ऑफ देम, एक कुपवाड़ा, बारामूला मतलब रोहित रैना है वो अच्छे काम कर रहा था बाहर तनख्वाह भी अच्छी ले रहा था मिसेज भी सर्विस कर रही थी ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो वापस आ गए हैं वहां अपने कोपवाड़ा में सेटल हो गए हैं बारामूला में सेटल ऐसे बहुत से बच्चे हमारे विपरीत परिस्थितियों के बावजूद

0: वो वहां काम कर रहे हैं. ये जो हमारे बच्चे हैं सारे 5-6 हजार बच्चे जिनको मैंने कहा एम्बेसडर, इतने ही नए बच्चे मेजॉरिटी कम्युनिटी के, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने समझ लिया कि ये जो कंपोजिट कल्चर है ये क्या था
1: जी,
0: कश्मीरी पंडित क्या था,
1: असली खूबसूरती वही
0: वही थी, एक गुलदस्ता था, अलग अलग फूल थे
1: जी.
0: और वही होगा जो इस वक्त का मैं देख रहा हूँ. देखिए रिटायरमेंट के बाद आई शुड ऑल्सो हैव बीन विद माय चिल्ड्रन, आई शुड हैव गॉन, इधर उधर सब जाते हैं. मुझे फख्र है कि आई एंजॉय द डिस्टिंक्शन कि मैंने फैसला किया उसके बाद नहीं, मुझे कुछ न कुछ करना चाहिए.
1: भट्ट साहब, आखिर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि आज जो माहौल है खुशनुमा माहौल है, हम तेजी से अमन की तरफ, तरक्की की तरफ, खुशहाली की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, इसमें हर एक इंसान का, हर एक जम्मू कश्मीर वासी का क्या फर्ज बनता है कि इस माहौल को और सपोर्ट करें और एक बार फिर जम्मू कश्मीर वही जम्मू कश्मीर बन जाए जो कुछ वर्ष पहले हुआ करता था?
0: देखिए एक माहौल था कश्मीर में, बच्चा कोई गलती नहीं करता था, कहीं से भी बाहर से भी शिकायत आई या कहीं से भी आभास हो गया पिताजी को या माताजी को कि बच्चे ने ये कर दिया, उसको डांटते थे
1: जी,
0: वो समझते थे, पेरेंट्स विजिलेंट थे. लेकिन थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ ये जो वॉच नहीं रहा, ऐसा नहीं हो सकता है कि बच्चे को पेरेंट चाहे तो बच्चा कोई गलत काम करे, अगर करता है दैट इज द पेरेंट फेलियर.
1: यही आप कहना चाहते हैं कि हर एक नागरिक को एक विजिलेंट होके काम करना है, एक निगरान बनना है, अपने बच्चों पे नजर रखनी है, नौजवानों पे नजर रखनी है, ताकि दोबारा से हम पटरी पर जो आ गए हैं दोबारा से हम पथ भ्रष्ट ना हो, पटरी से ना गिरे.
0: एक चीज और बताना चाहता हूँ, दैट हैज टू बी अंडरस्टूड एंड अंडरस्टूड वेरी क्लियर. ये जो मैं कह रहा हूँ देखिए इसको कैश करने की जरूरत है. हमारा जो नौजवान इस वक्त कश्मीर में है उनका जोश और पेरेंट्स का होश
1: जी
0: जब एक यूनिसन में आएगा, कश्मीर फिर वही गोशवारा बनेगा, कश्मीर वही फिर गुलदस्ता बनेगा, कश्मीर वही फिर टॉर्च बेरर बनेगा, नॉट ओनली फॉर इंडिया, फॉर होल ऑफ वर्ल्ड, बिकॉज वी बिलीव इन यूनिवर्सल ब्रदरहुड. और मुझे उम्मीद है भारत को विश्व गुरु ले जाने के लिए हमारे कश्मीर के यूथ का, चाहे किसी भी फेद से हो, आगे आगे हमारा यूथ होगा, ऐसा मेरा मानना है.
1: जी, तो भट्ट साहब यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया.
0: धन्यवाद.
2: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी, जिसके अंतर्गत आपने सुना जम्मू कश्मीर में समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुने गए समाज सेवी ब्रजलाल भट्ट के साथ हुई विशेष बातचीत. चर्चा का संचालन कर रहे थे जगमोहन शर्मा. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं. इस कार्यक्रम के संबंध में अपने प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं. ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com.
3: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी.

0: மெல்லிசை பாடல்கள் கேட்டோம். தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே கனகலதா. केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ निफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निफेड किसानों की सेवा कर रहा है.
2: नाफेड ने एक प्रकार से नैफिक्स डॉट इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये चार पहलों की शुरुआत. तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है.
1: इस पोर्टल की शुरुआत नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है. इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजित डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया. नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि गैर पारंपरिक खतरे अब राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल गए हैं.
3: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
4: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है. गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं. नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है.
3: They all constitute an important threats for us.
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी. इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे. पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी अपने विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है. इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी मिल रही है. ये कार्यक्रम FM गोल्ड

0: दशमलव एक मेगा हर्ट्स पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और न्यूज़ ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। बैठक में कई राज्यों के कृषि मंत्रियों, सचिवों, जिला कलेक्टरों और अधिकारियों ने भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अयोध्या में राम मंदिर में प्राप्त दान के गबन के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट लखनऊ संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत ने अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंपी। अधिकारियों ने बताया कि जांच अभी जारी है। अयोध्या राम मंदिर में प्राप्त दान के दुरुपयोग के आरोपों के सामने आने के बाद मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महीने की 13 तारीख को एसआईटी का गठन किया था। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमेरिका ने भारत की M777A2 अल्ट्रालाइट होविट्जर तोपों के रखरखाव के लिए 23 करोड़ डॉलर के पैकेज की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा साझेदारी लगातार बढ़ रही है और वो प्रस्तावित बिक्री को अंतिम रूप देने के लिए तैयार है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक ने आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% की गिरावट आई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 525 अंक गिरकर 76,570 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at the second civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories: Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. The President will confer 65 Padma Awards today. National Security Advisor Ajit Doval today stressed on the need to be cognizant of the new security threats and challenges. Speaking at the 16th BRICS National Security Advisors meeting in New Delhi, Mr. Doval said that non-traditional threats have transcended national borders. He emphasized that innovative disruptive technologies, more camouflaged variants of terrorism and cyber threats are getting increasingly digitized. He said the discussions during the 16th BRICS National Security Advisors meeting will focus on non-traditional security challenges.
2: We need to be cognizant of the new security threats and challenges. Non-traditional threats have transcended national borders and have developed defeat systems against conventional responses. Innovative disruptive technologies, more camouflaged variants of terrorism, cyber threats in a world which is getting increasingly digitized, they all constitute an important threats for us.
1: Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have paid tribute to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his martyrdom day. In a social media post, the Vice President described Dr. Mukherjee as a visionary leader, renowned educationist and staunch patriot. Home Minister and Minister of Cooperation Amit Shah today said that the National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited, NAFED, is helping around 74 lakh farmers in the country. He said this while launching NAFED's auction portal, nafix.in, at Atal Akshay Urja Bhavan in New Delhi. Mr. Shah also paid tribute to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his death anniversary. The Home Minister praised Dr. Shyama Prasad Mukherjee for being an advocate of nationalism, cultural nationalism and Indian culture. The Special Investigation Team, SIT, probing allegations of embezzlement of donations received by the Ram Temple in Ayodhya, has submitted its preliminary inquiry report to the Uttar Pradesh government. The report was submitted by Lucknow Divisional Commissioner

0: Super Clash. Argentina defeated Austria 2-0 in their Group J match in Arlington, United States last night to secure a place in the round of 32. With this win, Argentina has entered the knockout stage. Meanwhile, Algeria thrashed debutants Jordan 2-1 in a Group J encounter in Santa Clara, USA today. In hockey, the Indian men's hockey team will take on arch rivals Pakistan in the opening match of the FIH Pro League today. This will be the first encounter between India and Pakistan since their Asian Champions Trophy clash in Hulunbuir, China in 2024, where India emerged victorious with a 2-1 win. Benchmark domestic equity indices were trading nearly 1% lower in the afternoon session today. The Sensex plunged 653 points to 76,441, while the Nifty lost 220 points to 23,883 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu to present Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Home Minister Amit Shah says Shyama Prasad Mukherjee's dream realized with abrogation of Article 370. National Security Advisor Ajit Doval says opening of Strait of Hormuz will strengthen energy security around the world. Enforcement Directorate conducts searches at 18 places in Tamil Nadu in connection with alleged teacher recruitment exam manipulation case. Lionel Messi becomes the highest goal scorer in FIFA World Cup history, leads Argentina into knockout stage, and in hockey, India to face Pakistan in opening match of FIH Pro League in London today. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा हुर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। अर्जेंटीना की टीम नॉकआउट में पहुंची। और लंदन में एफआईएच हॉकी प्रो लीग के शुरुआती मैच में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी पीपल्स पद्म और आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
3: मैं रैप का काम सीखा, मूवी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है, तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
4: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था उसी दस्ते को फिर से

0: उजागर करने को मनाने के लिए हमने प्रयास करा।
1: ये कार्यक्रम आज FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। श्री शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें देश के महानतम नेताओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के योगदान ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
2: श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी

0: बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का साथ और मूठ जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते आज देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।
1: नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ पर श्री शाह ने कहा कि 23 जून भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि इसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। विभाजन काल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री ने अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।
2: कश्मीर का राष्ट्रध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहे।
1: इस अवसर पर गृहमंत्री ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
2: आने वाले दो सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी एनसीसीएफ और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
1: नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा ये संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है।
2: नाफेड ने एक प्रकार से नाफिक्स.इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण ये चार पहलों की शुरुआत की, तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले एक दशक में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने हेतु नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की टीमों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल की सहायता से किसानों को 48 घंटे के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान प्राप्त हो जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। श्री डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की।
3: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
4: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रिर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि वे भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सार्थक चर्चा की उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों देशों के लिए नए आर्थिक अवसर खुलेंगे और अमेरिका भारत

0: आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण मजबूती आएगी। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस बीच फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल के सदस्यों के एक संयुक्त दल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: घटनास्थल का मुआयना करने के बाद एसआईटी के सदस्य और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने कहा कि उनकी टीम सभी पहलुओं की गहन जांच करेगी और हर विभाग की जिम्मेदारियों का विस्तार से आकलन करेगी। दूसरी ओर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की 6 सदस्यीय टीम ने आग लगने के कारणों का पता लगाने और घटनाक्रम स्थापित करने के लिए सबूत इकट्ठा किए। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत के अनाधिकृत निर्माण को लेकर 2016 में भी इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में इसे रद्द कर दिया गया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: अयोध्या में राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही 3 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी ने आज अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। राज्य सरकार ने कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग की जांच के लिए इस उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया था। एसआईटी के सदस्यों ने पिछले सप्ताह कई संदिग्धों और मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों से पूछताछ की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुंबई और आसपास के उपनगरों में आज लगातार 3rd दिन भी बारिश हो रही है।
2: मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों, मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों और मध्य व पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। आज पुणे जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, रायगढ़ और रत्नागिरी के घाट इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बड़ी प्रतीक्षा के बाद आई इस बारिश से नागरिकों को राहत मिली है। अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में बारिश होने से किसान बुआई का काम शुरू कर सकेंगे। कृषि विभाग ने किसानों को जरूरी मात्रा में बारिश होने तक बुआई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के तराई वाले कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा और तेलंगाना में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में आज गरज के साथ वर्षा और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शी नेता, प्रख्यात शिक्षाविद और देशभक्त डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि डॉ मुखर्जी ने निडर होकर देश की एकता और अखंडता का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन देश के विकास के लिए समर्पित कर दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमेरिका के राजकोष विभाग ने बताया कि 60 दिन के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी होगा। फीफा विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने

0: पहली बार खेल रहे जॉर्डन को 2-1 से मात दे दी। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। एक महत्वपूर्ण मुकाबले में अर्जेंटीना ने कल रात ग्रुप जे मैच में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश किया। FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा, होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: நேரம் 2:30 நிமிடம்.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जा रहे हैं। समारोह के दौरान राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसी प्रमुख हस्तियाँ शामिल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के उद्घाटन समारोह पर श्री शाह ने अनुच्छेद 370 का जिक्र किया, जिससे जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला था।
1: कश्मीर का राष्ट्रध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहे।
0: श्री शाह ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया। नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा ये संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर में दान के गबन के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT ने राज्य सरकार को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट लखनऊ संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत ने अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद को सौंपी। अधिकारियों ने बताया कि जांच अभी जारी है। अयोध्या राम मंदिर में दान के दुरुपयोग के आरोप के सामने आने के बाद मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर राज्य सरकार ने इस महीने की 13 तारीख को SIT का गठन किया था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बसेत्सेग बटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदुनियाम के साथ मंगोल रिफाइनरी परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। उन्होंने विभिन्न संबंधित टीमों के साथ चल रहे कार्यों की स्थिति की समीक्षा की। अमेरिका ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमेरिका के राजकोष विभाग ने बताया है कि 60 दिन के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। ये कार्रवाई अमरीका और ईरान के बीच अंतिम शांति समझौते को सुरक्षित करने के उद्देश्य से अंतरिम समझौते की समय सीमा के अनुरूप है। बैंकिंग, बीमा और समुद्री परिवहन सहित अन्य संबंधित सेवाओं पर प्रतिबंधों से राहत दी गई है। अमेरिका में बिक्री और वितरण को पूरा करने के लिए आवश्यक होने पर ईरान से तेल के आयात की भी अनुमति प्रदान की गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आज स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET 2026 का परिणाम घोषित कर दिया। उम्मीदवार CUET के अधिक कारिक पोर्टल के जरिए अपने स्कोर कार्ड देख सकते हैं। NTA के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा के लिए 15 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था, जबकि 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ.

0: ஜூல்ஸ் பத்மா ஆன் ஆகாஷ்வாணி.
1: ஏ ஆகாஷ்வாணி ஹே. பிரஸ்துத் ஹே ஹமாரா விசேஷ் காரியக்ரம் பீப்பிள்ஸ் பத்ம ஆன் ஆகாஷ்வாணி. இஸ்கே அந்தர்கத் சுனியே சாஹித்ய ஔர் சிக்ஷா கே க்ஷேத்ர மே விசேஷ் யோக்தான் கே லியே பத்மஸ்ரீ புரஸ்கார் கே லியே சுனி கயி ப்ரொஃபெசர் மங்களா கபூர் கே சாத் ஹுயி விசேஷ் பாத்சீத், ஜோ பச்பன் மே ஏசிட் அட்டாக் கா சாம்னா பி கர் சுகி ஹே. இஸ் சம்வாத் மே உன்ஹோனே அப்னே ஜீவன் சங்கர்ஷ், கரியர் ஔர் சாம்னே ஆனே வாலி சுனௌதியோ பர் சர்ச்சா கி. சர்ச்சா கா சஞ்சாலன் கர் ரஹே ஹே மனீஷ் சிங்.
2: நமஸ்கார், மே மனீஷ் சிங் வாரணாசி மே ஹூ ஔர் ஹமாரே சாம்னே ஹே மங்களா கபூர் ஜி. ஆயே ஜானதே ஹே இன்கி ஜிந்தகி கே பாரே மே. சப்ஸே பஹலே ஆப் யே பதாயே கி ஆப்கா பச்பன் கைசா ரஹா ஔர் கைசா பீதா யே பச்பன்.
3: பச்பன் கியா ஹோதா ஹே மே ஜானதி நஹி, கியோகி 12 வர்ஷ் கி ஔர் சாத்ஹி தப் முஜ் பே ஏசிட் அட்டாக் கியா கயா, தோ உஸ்கே பாத் கா ஜோ ஜீவன் ஹே சாரா ஹாஸ்பிடல் மே ஹி பீதா. தோ பச்பன் நாம் கி ஜோ சீஸ் ஹோதி ஜோ கேல்தே கூத்தே பீதாதே ஹே லோக், வைசா குச் தோ மேரே சாத் குஜ்ரா நஹி. फिर लगातार हॉस्पिटल में थी, ऑपरेशन होते गए शरीर के जगह जगह के, यहाँ भी हुए, कुछ पटना में हुए, तो कुल 36-37 ऑपरेशन मेरे हुए हैं.
2: किस तरीके से एसिड अटैक के बाद आपकी जिंदगी बदल गई?
3: ऐसा एसिड अटैक के बाद तो ऐसा ही नहीं था कि शायद जी पाऊंगी, लेकिन पहले तो जीने के लिए संघर्ष करना पड़ा. जब जी गई थी तो फिर उसमें परिवार वालों की मेहनत, माता पिता का पूरा सहयोग, और ठीक होते होते ही मुझे बहुत समय लग गया. उसके बाद बाहर निकलना या समाज में उठना बैठना, मैं तो खैर टूट ही गई थी. सामाजिक, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, हर तरह से हम लोग, पूरा परिवार डिस्टर्ब था. तो वो यात्रा बड़ी दुखद रही और बहुत संघर्ष भरी रही.
2: किस तरीके से, कौन सी ऐसी शक्ति थी, कौन सी ऐसी हिम्मत थी कि आपने फिर से सर्वाइव किया?
3: देखिए, पारिवारिक जो परिवेश हमारा रहा है वो आध्यात्मिक रहा है. और शक्ति की बात तक देखिए, छोटी बच्ची में या यंग हो रही थी उस समय तक इतनी कोई शक्ति तो अंदर आती नहीं है. पढ़ने लिखने की उम्र में तो मैं बेड पे पड़ गई, और जब बेड पे पड़ गई तो ये जरूर है कि मुझे बचाने का, उठ खड़ा करने का श्रेय मेरे माता पिता को जाता है. तो जब मैं ठीक हुई, घर में बैठी, तो मेरे पिताजी को हमेशा ही चिंता रहती थी कि बच तो गई है लेकिन जीवन कैसे होगा, जीवन कैसे चलेगा. पढ़ना लिखना भी छूट ही गया था उसकी वजह से. तो वो बराबर प्रेरित करते रहे कि मतलब बेटा तुम्हें कुछ करना है, फिर से पढ़ाई चालू करो. और संगीत में बचपन से बहुत रुचि रही, तो उनको ये लगा कि ना वो संगीत ही सिखाए ताकि इसका मन भी उसमें उलझा रहे और कुछ कर सके उसमें. तो उन्होंने म्यूजिक स्कूल में मुझे डलवा दिया था. फिर वहाँ मैंने संगीत सीखना शुरू किया और फिर तब लोगों का सामना करना शुरू किया, नहीं तो मैं तो बिल्कुल निराश हताश से घर के कोने में बंद हो गई थी. और ये जो उम्र बढ़ रही थी, डिप्रेशन टाइप का हो रहा था मुझे कि ये तो बड़ा हादसा हो गया, मैं कैसे सर्वाइव कर पाऊंगी आगे. तो पिताजी हमेशा हिम्मत दिलाते थे, फिर मैंने राह पकड़ी संगीत की.
2: संगीत की दुनिया में आने का मन में कैसे ख्याल आया और क्या मिला संगीत से?
3: ऐसा है, मेरे पिताजी सितार बजाते थे तो उनको संगीत बहुत पसंद था और मेरा गला वाकई बचपन से

0: बहुत अच्छा था। तो बड़े बड़े संगीतज्ञ भी जो पिताजी के दोस्त थे घर पे आया करते थे, तो अगर गला अच्छा था तो कभी कुछ बंदेश कभी कुछ सिखा जाते थे। वो सांगीतिक माहौल जो है वो पिताजी से ही मिला और उन्होंने ही ये सजेस्ट किया कि इसको म्यूजिक में डालना चाहिए, ये सोच के नहीं ये कभी मेरा प्रोफेशन बन जाएगा। यहाँ कहीं ना कहीं उलझी रहे, कुछ करती रहे, उसी बहाने लोगों का सामना करना सीखे, लोगों से बात करना सीखे, तो फिर संगीत को पकड़ा। उसके बाद फिर उसी पे चलती गई। फिर BHU में मेरा एडमिशन हुआ, वहां से PhD तक की पढ़ाई मैंने की और स्टेज प्रोग्राम फिर मैं करने लगी, जहाँ मुझे काफी मान सम्मान मिला। मेरी आवाज को लोगों ने हाथों हाथ लिया, मुझे काशी की लता का सम्मान भी मिला है। तो इस तरह करके वो यात्रा वैसे शुरू हुई। और विशेष बात बताने लायक यही है कि जब मैं PhD करने के बाद जब नौकरी ढूंढने लगी, तो फिर BHU में मुझे नौकरी मिल गई और फिर वहां अध्यापन का कार्य मैंने शुरू किया। तो बच्चों के साथ रम गई, फिर अच्छी तरह अपने कर्म को निभाती रही, सिखाना बच्चों के साथ। फिर मैं लेक्चरर के पद पे हुई थी, फिर लीडर प्रोफेसर तक की जर्नी मैंने वहाँ।
1: क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या अनुभव लगा BHU में शिक्षक के दौरान? आप
0: BHU ने तो मुझे बहुत प्रेम दिया। जब मैं सीख रही थी, मेरे गुरुजनों का बहुत आशीर्वाद था, वो मुझे मतलब बराबर प्रेरित करते रहते थे आगे बढ़ने। उन लोगों से भी बहुत स्नेह मिला कि नहीं मतलब बहुत अच्छा गाती है, तो तुम्हें तो कहीं ना कहीं अच्छी जगह पहुंच ही जाओगी। तो वाकई आवाज अच्छी थी, जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ती चली गई। और मेरा बच्चों के साथ जो एक्सपीरियंस है, मैंने 15 बच्चों को PhD भी कराई मेरे अंडर में, तो लोग मुझे कभी उन्होंने न टीचर मुझे समझा न मैंने समझा कि स्टूडेंट है, अपने बच्चों की तरफ वो समझते और वो लोग मातृवत और बहुत अच्छे मुझे माँ ही कहते थे अभी तक। हालांकि सभी बच्चे कहीं ना कहीं अच्छी जगह स्थापित हो गए हैं, लेकिन जो प्यार करते हैं उनका फोन वगैरह आता रहता, आते हैं तो मिलने भी आते हैं, तो वो चल रहा है। जो मैं आपको बता रही हूँ कि बचपन से जो कहानी मेरी शुरू हुई, तो उन संघर्षों को मैंने सीरत के अंतर्गत ये चाहे ताकि और लोगों को भी प्रेरणा मिले, जो थोड़ी सी नाकामयाबी से संघर्ष करने से चुराते हैं जी, नहीं करना चाहते हैं, तो उन लोगों को एक प्रेरणा मिले। सीरत मैंने इसीलिए लिखी, और उसको लिखवाने के पीछे भी एक महिला हमारे कॉलेज में ही हिंदी की प्रोफेसर थी, उन्होंने जब मेरे बारे में थोड़ा सा सुना तो उन्होंने कहा कि ममता अपनी कहानी को लिखकर रही और लोगों को बहुत प्रेरणा देगी। तो मैंने लिखना शुरू किया और फिर इस तरह सीरत सामने आई। तो फिर बॉम्बे तक जब उसकी वो पहुंची, तो फिर वहां से डायरेक्टर आए थे, मेरे ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी। उसके बाद फिर पूरी फिल्म जो है मराठी में बनी और महाराष्ट्र में वो प्रदर्शित भी की गई, देखने को मिलेगी सभी को।
1: पद्मश्री सम्मान, क्या खास मायने हैं इस सम्मान के आपकी जिंदगी में?
0: अरे मुझे बहुत मायने रखता है कि मतलब सोच नहीं सकती। उसके पहले भी मुझे देखिए स्टेट लेवल के भी अवार्ड मिले हैं, अच्छे अच्छे अवार्ड काफी मिले हैं। मेरा काम देख करके, मेरी लगन और मेरी निष्ठा, यानी 36 ऑपरेशन के बाद शरीर टूट जाता है, मेरी हड्डी इतनी कमजोर हो गई, पैरा सा भी कहीं गिर जाती हूँ तो टूट जाती है, लेकिन वो भी झेला। सब झेलते हुए भी मैं अपने कर्म में लगी हुई हूँ और अभी तक रिटायर हो गई हूँ, लेकिन मैंने कर्म नहीं छोड़ा है। मैं अभी भी फील्ड वर्क करती हूँ, दिव्यांगों के साथ जुड़ के काम करती हूँ, और भी संस्थाओं से जुड़ी हूँ, बैठी नहीं हूँ, कुछ न कुछ करती रहती हूँ। और 6ठी पुस्तक का लेखन अभी आधे से ज्यादा हो चुका है, फिर वो भी जल्दी ही आ जाएगी।
1: शारीरिक रूप से चुनौतियों का सामना करने वाले लोगों के लिए कौन सा संदेश देना चाहेंगे आप?
0: शरीर बहुत मायने नहीं रखता, मैंने अच्छे अच्छे लोगों को दिखा है। एक उम्र के बाद एक विकृति सभी की चेहरे पर आ जाती है, फिर वो चार्म नहीं रह जाता है कि जो उम्र के साथ साथ बढ़ना ही है, बाद में बहुत खूबसूरती नहीं रह जाती है, तो शरीर खत्म हो जाएगा, जल जाएगा, लेकिन आपका कर्म जो है वो हमेशा जीवित रहेगा। जो बहुत खूबसूरत रह जाने वाले लोग थे, लेकिन अंत में देखिए लोग कैसे लाचार हो जाते हैं, तो वो तो देखिए शरीर का धर्म है, होगा ही। लेकिन मेरे साथ विशेष इसलिए था कि मेरे ऊपर एसिड अटैक से मेरी नाक गल के निकल गई, कान खराब हो गया, चेहरा विकृत हो गया, वो ये विशेष रूप से जो विकृति आई जो कि बचपन से ही शुरू हो गई। मुझे संबोधन मिलते थे इसका मुंह कैसा है, और उस समय मैं नील थी, मेरे पास कुछ था नहीं, लेकिन इतनी उम्र बीतने के बाद ये समझ में आया कि आपके अंदर जो अंदर की जो खूबसूरती है, यानी आपके अंदर कोई विशेष बात है, आपने किसी फील्ड में कुछ विशेष अलग हटके किया है, तो उसको दुनिया सम्मान से देखती है और देखती रहेगी। कर्म लेकिन अच्छा करते रहे। कितने सारे एसिड अटैक विक्टिम तो बहुत सारे लोग काफी हुए। बस यही कहना चाहूंगी कि देखिए अपनी जो इच्छा शक्ति है, अपना जो विल पावर है, क्षति हो गई कहीं से कोई बात नहीं, लेकिन आपके अंदर की जो प्रतिभा है उसको कोई नहीं जला सकता। आपके अंदर कोई ना कोई प्रतिभा तो होगी किसी क्षेत्र में, अगर आप जिंदा हैं तो फिर से लड़िए समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ये लड़ाई है। और आज तो बहुत सारे विकल्प हैं, आप इस क्षेत्र में कंप्यूटर के चले जाइए तो संगीत में, म्यूजिक में, इतने सारे और परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं।

0: रियल के शोज आते हैं, तो जिसमें जो भी प्रतिभा हो वो आगे बढ़ के उसको अपना सवारे और वही एक रास्ता पकड़ के हिम्मत नहीं हारे, उस पर चलता रहे जब तक जीवित, लोगों के लिए प्रेरणा बने।
1: क्या बाकी रह गया आप कुछ करने के लिए कला के क्षेत्र में?
0: कोई भी क्षेत्र हो, मुझे ये नहीं लगता कर्म के लिए कोई उम्र नहीं होती है, और आदमी जब तक जीता है तब तक कर्म करते रहना चाहिए, जब तक शरीर चल रहा है। अगर आप शरीर को चलाते रह रहे हैं तो उम्र कोई मायने नहीं रखती है, अंतिम समय तक लड़ना चाहिए। और जो भी मुझसे अच्छे से अच्छा हो पाएगा वो करना चाहूंगी, अभी भी कर रही हूँ, आगे भी जब तक है जिंदगी, जब तक मैं सक्षम हूँ चलने फिरने में, मैं बिल्कुल करूंगी।
1: आकाशवाणी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी, जिसके अंतर्गत आपने सुना साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष

0: the employment news. For details, refer to www.negrims.gov.in. The Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Government of India is inviting applications for vacant posts in budget press or deputation or absorption basis. The openings include Technical Officer Pre-Process in Level 7 and Data Entry Operator Grade B in Level 5 as per the 7 CPC pay matrix. Eligibility criteria, required qualifications and experience for each position are detailed in the official notification. Interested officers should submit applications in the prescribed format along with attested copies of CR dossiers, vigilance and integrity certificates, cadre clearance and a statement of penalties, if any, within 60 days from the date of publication in the employment news. Applications and queries can also be sent via email to budgetpress.dea@gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: नमस्कार रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा. आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोवा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गोवा, सहायक कुल सचिव पद के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है. एक पद उपलब्ध है जो अनारक्षित है. अन्य आवश्यक योग्यताओं, महत्वपूर्ण तिथियों और सामान्य अनुदेशों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए देखिए आईआईटी गोवा की वेबसाइट iitgoa.ac.in/careers-iitgoa. ऑनलाइन आवेदन पत्र को जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 5 जुलाई 2026. सैनिक स्कूल छिंगपिंग, सैनिक स्कूल सोसाइटी, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में संचालित तथा CBSE नई दिल्ली से संबद्ध पूर्णतः आवासीय पब्लिक स्कूल है. ये स्कूल पात्र उम्मीदवारों से TGT सामाजिक विज्ञान, सामान्य कर्मचारी नियमित, काउंसलर संविदा तथा PTI कम मैट्रन के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है. आवेदन पत्र का प्रारूप और वेतनमान, पात्रता मानदंड और अन्य संबंधित जानकारियां स्कूल की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और वेबसाइट का पता है sschingchip.mizoram.gov.in. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन. बाल मनोवैज्ञानिक एक पद अनारक्षित, नैदानिक मनोवैज्ञानिक एक पद अनारक्षित, चिकित्सा अधिकारी आयुष 3 रिक्तियां हैं जिनमें से एक आयुर्वेद के लिए, एक होम्योपैथी के लिए तथा एक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के लिए. इन रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है. कार्यकारी निदेशक एम्स गोरखपुर को पदों की संख्या या वर्ग में परिवर्तन भारत सरकार के नियमानुसार करने का अधिकार है. आवेदन पत्र, सभी आवश्यक जानकारियां हासिल कर सकते हैं आप इस वेबसाइट से www.aimsgorakhpur.edu.in. इन भर्तियों से संबंधित कोई भी अन्य सूचना इसी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी. नोट कीजिए एक बार फिर वेबसाइट का पता www.aimsgorakhpur.edu.in. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है. प्रोफेसर 20 पद, एसोसिएट प्रोफेसर 2 पद, सहायक प्रोफेसर सीधी भर्ती 27 पद, सहायक प्रोफेसर संविदात्मक 26 पद. इस प्रकार कुल पदों की संख्या है 75. विस्तृत विज्ञापन और आवेदन पत्र के प्रोफार्मा के लिए देखिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर की वेबसाइट www.aimsbilaspur.edu.in.
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्षण.

0: பயங்கரமா.
1: नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में हो गए हैं शाम के 4:30, यानी वक्त है आपकी अपनी प्यारी न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। दोस्तों, आधा घंटे की हमारी इस मुलाकात में होंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे हम अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल के मैदान की गतिविधियों पर रहेगी हमारी बराबर नजर, और फिर हम याद करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को, है जिनकी आज पुण्यतिथि या मना रहे हैं जिनका हम आज जन्मदिन या जयंती। दोस्तों, परिक्रमा के संक में मैं हूं मुनीश शर्मा और हमारे साथ हैं अनुजा कुमार। नमस्कार अनुजा।
2: नमस्कार मुनीश, एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। So the good news is that monsoon is inching forward towards the western coast after stalling last week, but Delhi right now is having a beautiful weather after rains. And as we have been always saying, come what may, rains or hot sunny day or whatever, we will always be there in time with a fresh new episode of our afternoon magazine, Parikrama, every day for you. And now before we proceed with other stories, first the headlines at this hour.
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी।
2: होम मिनिस्टर अमित शाह सेज श्यामा प्रसाद मुखर्जी ड्रीम रियलाइज्ड विद एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा हुर्मुज जल डमरू मध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी।
2: Enforcement Directorate conducts searches at 18 places in Tamil Nadu in connection with alleged teacher recruitment exam manipulation case.
1: Lionel Messi FIFA विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने, अर्जेंटीना की टीम नॉकआउट में पहुंची।
2: And Munish, it's now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we will talk about Kanishka Bombing Remembrance Day and International Olympic Day. So let's begin with the first topic, Kanishka Bombing Remembrance Day. Today we remember a tragedy that shocked nations, transformed aviation security, and remains one of the deadliest acts of terrorism in the aviation history, the bombing of Air India Flight 182, commonly known as the Kanishka bombing. Imagine boarding a long-haul international flight, excited to reunite with family, begin a vacation or return home. For the 329 passengers and crew aboard Air India Flight 182 on 23rd of June 1985, that journey would tragically never reach its destination.
1: One of the saddest days indeed in the history of aviation. Ye viman Boeing 747, jiska naam prachin Kushan samrat Kanishk ke naam par rakha gaya tha, Canada se Bharat aa raha tha, aur jab ye viman Atlantic mahasagar ke upar aur Ireland ke tat ke paas ud raha tha, tabhi ek badi durghatna ho gayi। विमान के आगे वाले कार्गो होल्ड में रखे एक सूटकेस के अंदर छिपा एक शक्तिशाली बम फट गया और कुछ ही पलों में विमान हवा में टूटकर बिखर गया और समुद्र में जा गिरा। इसमें कोई भी जीवित नहीं बचा। ये नुकसान बहुत दुखद और बहुत बड़ा नुकसान था। इस विमान में सवार सभी 329 लोगों की मौत हो गई, जिनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल थे, और मारे गए लोगों में से ज्यादातर भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक थे, जिससे यह घटना कनाडा के इतिहास की भी सबसे भयानक सामूहिक हत्याओं में से एक और विमान को नष्ट करने की अब तक की सबसे बड़ी घातक घटनाओं में से एक बन गई।
2: Yes, but the tragedy did not end there. On the very same day, another bomb exploded thousands of kilometers away at Narita International Airport near Tokyo. The explosion killed two Japanese baggage handlers. Investigators later concluded that this device was intended for another Air India flight but detonated prematurely while baggage was being transferred. The two attacks were linked, forming part of a coordinated terrorist plot. Authorities eventually traced responsibility to extremists. The investigation that followed became one of the most complex and extensive criminal investigations in Canadian history, spanning multiple countries

0: and lasting for years.
1: तो कनिष्क बम धमाका आज भी अहम क्यों बना हुआ है? दरअसल इस भयानक मानवीय त्रासदी के अलावा इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा की कमियों को उजागर किया. उस समय सामान की जांच की प्रक्रियाएं आज की तुलना में बहुत ही कम सख्त थी, लेकिन इस हमले ने बगैर जांचे परखे सामान से जुड़े खतरों को सामने लाकर रखा और इसके परिणाम स्वरूप दुनिया भर में हवाई अड्डों की सुरक्षा में काफी बड़े सुधार किए गए. सुरक्षा के वो कई उपाय जिन्हें यात्री आज सामान्य मानते हैं, जैसे बेहतर सामान की जांच, यात्रियों और उनके सामान के मिलान की सख्त प्रक्रियाएं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुफिया जानकारी का बेहतर आदान प्रदान, इस त्रासदी के बाद के वर्षों में और मजबूत किए गए. ये बम हमला इस बात की भी याद दिलाता है कि आतंकवाद अक्सर राजनीतिक उद्देश्यों से कहीं आगे तक फैल जाता है और आम परिवारों को प्रभावित करता है, जिनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती है.
0: एंड मोर देन फोर डिकेड्स लेटर मेमोरियल्स इन कनाडा, इंडिया, आयरलैंड एंड एल्सवेयर कंटिन्यू टू ऑनर द विक्टिम्स. फैमिलीज एंड कम्युनिटीज गैदर ईच ईयर टू रिमेंबर देयर लव्ड वंस which were lost on that summer day in 1985. The story of Kanishka is not only a story of destruction, it is also a story of remembrance, resilience and the ongoing effort to make air travel safer for millions of people around the world. We remember the 329 passengers and crew members who never completed their journey. Their memory remains an enduring reminder of the importance of vigilance, security, and also international cooperation. And moving on to the next topic of the day, it is International Olympic Day. We are also celebrating International Olympic Day, observed every year on 23rd of June across the globe. And today is more than just a date on the calendar. It's a celebration of fitness, friendship, excellence, and the power of sport to unite humanity. On this day in 1894, the International Olympic Committee, or IOC, was founded at the historic Sorbonne in Paris. This landmark event, led by Pierre de Coubertin, revived the modern Olympic Games and laid the foundation for one of the world's greatest sporting traditions. More than half a century later, in 1948, Olympic Day was officially established to encourage people everywhere to participate in sports and physical activity. The idea was first proposed in 1947 by Czech IOC member Dr. Gross. The first Olympic Day celebrations took place on 23rd of June 1948, with national Olympic committees from nine countries taking part. And today, that celebration has grown into a global movement involving millions of people.
1: ओलंपिक डे को खास बनाने वाली चीजें इसके तीन मुख्य मूल्य हैं. उत्कृष्टता खेल के मैदान में हो या रोजमर्रा की जिंदगी में, हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करना, लोगों, संस्कृतियों और देशों के बीच आपसी संबंध और मेलजोल बढ़ाना, और खुद का, दूसरों का और खेल में निष्पक्षता बनाए रखने वाले नियमों का सम्मान करना. ये मूल्य हमें याद दिलाते हैं कि सफलता का मतलब सिर्फ मेडल जीत लेना ही नहीं है, बल्कि अच्छे चरित्र, टीम वर्क और दृढ़ता का होना भी है.
0: Yes, Munish, in today's fast-paced digital world, many people struggle to find time for physical activity. To address this challenge, the IOC promotes the global Let's Move campaign. This initiative encourages people of all ages and abilities to dedicate time each day to movement, whether it's walking, cycling, dancing, stretching, playing a sport, or simply taking the stairs instead of the elevator. Supported by organizations such as the World Health Organization, the campaign highlights a simple message: every movement counts and every step towards a healthier lifestyle matters.
1: यहाँ भारत में ओलंपिक डे बड़ा ही उत्साह के साथ मनाया जाता है दोस्तों. स्कूल, स्पोर्ट्स एकेडमी, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, फिटनेस इवेंट, जागरूकता अभियान और खेलकूद की गतिविधियां कई संस्थाएं यहाँ आयोजित करती हैं. अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन और रिलायंस फाउंडेशन जैसी संस्थाओं की खास पहल युवाओं को खेलों से जोड़ने और एक्टिव और हेल्थी लाइफस्टाइल को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं. ये प्रोग्राम अगली पीढ़ी को बड़े सपने देखने, एक्टिव रहने और ओलंपिक की भावना को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं. तो सुनने वालों, आप आज ओलंपिक डे कैसे मना रहे हैं? क्या आप आज सवेरे की सैर पर गए? दोस्तों के साथ कोई खेल आप खेलेंगे? किसी फिटनेस एक्टिव

0: एक्टिविटी में शामिल होंगे या बस कुछ मिनट एक्टिव रहकर बिताएंगे। याद रखिए, ओलंपिक मूल्यों को अपनाने के लिए आपको ओलंपियन होने की जरूरत नहीं है। खुद को बेहतर बनाने, दूसरों का साथ देने और एक्टिव रहने की हर कोशिश जश्न मनाने लायक जीत है।
1: And on this International Olympic Day now, let's embrace the spirit of excellence, friendship and respect. Let's move, stay healthy and inspire those around us to do the same. Move more, dream bigger and keep the Olympic spirit alive. Happy International Olympic Day to all of you.
0: और दोस्तों, अब वक्त है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से ये जानने का कि क्या कुछ है उनके पास आज खास।
1: And let's begin with taking you all to Thiruvananthapuram. International Olympic Day was celebrated with great enthusiasm in Thiruvananthapuram today as hundreds participated in the Cycling by the Sea rally. The event brought together people from diverse backgrounds in a shared message of fitness and healthy living. We have more on this from our correspondent from Thiruvananthapuram.
2: The Olympic spirit found an unique expression on the shores of Thiruvananthapuram this morning as hundreds of people took part in the Cycling by the Sea rally organized by the Sports Authority of India to mark International Olympic Day. The coastal ride brought together members of women empowerment groups, government employees, cycling club members and fitness enthusiasts from different walks of life. United by the message of fitness and healthy living, participants pedal along the scenic route with great enthusiasm. Adding to the excitement was the presence of Union Minister for Youth Affairs and Sports, Dr. Mansukh Mandavia. The minister joined the cyclists on the ride, drawing cheers from participants and giving a major boost to the event. Let's hear some of the participants.
3: This is Satyabhama and I have come to participate in the Cycling by the Sea, the cycling event organized by Fit India as well as Sports Authority of India. And cycling gives a lot of health benefits, physical as well as mental health benefit. It induces happy hormones in the body. So I'm happy and I'm participating in this event as a member of Cyclotrivians Cycling Club.
4: I am Ullas. I'm only a recreational cyclist. Today we are gathered here for Cycling by the Sea with our Minister for Sports, Government of India. It's really happy to join here with this event.
2: Cycling by the Sea turned out to be not just a ride, but a celebration of health, unity and sporting spirit of Kerala's coastline. Smithy M. Pallurithi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
0: केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने इस द्वीप समूह में पिछले 12 वर्षों में हुए विकास कार्यों की समीक्षा भी की। आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
5: केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के अपने दौरे के दौरान प्रगति पदयात्रा के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में हुए विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन, गांधी पार्क तथा अन्य प्रमुख परियोजनाओं का निरीक्षण किया। इसके बाद मंत्री ने विकसित भारत संकल्प सम्मेलन और अंडमान आइडिया समिट 2026 में भाग लिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचा विकास और बेहतर संपर्क व्यवस्था भारत की प्रगति की प्रमुख चालक है तथा सरकार का लक्ष्य वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। मंत्री ने ग्रेट निकोबार परियोजना का समर्थन करते हुए कहा कि यह परियोजना द्वीप समूह के पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित किए बिना क्षेत्र के आर्थिक और रणनीतिक विकास को नई दिशा देगी। उन्होंने कहा कि यह परियोजना समुद्री संपर्क, व्यापार, निवेश और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप में आयोजित मुख्य समारोह में केंद्रीय मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और योग को स्वस्थ एवं संतुलित जीवन का आधार बताया। कुल मिलाकर यह दौरा अंडमान निकोबार में विकास, संपर्क और जन कल्याण के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपादक अंकित कुलश्रेष्ठ के साथ मैं तरन्नुम मोहम्मद।
1: एंड द गोवा गवर्नमेंट हैज स्ट्रेंथेंड इट्स कमिटमेंट टू द हाउसिंग वेलफेयर फोर्स scheduled tribe communities by enhancing benefits under the Atal Asra Yojana. The scheme

0: which provides financial assistance for house construction, reconstruction, and repairs, is expected to help more families secure safe and dignified housing. We have more on this from our correspondent.
1: In a major boost to housing welfare, the Goa government has increased financial assistance under the Atal Asra Yojana for eligible scheduled tribe families. Under the revised provisions, assistance for house repair has been doubled from 1.5 lakh to 3 lakh. Financial support for house reconstruction has also been increased from 3 lakh to 5 lakh, providing greater relief to families in need of safe and secure housing. The enhanced assistance is expected to benefit families living in aging, damaged or inadequate homes, enabling them to undertake repairs or rebuild their houses with reduced financial burden. The government has also expanded the scheme's reach by increasing the annual income eligibility limit, allowing more scheduled tribe families to qualify for assistance. Officials say the initiative is aimed at improving housing conditions, promoting social welfare, and ensuring dignified living standards for tribal communities across Goa. For Parikrama, Nikhil Upadhyay, Akashwani News, Padji.
2: दोस्तों, चंडीगढ़ प्रशासन के संस्कृति विभाग द्वारा कल आयोजित फ्यूजन फेस्ट 2026 के तहत विश्व संगीत दिवस 2026 का आयोजन किया गया और इस आयोजन में संगीत, नृत्य और दृश्य कला के माध्यम से दिव्यांग कलाकारों और बच्चों की असाधारण प्रतिभा, उनकी रचनात्मकता और दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित किया गया। पंजाब के राज्यपाल और यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। और क्या हुआ वहां, सुनते हैं संवाददाता से।
3: कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों और कलाकारों द्वारा उल्लेखनीय प्रस्तुतियां दी गईं। इसमें मुख्य आकर्षण VR1 की प्रस्तुति रही, जो भारत का पहला पेशेवर व्हीलचेयर डांस समूह है। व्हीलचेयर पर बैठे इन नौजवानों ने मां तुझे सलाम गीत प्रस्तुति पेश करके सबका मन मोह लिया।

0: इस समूह ने अपने प्रदर्शन के माध्यम से आत्मविश्वास, समावेशिता और संघर्षशीलता का प्रेरक संदेश दिया। वहीं वाटिका स्पेशल स्कूल फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के विद्यार्थियों ने ऊर्जावान भंगड़ा प्रस्तुति देकर अपनी प्रतिभा और उत्साह का प्रदर्शन किया। चंडीगढ़ ललित कला अकादमी द्वारा दिव्यांग बच्चों की कलाकृतियों की प्रदर्शनी भी आयोजित की गई, जिसने युवा कलाकारों को अपनी रचनात्मकता और कल्पनाशीलता प्रदर्शित करने का मंच प्रदान किया। एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए श्री गुलाबचंद कटारिया ने दिव्यांग कलाकारों के लिए 5,00,000 रुपए के नगद पुरस्कार देने की घोषणा की। इस प्रकार की यह पहली पहल है जिसका उद्देश्य उनकी कलात्मक उपलब्धियों तथा समाज में उनके योगदान को प्रोत्साहित करना और सम्मानित करना है। परिक्रमा के लिए जलंधर से मैं राजेश बाली।
1: तो अनुजा, आइए अब चलते हैं खेल के मैदान में और अपने श्रोताओं को बताते हैं वहां की हलचल। फीफा विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने पहली बार खेल रही जॉर्डन की टीम को 2-1 से मात दी। लियोनेल युवा मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। एक महत्वपूर्ण मुकाबले में अर्जेंटीना ने कल रात ग्रुप जे मैच में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट राउंड में प्रवेश किया।
2: And if we come to the business news today, benchmark domestic equity indices declined sharply by 1.2%, mirroring losses across global markets. The Sensex plunged 893 points to close at 76,201, while the Nifty shed 279 points to settle at 23,824. Meanwhile, in the broader market on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index slipped over 1%, while the small-cap 100 index lost 0.5%. Concerns over weak monsoon and its potential impact on economic growth further weighed on investor sentiment. And for more updates about the market activities, tune in to Akashvani's bilingual program, Market Mantra, at 6:30 p.m. this evening.
1: और आइए दोस्तों, अब हम याद करें महान स्वतंत्रता सेनानियों को और फिर बात

0: करेंगे उन महान व्यक्तित्वों की भी है जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
1: आज हम राष्ट्रवादी नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1934 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति के रूप में अपना सार्वजनिक जीवन आरंभ किया। वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे कम आयु के उपकुलपति थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनलिस्ट पार्टी और कृषक प्रजा पार्टी के गठबंधन के वास्तुकार थे, जिसने 1940 में मुस्लिम लीग को सत्ता से बेदखल कर दिया था और एकजुट बंगाल को राष्ट्रवादी सरकार का मंत्र दिया था।
2: वे वित्त मंत्री बने, लेकिन 1942 में उन्होंने वायसराय लिनलिथगो के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मंत्रालय से त्याग पत्र दे दिया। चूंकि कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं को जेलों में डाल दिया गया था, इसलिए उन कठिन दिनों में राष्ट्रवादी भारत के प्रवक्ता के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कंधों पर आई। 1943 के मानव निर्मित अकाल में बंगाल की पीड़ित जनता के लिए उनकी सेवा ने उन्हें राष्ट्रीय मंच पर ला खड़ा किया और उन्हें समूचे देश में लोकप्रिय बना दिया।
0: दोस्तों, आज पुण्यतिथि है अभिनेता, नाट्यकार, बहुभाषी कवि और गीतकार हरीन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय की। हिंदी सिने जगत में ऐसा माना जाता है कि सबसे ज्यादा विद्वान और पढ़े लिखे प्रतिभावान व्यक्ति हरीन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय ही थे, जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। सरोजनी नायडू के छोटे भाई, जिन्हें हिंदी फिल्मों के कई मशहूर गानों के लिए याद किया जाता है, कई गाने उन्होंने लिखे इसलिए और कुछ उन पर फिल्माए गए इसलिए। तो ऐसा ही एक गाना था फिल्म आशीर्वाद में, जिससे हम शुरुआत करते हैं, आपको याद आए। दरअसल मंच पर वो इसे कई बार गाते थे, लेकिन फिल्म में गाया था इसे अशोक कुमार ने, लेकिन लिखा था हरीन्द्रनाथ ने।
3: रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक बीच वाले स्टेशन

और दोस्तों फिल्म बावर्ची में उन्होंने एक पुराने विचारों वाले, एक दकियानूसी लगने वाले, जबकि ऐसा था नहीं, एक ऐसे पात्र की भूमिका अदा की जो सबसे वरिष्ठ हैं घर में, और उन पर ये गाना फिल्माया गया था जिसे गा रहे थे पर्दे पर असरानी। आपको याद आएगा फिल्म बावर्ची से।

और दोस्तों फिल्म जूली का ये गाना जो अपने समय में बहुत मशहूर रहा और आज भी गुनगुनाते हैं, और इसकी अनोखी बात यह है कि हिंदी सिनेमा में इस्तेमाल हुए बहुत कम ऐसे गीतों में से जो लिखे अंग्रेजी में गए थे, और इसे लिखने वाले हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ही थे। तो उन्हें आज हम अपने हृदय से श्रद्धांजलि देते हुए आइए सुनते हैं उनका लिखा हुआ ये मशहूर गीत।

0: What a beautiful song, which was picturized on Rehman, but it was sung on the screen by Gurudat. We also have selected a dialogue in Rehman's voice.
1: मैं चौधरी वंश का मर्द हूँ छोटी बहू, गर्म खून है मेरी रगों में। इस हवेली के मर्दों की सेवा करना हमारी बहुओं के बस का रोग नहीं।
2: मैं दूसरी बहू जैसी नहीं हूँ जी, गरीब घर की लड़की हूँ। स्वामी को खुश करने के लिए सब कुछ कर सकती हूँ, सब कुछ।
1: मुझे खुश करने के लिए गाना गा सकोगी?
2: मेरा गाना पसंद आएगा तो?
1: वो तुम्हारा भजन नहीं, मस्ती में डूबा हुआ गाना, जैसे चुन्नी दासी गाती है। गा सकोगी?
0: This was a dialogue between Rehman and Meena Kumari from the famous film Sahib Bibi aur Gulam. And we have chosen another song from you on from the movie Choti Behen, in which Rehman had acted.

0: And today is also the birth anniversary of an Indian professional footballer who played as a striker for the India national football team. He also captained the national team and later on became the coach of the Indian national team. He also captained the Indian national team, as I said, and he represented India in 50 official matches and scored 15 official goals for the country. He was one of the first recipients of Arjuna Award when the awards were instituted in 1961. He was awarded the prestigious Padma Shri in 1990 and was named the Indian footballer of the 20th century. In 2004, he was awarded the FIFA Order of Merit, the highest honor awarded by FIFA.
1: और दोस्तों आज ही है जन्मदिन फिल्म अभिनेता राज बब्बर का, जिनका जन्म 23 जून 1952 को हुआ था उत्तर प्रदेश के टूंडला में, जो आगरा के नज़दीक है. और राष्ट्रीय जो नाट्य विद्यालय है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के 1975 बैच के आप छात्र रहे. नई दिल्ली में ट्रेनिंग के बाद मुंबई चले गए और 70 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस रीना रॉय के साथ अपनी फिल्म करियर की उन्होंने शुरुआत की. बी आर चोपड़ा की फिल्म इंसाफ का तराजू में एक भयानक किस्म के रोल से उन्हें काफ़ी चर्चा मिली और इसके बाद बी आर चोपड़ा के बैनर की फिल्मों का जैसे वो एक अहम हिस्सा ही बन गए थे. और दीपक पराशर और सलमा आगा के साथ फिल्म निकाह उनकी काफ़ी मशहूर हुई. स्मिता पाटिल के साथ आज की आवाज़ में नज़र आए और बहुत सी पंजाबी फिल्में भी की. बाद में राजनीति में भी वो गए और अभी भी सक्रिय हैं और गाए बगाए हमें फिल्मों में नज़र आते हैं, तो उन्हें हम जन्मदिन की देते हैं हार्दिक शुभकामनाएँ.
0: And today we also remember Nirmala Joshi, the sister, in fact, Sister Nirmala Joshi. It was in 1976 that Sister Nirmala Joshi started the contemplative branch of the Missionaries of Charity and remained at its head until 1997, when she was elected to succeed Mother Teresa as Superior General of the Institute. Her term as Superior General ended on 25th of March 2009, and she was succeeded by a German-born sister after that. She was an Indian religious sister who succeeded Nobel laureate Mother Teresa. And the award she was bestowed on was the Padma Vibhushan, and also for her services to the nation.
1: दोस्तों वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का, तो आज्ञा दीजिए हमें यानी मुनीश शर्मा और अनुजा को परिक्रमा यहीं समाप्त करने की. अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहें तो लॉग ऑन जरूर कीजिए हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in. दीजिए आज्ञा. नमस्कार.

0: कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है, जिन्होंने अपने कार्य, समर्पण और उत्कृष्ट उपलब्धियों से देश का गौरव बढ़ाया है। 2026 के लिए कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। प्रथम नागरिक समारोह जो 25 मई को आयोजित किया गया था, आज इसका दूसरा समारोह है, जिसमें 67 विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 57 पद्मश्री शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं और सूची में विदेशी एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई श्रेणी के 6 व्यक्ति और 16 मरणोपरांत पुरस्कार प्राप्तकर्ता भी शामिल हैं। श्रोताओं, राष्ट्रपति भवन का गणतंत्र मंडप आज अपनी पूरी भव्यता के साथ सुसज्जित है। भारतीय कला, स्थापत्य और लोकतांत्रिक परंपराओं का अद्भुत संगम इस मंडप में दिखाई देता है। भव्य झूमर, आकर्षक सज्जा, गरिमामय वातावरण और राष्ट्र की सर्वोच्च संवैधानिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों की उपस्थिति समारोह की प्रतिष्ठा को और बढ़ा रही है। बहुत से गणमान्य व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं, अपना अपना स्थान ले चुके हैं, जिसमें हम देख पा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, साथ ही साथ और मंत्रिपरिषद के सदस्य, संसद सदस्य, न्यायपालिका के वरिष्ठ अधिकारी, सशस्त्र बलों के प्रमुख तथा विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियां और गणमान्य अतिथि यहाँ उपस्थित हैं। और साथ ही गौरव के साथ उपस्थित हैं वो पद्म पुरस्कार विजेता और उनके परिवार के सदस्य, जिन्हें आज देश के माननीय राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा। और अब हम देख रहे हैं गणतंत्र मंडप में आगमन हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, और अपने स्थान की तरफ बढ़ते हुए प्रधानमंत्री सबको अभिवादन स्वीकार करते हुए, सबको नमस्कार करते हुए और अपनी जगह पर बैठते हुए, सभी लोग उनके साथ खड़े हो चुके थे और अब सब अपने स्थान पर वापस बैठ चुके हैं। नितिश,
1: A warm welcome to all the listeners of Akashvani from Ganatantra Mandap, Rashtrapati Bhavan. In a short while from now, Honorable President Draupadi Murmu will confer the Padma Awards 2026 at the second civil investiture ceremony of this year. The President will confer 65 Padma Awards, including 2 Padma Vibhushan, 7 Padma Bhushan and 56 Padma Shri. Instituted in 1954, these awards are announced on the occasion of the Republic Day every year. The award seeks to recognize work of distinguished and is of work of distinction, and it is given for distinguished and exceptional achievements in various fields and disciplines, including art, literature, education, sports, medicine, social work, science, engineering, public affairs, and ट्रेड एंड इंडस्ट्री।
0: और नितिश, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर सभी लोग अपने अपने स्थान से उठ गए हैं, क्योंकि माननीय उपराष्ट्रपति का आगमन हो रहा है। सीपी राधाकृष्णन अभी यहाँ आगमन हुआ है उनका गणतंत्र मंडप में, सभी को नमस्कार करते हुए।
1: Well, the first citizen of the nation, Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu, will be honoring the most distinguished Indians for their exemplary work in various fields. What a proud woman, Shalini, for any citizen when his or her work is recognized by the nation. Proud are the family members of the recipients who are seated here to cheer their family members when the nation is giving to reward their dear ones. A day like this comes once in a lifetime.
0: Indeed, बिल्कुल सही कहा नितिश, यही वो क्षण होता है जब वर्षों की साधना, सेवा और उपलब्धियों को राष्ट्र की सर्वोच्च मान्यता प्राप्त होती है। ये सम्मान ना केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि का प्रतीक है, बल्कि उस क्षेत्र विशेष के महत्व और उसकी राष्ट्रीय स्वीकार्यता को भी का भी परिचायक है। श्रोताओं, पद्म पुरस्कारों की विशेषता ये है कि इनमें भारत के महानगरों से लेकर दूरस्थ गांवों तक के वो लोग शामिल होते हैं, जिन्होंने बिना किसी प्रचार प्रसार के समाज सेवा, लोक कला, जनजातीय संस्कृति, शिक्षा, चिकित्सा और मानवीय कल्याण के क्षेत्र में

0: साधारण कार्य किए हैं। यही कारण है कि पद्म पुरस्कार भारत की विविधता और समावेशी विकास की भावना का जीवंत प्रतिबिंब माने जाते हैं। हर पुरस्कार के साथ एक प्रेरक जीवन यात्रा जुड़ी होती है नितेश। इन सम्मानित व्यक्तियों ने अपने अथक परिश्रम, नवाचार, सेवा और प्रतिबद्धता से देश को नई ऊर्जा प्रदान की है। आज का ये समारोह भारत की उस भावना का उत्सव है जिसमें उत्कृष्टता को पहचान और सम्मान दिया जाता है।
1: Well, Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories, namely Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. The awards are given in various disciplines and the fields of activities that include art, social work, public affairs, science and engineering, trade and industry, medicine, literature and education, sports, civil service, etc. Padma Vibhushan is awarded for exceptional and distinguished service, Padma Bhushan for distinguished service of high order, and Padma Shri for distinguished service in any field. The awards are announced on the occasion of Republic Day every year. And the big wheelers announced the arrival of Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu.

0: राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान की धुन सभागार में मौजूद महार रेजिमेंट सेंटर के मिलिट्री बैंड द्वारा प्रस्तुत किया गया, बैंड मास्टर सूबेदार बीपी गुरुंग के नेतृत्व में।
1: माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो पद्म पुरस्कार 2026 के अलंकरण समारोह की कार्रवाई आरंभ की जाए। धन्यवाद।
0: और अब औपचारिक रूप से एक स्वीकृति ली गई माननीय राष्ट्रपति से कि आज विधिवत
1: पद्म विभूषण
0: की शुरुआत की जा रही है।
1: श्री पी नारायणन, साहित्य एवं शिक्षा।
0: नारायण जी के नाम से लोकप्रिय श्री पी नारायण राष्ट्रवादी पत्रकारिता के दिग्गज और एक महत्वपूर्ण सामाजिक राजनीतिक आयोजक हैं, जिन्होंने केरल में कभी हाशिए पर रहने वाली विचारधारा को व्यक्त करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।
2: Beyond journalism, Sri Narayanan made significant contributions as a scholarly author and a prolific translator. His work as a translator includes the works of V.D. Savarkar, M.S. Galwalkar and Deen Dayal Upadhyay from English and Hindi into Malayalam.
0: बहुत ही गौरव का क्षण।
1: न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त के टी टॉमस लोक कार्य।
0: न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त के टी टॉमस भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। आपको आपराधिक कानून, पुलिस सुधार और निजी व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्रों में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए काफी जाना जाता है। न्यायमूर्ति टॉमस को वर्ष 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें अन्य पुरस्कारों में भी सम्मानित किया जा चुका है और बहुत सारे उनको पुरस्कार दिए मिल चुके हैं।
2: जस्टिस राय टॉमस इज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ क्रिमिनल लॉ, पुलिस रिफॉर्म्स एंड फाइट अगेंस्ट करप्शन इन प्राइवेट प्रोफेशनल एजुकेशन फील्ड्स। इज रिसीविंग द पद्म विभूषण फ्रॉम ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू।

0: பத்ம பூஷன், டாக்டர் விஜய் அம்ரித்ராஜ், கேல் டென்னிஸ்.
1: डॉक्टर विजय अमृतराज भारत के महान टेनिस खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने 14 साल की उम्र से जूनियर स्पर्धाओं में विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करना शुरू किया और फिर ओपन इवेंट्स में गए। लगातार 20 वर्षों तक डेविस कप में भारत का प्रतिनिधित्व करने का सम्मान मिला है, जिसने टीम को 2 बार फाइनल में पहुँचाया है। एक ऐसी उपलब्धि जो भारत के ओपन युग में इतिहास में एक बेजोड़ एग्जाम्पल मानी जाती है। अपना पुरस्कार देते हुए
0: डॉक्टर SKM महिला नंदन, समाज सेवा।
1: SKM कंपनी समूह के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर SKM मलिया नंदन एक प्रसिद्ध उद्यमी होने के साथ विभिन्न सामाजिक कल्याण ट्रस्टों के संस्थापक और एक उपभोक्ता कार्यकर्ता भी हैं।
2: Dr. Melanandan has received several awards and honors, Padma Shri Award for Social Work in 2013, National Productivity Awards, he got it for 8 times, and National Safety Awards 2 times. Agriculture and Processed Food Products Export Promotion Awards 5 times.
1: अपना पुरस्कार ग्रहण करते हैं।
0: श्री ममूटी, कला फिल्म अभिनय।
1: ममूटी एक भारतीय फिल्म अभिनेता और निर्माता है जो दक्षिण भारतीय भाषा के सिनेमा में हैं, लेकिन मुख्य रूप से मलयालम

0: फिल्म उद्योग में काम करते हैं। 5 दशकों के करियर में श्री मम्मूटी ने 400 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है, जिनमें मुख्य रूप से मलयालम के साथ साथ कई तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी और अंग्रेजी की कई फिल्मों में उन्होंने काम किया है।
1: क्लैड इज इन ए फॉर्मल बंद गला। श्री मम्मूटी इज वाइडली रिस्पेक्टेड एज अ गुडविल एंबेसडर फॉर न्यूमरस सोशल कॉजेस आल्सो एंड द पेट्रन फॉर सेवरल
2: श्री वेल्लापल्ली नटेशन लोक कार्य।
0: श्री वेल्लापल्ली नटेशन केरल के प्रमुख राजनीतिक नेता और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। श्री नटेशन ने के मार्गदर्शन में शिक्षा योगों का सबसे स्थायी योगदान रहा है। श्री नारायण ट्रस्ट के माध्यम से इस नेटवर्क में स्कूल, कॉलेज और तकनीकी केंद्रों सहित संस्थानों की संख्या 40 से बढ़कर 130 हो गई है।
1: एंड श्री नटेशन आल्सो इंट्रोड्यूस्ड फैमिली यूनिट्स एट द शाखा लेवल, एक्सटेंडिंग द ऑर्गेनाइजेशंस रीच इनटू हाउसहोल्ड्स एंड प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म फॉर वीमेन्स लीडरशिप, एजुकेशनल सपोर्ट, सेविंग्स प्रमोशन, सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी कोहेजन बियॉन्ड केरला। SNDP units were established in Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra, Delhi, and Gujarat, receiving the Padma Bhushan from Honorable President.
2: Dr. Datta Treyodu Nori, Chikitsa Oncology.
0: आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रशस्त ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, अग्रणी चिकित्सक और महत्वपूर्ण बुद्धिजीवी नेता हैं। 4 दशकों से अधिक के अपने करियर के दौरान उन्होंने न्यूयॉर्क में विश्व प्रसिद्ध कॉर्नल मेडिकल सेंटर और में ऑन्कोलॉजी के प्रोफेसर और अध्यक्ष के साथ ही कैंसर केंद्र के निदेशक के पद पर कार्य किया है।
1: डॉक्टर नोरी हैज एक्सटेंडेड हिज एक्सपर्टाइज इन एक्सपीरियंस टू वेरियस गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस टू एस्टैब्लिश कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर्स इन नियरली 2000। In early 2000, he helped the government of Andhra Pradesh.
2: Shri Shibu Soren, Marnopranth, Lok Karya, unki patni, Shrimati Rupi Soren.
0: Shri Shibu Soren ko Marnopranth, ye award diya ja raha hai, jo unki patni lengi aur maane rashtrapati niche utarte hue, unko ye padak pradan karne ke liye. पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। श्री सोरेन का 4 अगस्त 2025 में निधन हो गया था। उन्हें श्रद्धापूर्वक विश्वम गुरु के नाम से जाना जाता है। भारत के प्रमुख आदिवासी जननेता, सामाजिक सुधारक तथा झारखंड आंदोलन के मुख्य शिल्पकारों में से वो एक थे।
1: फॉर मिलियंस श्री सोरेन वाज मोर देन ए पॉलिटिकल लीडर, ही वाज ए कस्टोडियन ऑफ मेमोरी, रेजिस्टेंस एंड होप।
2: अलका याज्ञिक, कला, पार्श्व गायन।
0: और अब नाम बुलाया गया है अलका याज्ञिक का, जो भारत की एक प्रख्यात पार्श्व गायिका है और कला के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित कलाकार है। माननीय प्रधानमंत्री को नमस्कार करते हुए झुककर प्रणाम कर रही हैं। हम देख पा रहे हैं 4 दशक से अधिक की उल्लेखनीय गायन यात्रा में उनका मधुर स्वर, कलात्मक उत्कृष्टता और निरंतर समर्पण ने भारतीय सिनेमा की सांस्कृतिक विरासत को अत्यधिक समृद्ध किया है।
1: Born on 20th of March 1916 in Kolkata, West Bengal, Shrimati Yagnik embarked upon her musical journey with a strong classical foundation that shaped her distinctive artistic sensibility and vocal identity. Her most famous song was Ek Do Teen.
0: बहुत सारे उनके गाने हैं जो अति
2: पद्म श्री
0: हैं।
2: श्री नूरुद्दीन अहमद, कला निर्देशन।
1: नाउ वी मूव ऑन टू पद्मश्री अवार्डीज। एंड श्री नूरुद्दीन अहमद इज अ विजनरी आर्ट डायरेक्टर, स्कल्प्टर एंड सेट डिजाइनर हु हैज रिफाइंड द विजुअल लैंडस्केप ऑफ अहमिया आर्ट एंड कल्चर थ्रू हिज पायनियरिंग वर्क इन मोबाइल थिएटर, फिल्म्स एंड टेलीविजन।
0: आप एक दूरदर्शी कला निर्देशक, मूर्तिकार और सेट डिजाइनर हैं, जिन्होंने मोबाइल थिएटर, फिल्म और टेलीविजन तथा स्मारकीय सार्वजनिक चित्रों में अपने अग्रणी कार्य के माध्यम से असमिया कला और संस्कृति के परिदृश्य को पुनः परिभाषित किया है। माननीय राष्ट्रपति से अपना पुरस्कार ग्रहण करते हुए
2: श्री तिरुवरूर भक्तवत्सलम, कला मृदंगम।
0: श्री तिरुवरूर भक्तवत्सलम प्रतिष्ठित मृदंगम कलाकार हैं, कर्नाटक संगीत की काल्य वाद्य परंपरा के सबसे विशिष्ट कलाकार हैं। श्री भक्तवत्सलम ने 9 वर्ष की आयु से ही अपनी माता के साथ संगीत समारोह में जाना प्रारंभ कर दिया था। और इनके साथ एक खास बात जो मैं बताना चाहूँगी अपने श्रोताओं को, कि इनके असाधारण संगीत प्रतिभा के कारण आकाशवाणी ने उन्हें एक अत्यंत दुर्लभ और विशिष्ट सम्मान प्रदान किया। उन्हें बीच की बी हाई श्रेणी को पार करते हुए बी ग्रेड से सीधे ए ग्रेड में पदोन्नत कर दिया गया, जो उस समय अत्यंत असामान्य उपलब्धि मानी जाती थी। इसके कुछ

0: समय बाद उन्हें प्रतिष्ठित ए टॉप ग्रेड भी प्राप्त हुआ। अपना सम्मान माननीय राष्ट्रपति से लेते हुए
1: श्री वत्सलम was rooted in Tanjore style.
2: Dr. Krishnamurthy Balasubramanyam, Vigyan Evam Engineering.
0: अब नाम पुकारा गया है डॉक्टर कृष्णमूर्ति बालासुब्रमण्यम का, जो एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में

0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अपने योगदान के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं और एक संस्था निर्माता भी हैं। आपने IIT कानपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और प्रतिष्ठित एल्टन फेलोशिप से सम्मानित होने पर सीधे PhD करने के लिए मैकमास्टर यूनिवर्सिटी कनाडा में स्कूल ऑफ मेटीरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग।
1: श्री ब्रिज लाल भट्ट, समाज सेवा।
2: Shri Brijlal Bhatt is known for his distinguished social service promoting peace and harmony after his exemplary contribution during active service in Jammu and Kashmir. Under his payback stage of life now, Shri Bhatt is now working as Chairman Administrative Committee, Shri Ramakrishna Mahasammelan Ashram Vivekanand Kendra, Nagdandi, Anantnag, Kashmir. Clad in the Bandgala two-piece suit, receiving the Padma Shri from the president.
1: Shri Tarun Bhattacharya, Kala Santur.
0: श्री तरुण भट्टाचार्य जी का जो प्रख्यात संतूर वादक हैं, जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को नई पहचान दी है और शततंत्री वीणा वादन शैली में नए परिवर्तन की आधार शिक्षा रखी है। उनकी नई तकनीकों और तरीकों ने शततंत्री वीणा को एक व्यापक रूप से सीखा और प्रयोग किया जाने वाला वाद्य यंत्र बना दिया है।
2: श्री भट्टाचार्य इज क्रेडिटेड फॉर हैविंग क्रिएटेड न्यू हिंदुस्तानी क्लासिकल रागस राग गंगा बेस्ड ऑन स्वच्छ गंगा अभियान। And also having created
1: Shri Jyotish Devnath, Kala, Hatkargha Bunai.
0: और अगला नाम श्री ज्योतिष देवनाथ का, जो पारंपरिक हथकरघा बुनाई और मलमल और चांदनी साड़ियों में विशेषज्ञता प्राप्त एक प्रतिष्ठित प्रतिपादक हैं। ये बंगाल के समृद्ध वस्त्र परंपराओं के प्रमुख शिल्पकार हैं, जिन्होंने अपना जीवन भारत की सबसे बारीक और ऐतिहासिक रूप में महत्वपूर्ण बुनाई विरासतों में से एक को संरक्षित करने और पुनर्जीवित करने के लिए समर्पित किया है।
2: बियॉन्ड हिज पर्सनल आर्टिस्ट्री, श्री देवनाथ हैज मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन एज ए मेंटर एंड
1: डॉक्टर जोगेश देवरी कृषि।
0: अगला नाम डॉक्टर जोगेश देवरी का, आसाम एक प्रसिद्ध रेशम उत्पादन विशेषज्ञ है, जिन्हें रेशम उद्योग विशेष रूप से एरी रेशम में अपने अग्रणी योगदान के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है।
2: एब्सोल्युटली, डॉक्टर देवरी इज एरी सिल्क पायनियर, क्रेडिटेड विद मॉडर्नाइजिंग ट्रेडिशनल एरी सिल्क रेयरिंग मेथड्स। ही इज अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट फॉर एरी सिल्क अहिंसा और नॉन वायलेंट सिल्क, व्यूइंग इट एज ए सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर असम्स इकोनॉमी एंड रूरल यूथ। आई थिंक ही इज वेयरिंग द एरी सिल्क।
1: श्री भिकलिया लाडकिया डिंडा, कला लोक संगीत।
0: अगला नाम श्री डिंडा, आप एक प्रतिष्ठित आदिवासी लोक संगीतकार हैं और बालवंडा गांव तालुका जवार के प्रतिष्ठित तरपा कलाकार हैं। उन्होंने 7 दशकों से अधिक समय से अपना जीवन आदिवासी सांस्कृतिक विरासत के अभिन्न और पवित्र अंग तरपा संगीत को प्रशिक्षित करने में, संरक्षित करने में बताया है।
2: Well, in addition to being a master performer, Shri Dhinda has served the tribal community as a bhagat, that is a traditional
1: Dr. Amida Fernandez, Chikitsa, Neonatology.
0: प्रसिद्ध न्यूनेटोलॉजिस्ट में से एक डॉक्टर अर्मिडा फर्नांडिस को भारत में न्यूनेटोलॉजी, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण और समुदाय आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य में उनके अग्रणी योगदान के लिए जाना जाता है।
2: डॉक्टर फर्नांडिस वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन मार्केटली रिड्यूसिंग द हाई मोर्टेलिटी रेट अमंग प्री टर्म एंड सिक न्यूनेटल्स एट LTMG हॉस्पिटल थ्रू लो कॉस्ट सस्टेनेबल इनोवेशंस। क्लैड इन अ ग्रीन साड़ी, शी इज proudly receiving this award from Honorable President
1: Dr. Chandramouli Gaddumunugu, Vigyan Evam Engineering.
0: आप एक भूतपूर्व उत्कृष्ट वैज्ञानिक, परियोजना निदेशक, आकाश रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला हैदराबाद DRDO के कार्यक्रम निदेशक हैं।
2: Despite numerous hurdles over a demanding journey spanning more than 3 decades, Dr. Chandramouli remains steadfast in his focus, inspiring teams across diverse organizations, resolving complex technical challenges for surface-to-air missile technology.
1: Dr. Prem Lal Gautam, Vigyan Evam Engineering.
0: डॉक्टर प्रेम लाल गौतम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार के कुल अधिपति हैं। एक प्रख्यात

0: प्रजनक शिक्षक मार्गदर्शक अनुसंधान प्रबंधक संस्था निर्माता है।
1: डॉक्टर गौतम वॉज एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट ऑफ ए डजन इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज पायनियर्ड नेशनल सिस्टम ऑफ प्लांट जर्मप्लाज्म रजिस्ट्रेशन एक्सेलरेटेड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्स एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ प्लांट वेराइटीज।
2: डॉक्टर राजा स्थापति कलियप्पा गौंडर कला कांस्य शिल्प।
0: अगला नाम कांस्य कला के प्रसिद्ध शिल्पकार हैं जिन्हें पद्मश्री से नवाजा जा रहा है। अपने कौशल को अगली पीढ़ी के साथ साझा करने के लिए डॉक्टर गौंडर ने अपने संस्थान में युवा पीढ़ी के लिए प्रशिक्षण कक्षाएं शुरू की हैं।
1: And due to Dr. Gonder's avid interest in arts, he also started focusing on preserving the old temples, which was struggling due to financial stress and left without maintenance. He renovated more than 100 temples which were left to perish and rebuilt them, and finally conducted Kumbh Abhishekam. What a great achievement.
2: Dr. Padma Gurmed, Chikitsa, Sowa Rigpa.
0: डॉक्टर पद्मा गुरमेद राष्ट्रीय सोवा रिगपा संस्थान लेह के संस्थापक निदेशक और लद्दाख अमची सभा लेह लद्दाख के अध्यक्ष हैं। वे आयुष चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत सोवा रिगपा चिकित्सा पद्धति को औपचारिक मान्यता दिलाने तथा लद्दाख एवं अन्य हिमालयी क्षेत्रों में इसके व्यवस्थित विकास के अग्रदूत में से एक माने जाते हैं। राष्ट्रपति महोदय से पद्मश्री ग्रहण करते हैं, एक अत्यंत गौरव का पल।
2: श्री अशोक कुमार हल्दर साहित्य एवं शिक्षा।
1: श्री अशोक कुमार हल्दर इज ए नोटेड इंडियन राइटर एंड सोशल थिंकर फ्रॉम मालदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। इन एडिशन टू बुक्स श्री हल्दर हैज ऑथर्ड अप्रॉक्सिमेटली 3000 आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन लीडिंग न्यूज़पेपर्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा। हिज फर्स्ट वॉक्ड अप टू द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एंड इज नाउ वॉकिंग स्लोली to receive his Padmashri award.
0: उन्होंने अपना जीवन साहित्य और सामाजिक चेतना तथा मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित किया। पद्मश्री माननीय राष्ट्रपति के कार्यक्रम द्वारा लेते हुए श्री अशोक कुमार हल्दर।
2: डॉक्टर सुरेश हनगवाड़ी चिकित्सा हीमोफीलिया।
1: Dr. Suresh Hanagwadi, founder and president of Karnataka Hemophilia Society, Devangiri, KHS, is a distinguished medical professional, visionary institution builder, and a tireless advocate for persons with hemophilia and rare bleeding disorders in India. Himself being suffering from severe hemophilia B, he transformed personal adversity into a lifelong mission of service, dedicating over 4 decades in improving diagnosis, treatment, rehabilitation and dignity for thousands of affected people.
0: माननीय राष्ट्रपति डॉक्टर सुरेश हनगवाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित करते हैं।
1: A proud moment for the family members who are all standing up and cheering.
0: बिल्कुल।
2: डॉक्टर चरण हेम्ब्रम साहित्य एवं शिक्षा संथाली।
0: श्री चरण हेम्ब्रम एक संथाली शिक्षाविद और सांस्कृतिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने उड़ीसा में संथाली भाषा साहित्य और संस्कृति के प्रचार पर प्रसार और संस्थागत विकास में असाधारण योगदान दिया है। कई सरकारी और साहित्य पत्रिकाओं में उनके लेख भी प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने संथाली ऑडियो एल्बम के लिए गीत भी रचे और आज भी संथाली साहित्य और संगीत विरासत में योगदान दे रहे हैं।
1: श्री हेम्ब्रम प्लेड ए ट्रांसफॉर्मेटिव रोल इन संथाली एजुकेशन पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द टेन्योर एज सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड ऑफ संथाली एजुकेशन ओडिशा अंडर एएस ECE Rai Rangpur from 1992 to 2004.
2: Dr. Shubha Venkatesh Iyengar, Vigyan Evam Engineering.
0: डॉक्टर शुभा वेंकटेश अयंगर एक प्रख्यात वैज्ञानिक है जिनके काम ने भारत के वैज्ञानिक और तकनीकी परिदृश्य को बदल दिया है। उनका करियर स्वदेशी नवाचार की शक्ति का प्रमाण है जो राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के प्रति गहरी प्रतिबद्धता से प्रेरित है।
1: Receiving the Padma Shri, Dr. Iyengar's most significant innovations are Drishti, visibility imaging system, and aviation weather observation system, which have enhanced the safety of all Indian international airports as they are mandatory equipments.
2: Shri T. T. Jagannathan, Marnoprant, Vyapar

0: एवं उद्योग उनके पुत्र श्री मुकुंद थट्टे।
1: श्री जगन्नाथन को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है, जब उनके पुत्र रिसीव करेंगे। 9 अक्टूबर 2025 को श्री जगन्नाथन का निधन हो गया था। आप भारत की सबसे बड़ी रसोई उपकरण और कुकवेयर कंपनी टीटी के प्रेस्टिज लिमिटेड का नेतृत्व 5 दशकों से अधिक समय तक निर्वाह किया था।
2: As chairman of the TTK Group, Shri Jagannath built a reputation for quality, innovation,
0: Sant Niranjan Das ji, Adhyatma.
1: और अगला नाम पुकारा गया है पद्मश्री के लिए संत निरंजन दास जी, जो विश्व प्रसिद्ध डेरा सचखंड पल्लान के वर्तमान आध्यात्मिक प्रमुख हैं और उत्तर प्रदेश के वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर में श्री गोविंद रविदास जन्मस्थान मंदिर सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं।
2: सिंस अगस्त 9, 1994 संत निरंजन दास जी हैज बीन लीडिंग डेरा सचखंड पल्लान। हिज टेन्योर हैज बीन मार्क्ड बाय अनपैरेलल्ड कंट्रीब्यूशंस टू सोशल वेलफेयर। He oversees the Sant Sarvandas Charitable Hospital in Jalandhar, a 150-bed multi-speciality facility providing affordable care.
0: Professor Vijayanathan Kamakoti, Vigyan Evam Engineering.
1: IIT Madras चेन्नई के निदेशक प्रोफेसर विजयनाथन कामकोटि सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को मुख्य उत्पादों में बदलने हेतु अपने करियर को समर्पित करने के लिए जाने जाते हैं, जो आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
2: In the academic realm, Shri Kamakoti has guided around 20 PhD and 30 MS by research scholars. He has published over 200 extensively cited papers in
0: Professor Mangala Kapoor, साहित्य एवं शिक्षा शास्त्रीय संगीत।
1: अगला नाम पुकारा गया है प्रोफेसर मंगला कपूर का। आप एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका संगीतज्ञ शिक्षाविद हैं। आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से संगीत में म्यूजिक में पीएचडी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया और कई साल लगभग 30 वर्षों से अधिक समय तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सेवा की और वर्ष 2019 में संगीत विभाग के प्रोफेसर और प्रमुख के रूप में सेवानिवृत्त हैं।
2: प्रोफेसर कपूर हैज मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस टू इंडियन क्लासिकल म्यूजिक थ्रू परफॉर्मेंस एंड रिसर्च। शी इज द ऑथर ऑफ द 5 बुक्स ऑन म्यूजिक इंक्लूडिंग हर ऑटोबायोग्राफी सीरत।
1: प्रोफेसर मंगला कपूर माननीय राष्ट्रपति से पद्मश्री ग्रहण करते हैं।
0: डॉक्टर अशोक खाड़े व्यापार एवं उद्योग।
1: अगला नाम डॉक्टर अशोक खाड़े का। आप डीएलएस ऑफशोर लिमिटेड के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक, जो व्यापक रूप से एक अग्रणी टेक्नोक्रेट उद्यमी के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने भारत की स्वदेशी अपतटीय इंजीनियरिंग क्षमताओं को सुदृढ़ करने और विदेशी संविदाकारों पर निर्भरता को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
2: डॉक्टर खाड़े बिगेन हिज प्रोफेशनल करियर इन 1975 मुंबई,
0: साहित्य एवं शिक्षा,
2: ही वर्क्ड इन स्ट्रक्चर डिजाइन एंड क्वालिटी कंट्रोल।
1: और अब अगला नाम खोकलोवा। डॉक्टर खोकलोवा को भारतीय भाषा शास्त्र विभाग एशियाई और अफ्रीकी अध्ययन संस्थान मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी रूस में आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं। वे इंडोलॉजिकल अध्ययन में उनको उनके योगदान के लिए दुनिया भर में वो प्रसिद्ध हैं।
2: At present, Dr. Kokolova is teaching different linguistic courses at Moscow State University, which are very popular among students, Hindi at BA and MA in Punjabi.
1: आप एक दूरदर्शी नेता, एक विख्यात शिक्षाविद और ग्रामीण उत्थान के लिए एक अथक योद्धा हैं। डॉक्टर कोरे का जीवन देश की स्वावलंबन और शैक्षिक उत्कृष्टता की यात्रा का दर्पण है।
2: Among his most significant achievements is the establishment and development of 2 universities, KLE Academy and Higher Education and Research (KHER) and KLE Technological University.
0: श्रीमती पखिला लेक्थेपी, कला करबी गीत।
1: श्रीमती पखिला लेक्थेपी असम की करबी गीतों के प्रसिद्ध गायिका हैं। वर्ष 1978 में उन्हें आकाशवाणी गुवाहाटी में गाने का अवसर मिला, जहां उन्होंने करबी आधुनिक और लोकगीत प्रस्तुत किए। उन्होंने दूरदर्शन गुवाहाटी में भी करबी आधुनिक गीत प्रस्तुत किए।
2: श्रीमती लेक्थेपी स्टार्टेड

0: composing own song and lyrics on Kirby Modern Song in the year 1975 for Kirby Youth Festivals. She got first prize for her own composition and lyric song in Kirby Youth Festival in 1976. Attired in a traditional
1: पारंपरिक परिधान में असम के परिधान में माननीय राष्ट्रपति के समक्ष अपना पुरस्कार ग्रहण करते हुए और उनके परिजन उनके लिए ताली बजाते हुए
2: श्री रामा रेड्डी मामिदी मरणोपरांत सहकारिता उनकी पत्नी श्रीमती श्यामला रेड्डी
1: श्री रामा रेड्डी मामिदी को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है जो उनकी पत्नी माननीय राष्ट्रपति से ग्रहण करेंगे। आप भारत में व्यापक रूप से आधुनिक सहकारी कानून के मुख्य निर्माता के रूप में जाने जाते थे।
0: श्री मामिदी's achievements have transformed rural livelihoods, established 585 thrift and credit cooperatives benefiting over 2.69 lakh members in Telangana with an annual turnover of 570 crore. श्री मामिदी passed away on 26th October 2025. And the award is
2: Shri
0: received by her
2: Ra
0: wife.
2: Vesu Mani, Civil Seva.
1: श्री आर वी एस मणि एक सुपर परिचित सिविल सेवक हैं। श्री मणि ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में अपनी सेवाएं दी। अपने कार्यकाल के शुरुआती दौर में ही उन्हें चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं का सामना करना पड़ा। श्री मणि एक निष्ठावान सरकारी सेवक के रूप में पूरी तरह से राजनीति निरपेक्ष रहकर कार्य किया।
0: श्री मणि हैज रिटन 5 बुक्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस एंड हैज वर्कड एज अ सिंसियर गवर्नमेंट सर्वेंट इन एन एपॉलिटिकल मैनर। Credits were given to him for handling several sensitive
2: Shrimati
0: cases
2: without Kala falling Mandalam, prey Vimla
0: to
2: Menen,
0: any
2: Kala
0: vested interest.
2: Mohini Attam.
1: आप वर्तमान मोहिनी अट्टम शैली के पीछे की दृष्टि और प्रेरणा है, चाहे वो उसकी सुंदरता, वेशभूषा, केशभूषा, वाद्य यंत्र, यहाँ तक कि प्रस्तुति पैटर्न का तरीका हो, जो आज मोहिनी अट्टम की पहचान बन चुका है।
0: श्रीमती मेनन from the young age recognized the power of art as a nation's vital soft power and developed her journey to using classical dance as a medium for peace, unity, inclusion and human development.

0: ஸ்ரீ விளாதிமிர் மிஸ்தி வரிஷ்வலி மன்னோப்ராந்த் கேல் குஷ்தி கோச் உன்கி பத்னி ஸ்ரீமதி மரீன் சாரியா.
1: 23 June 2025 को इनका निधन हो गया था और मरणोपरांत व्लादिमिर मिस्तिवरिश्विली को ये पद्मश्री सम्मानित किया जा रहा है जो एक फ्री स्टाइल कुश्ती कोच थे. उनकी पत्नी ये सम्मान ग्रहण करते हुए माननीय राष्ट्रपति के कार्यक्रम के द्वारा.
2: He's remembered as one of the greatest coaches in the world of freestyle wrestling, having trained numerous Olympic medalists.
0: Shri Maganti Murli Mohan, Kala, Film, Abhinay.
1: Shri Murli Mohan, एक बहुआयामी व्यक्तित्व हैं जिन्होंने कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है और 85 वर्ष की उम्र में भी बहुत सक्रिय रहते हैं. उन्होंने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के सदस्य रहे और आंध्र प्रदेश राज्य फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में भी आपने कार्य किया.
2: In 1973, Shri Murli Mohan entered the film industry and recently completed Golden Jubilee of his film career. He received numerous honors and played lead roles in over 350 films.
0: Shri Mohan Nagar, Samaj Seva.
1: मध्य प्रदेश के जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष और भारत भारती शिक्षा समिति बैतूल के सचिव श्री मोहन नागर को मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और शैक्षिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए व्यापक रूप से पहचाना जाता है.
2: श्री नागर हैज हैड लेड सेवरल लैंडमार्क कैंपेन्स. इन 2006 ही अंडरटूक ए पदयात्रा टू एडवांस एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मोबिलाइजिंग लोकल कम्युनिटीज to institutionalize Jal Mahotsav, a river festival in the Machana River catchment area.
0: Dr. Punyamurti Nateshan, Pashu Chikitsa.
1: Dr. Punyamurti Nateshan, a pratishthit Pashu Aushad Vigyani, शिक्षाविद और ट्रांसलेशन वैज्ञानिक है. उन्होंने चार दशकों से अधिक के शिक्षण अनुसंधान और प्रसार कार्य के माध्यम से भारत में एथ

0: दोनों वेटरनरी चिकित्सा को उन्नत किया है.
1: A nationally and internationally acknowledged expert, Dr. Natation has served as a trainer and consultant to organizations
2: Shri
1: such as Department
2: Sarat
1: of
2: Kumar
1: Animal Husbandry
2: Patra,
1: and Dairying.
2: Kala Ikat Bunai.
0: और अगला नाम पुकारा गया है श्री सरत कुमार पात्र का. आप एक प्रसिद्ध हर कलाकार शिल्पकार हैं जो इकत बुताई बुनाई में अपने योगदान के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं. श्री पात्र द्वारा अतिरिक्त पाना तकनीक से बुने हुए कोणार्क वर्ष एक उल्लेखनीय कृति है.
1: श्री पात्रस कोणार्क टेक्सटाइल यूजिंग एक्स्ट्रा वेफ्ट टेक्निक इज अनदर रिमार्केबल वर्क. ही सक्सेसफुली डेवलप्ड नियरली 50 शेड्स यूजिंग नेचुरल डाइज. His efforts in creating human figures and calligraphic art based on some famous literary arts. An eminent handloom craftsman who is widely known for his contribution in ikat weaving.
2: Shri Simanchal Patra, Kala Lok Rangmanch.
0: श्री सीमांचल पात्र लोक रंगमंच की दुनिया के एक प्रसिद्ध हस्ती हैं. उन्हें कला जगत में भारत के एक प्रसिद्ध लोक रंगमंच प्रहलाद नाटक की भीष्म पितामह के रूप में जाना और सम्मानित किया जाता है. ये नाटक अपने जीवंत संगीत नाटकीय कथ्यों और सशक्त पात्रों के लिए जाना जाता है.
1: Born on 7th July 1927, श्री पात्रा hails from a poor rural family. And as per family tradition and culture, he is inclined to Vaishnavism. Shri Patra, from the age of 7, learnt Sakhi Nata, said to be precursor of classical Odissi dance, where male boys act as female Sakhi, from Guru Shri Narsingh Pradhan.
2: Guru Sangyu Sang Ponganar Kala लोक कला.
0: गुरु पोंगनर नागा वादिर वेलफेयर कल्चरल क्लब के सह संस्थापक हैं. वो इसकी स्थापना के बाद से लोक नृत्य संगीत और सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए महासचिव के रूप में कार्यरत हैं. और आप सुन पा रहे हैं वो क्योंकि अपने पारंपरिक परिधान में यहाँ पधारे हैं तो सभी लोग तालियां बजाकर उनका स्वागत कर रहे हैं. बहुत खूबसूरत सा परिधान है नितिश, पारंपरिक परिधान है. और इन्हें इनकी असाधारण उपलब्धियों और एओ नागा लोक कलाओं के अभिनव योगदान के फलस्वरूप यह प्रसिद्धि मिली है.
2: गद्दे बाबू राजेंद्र प्रसाद कला अभिनय.
1: श्री गद्दे बाबू राजेंद्र प्रसाद इज ए फेमस तेलुगु फिल्म एक्टर. For over four decades, starting with his debut in 1977, Shri Gadde Babu graced more than 286 films across six languages, even stepping into international waters. His genius lies in his special touch, versatile roles in family stories, social messages and comedy that hit home, blended with skills like mimicry.
0: सभी को घूम के उन्होंने घूम घूम के नमस्कार किया और अब माननीय राष्ट्रपति के पास पहुंचे हैं मुस्कुराते हुए. और पर्दे के पीछे नम्र विनय मेहनती और बिना किसी फिल्मी गॉडफादर के अपने मध्य वर्गीय संस्कारों से जुड़े हुए श्री गद्दे बाबू
2: सुश्री सविता पुनिया खेल हॉकी.
1: Ms. Savita Punia, the former captain and the current goalkeeper of the Indian women's national field hockey team, is one of India's most acclaimed sports personality. With an unprecedented 308 international caps, she is the first Indian woman goalkeeper to achieve this extraordinary milestone, exemplifying enduring resilience, skill and commitment. Truly the wall.
0: बिल्कुल. भारतीय महिला राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम की पूर्व कप्तान और वर्तमान गोलकीपर सुश्री सविता पूनिया.
2: श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ मरणोपरांत लोक कार्य, उनके पुत्र श्री कनद पुरकायस्थ.
0: अगला नाम श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ जिनको मरणोपरांत ये सम्मान दिया जा रहा है. 7 जनवरी 2026 को आपका निधन हो गया था. आप असम के एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्व थे.
1: श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ breathed his last on 7th January 2026 and his son is receiving the Padma Shri on behalf of his father.
2: Shri Bhagwan Das Raikwar Marnoparant Khel Bundeli Martial Art Unki Putra Shri Rajkumar Raikwar.
0: Adla Puruskar Bhe Marnoparant Shri Bhagwan Das Raikwar ko diya ja raha hai jo unke पुत्र माननीय राष्ट्रपति से ग्रहण करेंगे श्री

0: भगवान दास रायकवार पारंपरिक बुंदेली मार्शल आर्ट्स और लोक कलाओं के संरक्षक तथा गुरु के रूप में व्यापक रूप से सम्मानित हैं।
1: श्री भगवान दास रायकवार इज वाइडली रिस्पेक्टेड एज ए पेट्रन एंड टीचर ऑफ ट्रेडिशनल बुंदेली मार्शल आर्ट्स एंड फोक आर्ट्स इंक्लूडिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ वेपन ट्रेनिंग एंड मूवमेंट प्रैक्टिसेस।
2: प्रोफेसर के रामस्वामी, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग।
0: प्रोफेसर के रामस्वामी कर्पकम अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि एक मानित विश्वविद्यालय है, के कुलपति कुल अधिपति चांसलर हैं। वो कृषि जैव द्रव्य के रूपांतरण भारत में एनरोबिक माइक्रोबायोलॉजी के संस्थापक तथा प्राकृतिक खेती की दिशा में मृदा जैविकी के पुनरुद्धार के लिए कार्यरत हैं।
1: As a member of planning commission, Professor Ramaswamy pioneered the traditional agriculture through
0: Shri Madhavan Ranganathan Kala Abhinay. And now you will hear from the Madhavan Ranganathan and you will be able to hear from the tailors of the tailors. And Madhavan, first of all, has reached the Prime Minister. He has talked to them, he has accepted their support in the Namaskar Mudra. अब माननीय राष्ट्रपति की ओर कदम बढ़ाए हैं अपने पद्मश्री को ग्रहण करने के लिए। माननीय प्रधान राष्ट्रपति उनको ये सम्मान दे रहे हैं। उनको मैडी के नाम से जाना जाता है, एक सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और लोकप्रिय व्यक्ति हैं।
2: श्रीमती रंजनी एवं श्रीमती गायत्री, कला कर्नाटक संगीत।
1: श्रीमती रंजनी एंड श्रीमती गायत्री are eminent Carnatic musicians recognized for their sustained contribution to Indian classical music as a performing duo for nearly four decades.
0: श्रीमती रंजनी और श्रीमती गायत्री को भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके योगदान के लिए तमिलनाडु सरकार ने कलाई मा मणि पुरस्कार, समगान मंथरा पुरस्कार, बहुत सारे पुरस्कार उन्हें हासिल हो चुके हैं। प्रतिष्ठित कर्नाटक संगीतकार हैं जिन्होंने लगभग चार दशकों से
2: श्रीमती गायत्री
0: गायन का कार्य कर रहे हैं और बहुत प्रतिष्ठित है इस क्षेत्र में।
1: Shrimati Gayatri along with Shrimati Ranjani have received numerous honors in recognition of their contribution to Indian classical music, including the Kalai Mamami Award from the Government of Tamil Nadu.
2: Dr. Anil Kumar Rastogi, Kala Natya Kala.
0: Dr. Anil Kumar Rastogi, a kalakar, a vigyanik, and a parupkari ka anutha mishran hai. डॉक्टर रस्तोगी ने लखनऊ विश्वविद्यालय से जैव रसायन में एमएससी की डिग्री प्राप्त की और बाद में सूक्ष्म जीव विज्ञान में पीएचडी की।
1: डॉक्टर रस्तोगी हैज बीन वर्किंग इन द मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री फॉर 64 इयर्स, हैविंग स्टेज अराउंड 1000 शोज ऑफ 100 प्लेज ऑल ओवर द कंट्री। ही स्टेज्ड हिज 100th प्ले बियॉन्ड द कर्टन इन दिसंबर 2025।
2: प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र नाथ रॉय, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग।
0: प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र नाथ रॉय रसायन विज्ञान के प्रोफेसर, उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय में विज्ञान और कला संकायों में पूर्व डीन और अलीपुर द्वार विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति हैं।
1: बियॉन्ड एकेडमिया ही इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोशल वर्कर, पर्टिकुलरली फॉर द एफर्ट्स इन अपलिफ्टिंग द कॉमन पीपल। ही हैज डोनेटेड ऑन सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्कूल्स ऑन बिहाफ ऑफ हिज पेरेंट्स for the development of the society.

0: श्री सतीश शाह मरणोपरांत कला अभिनय, उनके भाई श्री अरविंद मामनिया।
1: श्री सतीश शाह उनको मरणोपरांत ये सम्मान दिया जा रहा है। उनका निधन 25 अक्टूबर 2025 को हो गया था। सतीश शाह रंगमंच, टेलीविजन और सिनेमा में भारत के सबसे सम्मानित तो लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक थे, जो अपनी बेमिसाल कॉमिक टाइमिंग, बहुमुखी प्रतिभा और गहरे मानवीय भावों के प्रदर्शन के लिए जाने जाते थे।
2: His roles in the films like जाने भी दो, यारो, मैं हूं ना, ओम शांति ओम एंड numerous other mainstream and parallel films।
0: प्रोफेसर प्रतीक शर्मा, चिकित्सा गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी।
2: You'll be remembered by many. Next is Professor Pratik Sharma. He's a professor of medicine at the University of Kansas School of Medicine and holds the Ernest Blaylock

0: endowed professorship at the Kansas University Cancer Center.
1: Professor Sharma, artificial intelligence, gastroenterology, endoscopy और GI cancer क्षेत्र में एक विश्व प्रसिद्ध विशेषज्ञ हैं। उन्होंने gastroenteritis रोगों के और कैंसर के रोगों के निदान के लिए अपना
2: खेल क्रिकेट।
0: The man in blue and also in whites when he plays test cricket today can be seen wearing a formal black bandgala two-piece suit, walking up to the president to receive Padma Shri. A master stroke.
1: बिल्कुल और भारतीय खेल में उनके उत्कृष्ट योगदान को देखते ऋषि शर्मा को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है. इन्हें अर्जुन पुरस्कार और भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी प्राप्त है.
0: As captain of the international team, Shri Sharma had led India to significant global triumphs, including ICC Men's T20 World Championship 2024.
1: अगला नाम सरदार इंद्रजीत सिंह सिद्धू. पंजाब पुलिस से उप महानिरीक्षक के रूप में सेवानिवृत्त एक प्रेरणादायक पूर्व IPS अधिकारी हैं जिन्हें व्यापक रूप से झाड़ू योद्धा के रूप में जाना जाता है. उन्होंने स्वच्छता के प्रति अपनी मौन लेकिन शक्तिशाली प्रतिबद्धता के लिए राष्ट्रव्यापी प्रशंसा हासिल की है.
0: बॉर्न ऑन 6 जून 1938 इन विलेज गग्गरपुर डिस्ट्रिक्ट संगरूर पंजाब श्री सिद्धू स्टिल वॉकिंग टॉल टू रिसीव हिज अवार्ड. He joined the Punjab Police as an inspector in 1963. In 1981, he was promoted to the Indian Police Service, IPS.

0: Shri Raghupat Singh Marnoparant Krishi, unki patni Shrimati Premvati.
1: श्री रघुपत सिंह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है. इनका निधन 1 जुलाई 2025 को हो गया था. आप एक प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक थे और पारंपरिक बीजों के संरक्षण और प्रचार के लिए आपको जाना जाता है. मुरादाबाद जिले के समथल गांव में आप जन्मे थे.
2: श्री सिंह पास्ड अवे ऑन 1 जुलाई 2025. ही वाज आल्सो एक्टिव इन सोशल लाइफ. He contested the legislative assembly elections from Chandosi constituency as an independent candidate in 1980 and 1985 but did not win. Later he won the election as a member of the block panchayat Bilari in 1995 and again in 2020.
1: Shri Raghupat Singh ji ki dharmapatni ye samman grahan karte hain.
0: Shri Khemraj Sundaryal Kala Hatkarga Bunai.
1: उत्तराखंड के सुमरी गांव के एक साधारण परिवार में जन्मे श्री सुंदरयाल ने सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान श्रीनगर उत्तराखंड से हथकरघा प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा हासिल किया. खेतों की जुताई से लेकर भारत में वस्त्र परिदृश्य को बदलने तक की उनकी यात्रा अद्वितीय दृढ़ता, अनुशासन और उत्कृष्टता के प्रति समर्पण को दर्शाती है.
2: श्री सुंदरयाल आर्टिकुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड हट्टा टेक्निक इन पंज दरी लूम फॉर रिप्लेसिंग पंजा एंड इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी ऑफ वीवर्स. Also in 1980, he introduced polyester yarn in hand loom under Petrofil project.
0: Dr. Budhari Tati, Samaj Seva.
1: माता शंखिनी महिला उत्थान केंद्र हिरनार के अध्यक्ष डॉक्टर बुधरी ताती आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं को शिक्षित करने और उन्हें स्वरोजगार में आत्मनिर्भर बनाने के अपने निरंतर प्रयासों के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक सेवा गतिविधियों में भी भाग लिया है.
2: डॉक्टर बुधरी विद द हेल्प ऑफ सोशल सपोर्ट स्टार्टेड ट्रेनिंग फॉर वीमेन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बाय कंस्ट्रक्टिंग ए परमानेंट वीमेन्स ट्रेनिंग सेंटर बिल्डिंग इन बारसू by building the Hiranar Women's Upliftment Center. They are working to empower women with self-reliance.
0: Dr. Kumarasamy Thangaraj, Vigyan Evam Engineering.
1: Dr. Thangaraj ke anuvanshik adhyan ने पहली बार यह स्थापित किया कि अंडमान जनजातियां प्रथम आधुनिक मानव हैं जो लगभग 65,000 साल पहले अफ्रीका से बाहर चले गए थे. यह प्रारंभिक मानव प्रवासन के स्पष्टीकरण में एक बड़ी सफलता है.
2: कुमारस्वामी थंगराज

0: the CSIR Bhatnagar Fellow at the CSIR Center for Cellular and
1: Shri
0: Molecular
1: Rabilal
0: Biology,
1: Tudu,
0: Hyderabad.
1: Marnoprant, Sahitya Evam Shiksha, Unki Patni, Shrimati Hiramani Tudu.
2: Shri Rabilal Tudu, Marnoprant, Padma Shri Se Sammanit Kiya Ja Raha Hai. Aapka Nidhan 4 June 2026 Ko Ho Gaya. Aap वर्धमान पश्चिम बंगाल से संथाली साहित्य के लेखक थे जिन्होंने संथाली नाटक और भाषा संरक्षण में बहुत योगदान दिया है. उनकी धर्मपत्नी पद्मश्री माननीय राष्ट्रपति से लेते हुए.
0: श्री टुडू वॉज अवॉर्डेड विद साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 2015 फॉर हिज प्ले पारसी खाते इन द संथाली लैंग्वेज कैटेगरी. In addition to his national recognition, he received the Banga Bhushan Award from the Government of West Bengal in 2022, honoring his significant contribution to Santhali literature and culture.
1: Shri Naresh Chandra Dev Verma, Sahitya Evam Shiksha.
2: और अब पद्मश्री में अगला नाम पुकारा गया है श्री नरेश चंद्र देव वर्मा का. आप त्रिपुरा राज्य में साहित्य, भाषा, संस्कृति और सामाजिक विषयों के क्षेत्र में अत्यंत प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति हैं जिनका प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर समान रूप से व्याप्त है. इन क्षेत्रों में उनके योगदान ने संपूर्ण समुदाय पर एक गहरा और चिरस्थायी प्रभाव छोड़ा है.
0: एट प्रेजेंट श्री वर्मा सर्व्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ द Kokoborok Sahitya Parishad, a leading literary organization dedicated to the promotion and development of the Tripuri language.
1: Shri Shashi Shekhar Vempati, Sahitya Evam Shiksha.
2: श्री शशि शेखर वेम्पटी डीप टेक फॉर भारत फाउंडेशन के सह संस्थापक हैं. इससे पहले वो भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती के सीईओ के रूप में कार्य कर चुके हैं. इन्हें दूरदर्शन और आकाशवाणी के आधुनिकीकरण में इनके क्रांतिकारी नेतृत्व के लिए अपार प्रसिद्धि प्राप्त है.
0: एज द यंगेस्ट सीईओ ऑफ प्रसार भारती बिटवीन 2017 टू 2022 श्री वेम्पटी रोज टू द चैलेंज बाय लॉन्चिंग द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म एंड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम्स.
2: श्री चिरंजी लाल यादव उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के प्रसिद्ध पीतल उत्कीर्णक हैं. आपने विदेशों में भी अपनी कला का प्रदर्शन किया है. वर्ष 2010 में ढाका बांग्लादेश गए और 2015 में उन्होंने भारत सरकार के हस्तशिल्प निर्यात वर्धन परिषद के माध्यम से फ्रैंकफर्ट जर्मनी में अपनी कला का प्रदर्शन किया.
0: श्री यादव सर्व्ड एज मास्टर क्राफ्ट्समैन फ्रॉम 1980 टू 1982. ही हैज टॉट ब्रास एनग्रेविंग टू 30 चिल्ड्रन इन पुरी डिस्ट्रिक्ट ओडिशा. ही ऑल्सो ट्रेंड 10 चिल्ड्रन इन कार्विंग वर्किंग मुरादाबाद इन 2011 थ्रू द ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया.

0: राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान की धुन सभागार में मौजूद नमहा रेजिमेंट सेंटर के मिलिट्री बैंड द्वारा प्रस्तुत बैंड मास्टर सूबेदार बीपी गोरिंग गोरुंग के नेतृत्व में।
1: और व्हाट अ वंडरफुल इवनिंग फॉर द रिसिपिएंट्स व्हेन दे केम टू दिस हॉल दे वर स्टैंडिंग टॉल बट नाउ दे आर वेयरिंग दोस मेडल्स ऑन देयर चेस्ट व्हाट अ प्राउड मोमेंट।
0: गर्व के पल होते हैं नितिश ये और ज़िंदगी ये मेमोरीज रहती हैं। और अब माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री गंतव्य मंडप से बाहर प्रस्थान करते हुए सभी को नमस्कार करते हुए
1: and of course the recipients will now stay put for a ceremonial photograph with honorable president of india।
0: इस समय हम देख रहे हैं सभी लोग अपने अपने स्थान पर पुनः बैठ गए हैं। सभागार का वातावरण गर्व प्रेरणा और सम्मान की भावना से ओतप्रोत है। आज सम्मानित सभी विभूतियां आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। और इसी के साथ वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों के दूसरे नागरिक सम्मान समारोह का सफलतापूर्वक समापन हुआ। ये समारोह राष्ट्र की ओर से उन महान व्यक्तित्वों को नमन है जिन्होंने अपने कर्म और योगदान से भारत को समृद्ध बनाया है। आकाशवाणी की ओर से सभी सम्मानित विभूतियों को हार्दिक बधाई। आप सुन रहे थे राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप से पद्म पुरस्कार समारोह 2026 का सीधा प्रसारण। तकनीकी प्रमुख श्री जितेंद्र भरूथी के साथ तकनीकी टीम के सदस्य थे शक्तिधर ध्यानी, अशोक कुमार मिश्रित, सुमित कटियार और हेमराज मीणा। ओबी इंचार्ज थे मधुलिका श्रीवास्तव। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे प्रमोद कुमार। और अब अपने साथी कमेंटेटर नितिश अरोड़ा के साथ मैं शालिनी मित्तल आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलती हूँ। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रपति भवन से भारत की माननीय राष्ट्रपति

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ शाम के 6:10 और 14 सेकंड और ये वक्त है आपके प्रिय प्रोग्राम सदाबहार गीतों का।

जिंदगी के सफर में जब भूलने भुलाने की बात चली है तो जिंदगी जीने के लिए कभी कुछ भूल जाना बेहतर होता है तो कभी कुछ याद रखना। कहते हैं इन रास्तों में कि जिंदगी के रास्ते खत्म नहीं होते, मंजिलें वही हैं जहां आपकी ख्वाहिशें थम जाएं। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं, प्रोग्राम चल रहा है सदाबहार गाने।

0: Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
1: Namaskar, Market Mantra ke taza ank mein aapka swagat hai. Aadhe ghante ke is karyakram mein hamesha ki tarah hum desh aur duniya ki chuni hui karobari, aarthik aur share bazaar se sambandhit taza khabron ko lekar hazir hain. हमारे साथ स्टूडियो में आज चर्चा के लिए आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के वरिष्ठ विश्लेषक प्रकाश चावला. प्रकाश जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: नमस्कार, धन्यवाद.
1: आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस डिक्लाइन, सेंसेक्स ड्रॉप्स नियरली 900 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स बिलो 23,850. एशियन स्टॉक मार्केट इंडिसेस

0: This end in negative territory, and the government is making advanced preparations to deal with possible impact of a weak monsoon caused by El Nino, says Union Minister Shivraj Singh Chauhan.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज हुई गिरावट. सेंसेक्स लगभग 900 अंक लौट का, निफ्टी 23,850 के स्तर से नीचे आकर हुआ बंद. बिकवाली के दबाव में एशिया के प्रमुख शेयर बाजार भी घाटे में रहे और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा अल नीनो के प्रभाव से मॉनसून की वर्षा कम रहने की आशंका के प्रभावों से बचने के लिए सरकार अग्रिम तैयारियां कर रही है.
0: And before we take our main stories in detail, here is a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: आइए अब शुरुआत करें घरेलू बाजार से. घरेलू शेयर बाजार में आज बिकवाली तेज रही. प्रमुख सूचकांक 1.2% घाटे के साथ बंद हुए. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिले गिरावट के संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में निवेशकों पर भी बिकवाल हावी दिखे. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में आज 893 अंक घटकर 76,201 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 279 अंक कम होकर 23,824 दर्ज हुआ. विस्तारित बाजार की ओर आपको लिए चले तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में मिड कैप 100 इंडेक्स 1% से अधिक घाटे में रहा, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 0.5% नुकसान के साथ बंद हुआ.
0: Benchmark domestic equity indices declined sharply at 1.2% today, mirroring losses across global markets. Sensex plunged by 893 points to close at 76,201, while Nifty shed 279 points to settle at 23,824. Meanwhile, in the broader market on the NSE, the mid-cap 100 index slipped over 1%, while the small-cap 100 index lost 0.5%. Concerns over a weak monsoon and its potential impact on economic growth further weighed on investor sentiment. Earlier markets opened on a subdued note and traded in positive territory for some time. However, sentiment weakened in the second half of the session, pushing indices into negative territory and leading to a sharp sell-off by the close amid Nifty futures and options expiry.
1: नजर डालें सेंसेक्स पैक पर तो 30 में से 26 कंपनियों को आज नुकसान उठाना पड़ा है. घाटा उठाने वालों में सबसे आगे रही कंपनी इन्फोसिस, जिसके शेयर 3.4% लुढ़क गए. टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को 3.2% और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 2.7% का घाटा उठाना पड़ा. उधर लाभ कमाने वाली चुनिंदा कंपनियों में पावर ग्रिड के शेयर 0.8% लाभ में रहे. एक्सिस बैंक को 0.3% का मुनाफा हुआ और सन फार्मा के शेयर 0.2% बढ़त के साथ बंद हुए.
0: Among the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, all sectors ended in negative zone except healthcare, which rose 0.6%. Among the key decliners, metal tumbled 3%, IT fell by 2.2%, and PSU banks lost 2.1%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as shares of 2,794 companies declined, 1,496 companies advanced, and 157 companies remained unchanged.
1: नजर डालें रुपए की स्थिति पर. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 6 पैसे कमजोर हुआ. 94.74 रुपए के स्तर पर बंद हुआ. उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतरदिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 101.2 पर कारोबार कर रहा था. प्रकाश जी, बाजार में पिछले कुछ सत्रों में हमने अच्छी खासी तेजी देखी, कारोबारी सप्ताह की शुरुआत भी ठीक ठाक रही, लेकिन आज बाजार पर फिर से बिकवाल हावी हो गए. क्या प्रमुख कारण रहे? केवल भारत ही नहीं बल्कि एशियाई बाजारों में भी हमने नरमी देखी, यूरोप से भी कमजोर संकेत आ रहे हैं, क्या प्रमुख कारण?
2: पूरे संसार में आज उथल पुथल का माहौल रहा
1: जी.
2: और पैराडॉक्सिकली मतलब ये एक विडंबना है कि उस दिन हुआ जब उम्मीद ये थी कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो डील हुई है उससे और राहत मिलेगी, पेट्रोल प्राइसेस काफ़ी कम हुए हैं
1: जी,
2: और ये उम्मीद की जा रही थी. सडनली एक सुबह एशिया मार्केट जब खुली तो जो सबसे ज़्यादा धड़ाम से गिरा वो साउथ कोरिया का इंडेक्स था, तकरीबन 10%, एक दिन में 10%, बहुत बड़ा अपहीवल हो जाता है. उससे पूरा सेंटिमेंट बिगड़ गया ऑल ओवर. और जैसे अर्जुन जी ने अपने रीड आउट में कहा, आईटी शेयर्स जो थे उन्होंने इस मैक्सिम

0: ब्रंट फेस किया है इसका, मेटल्स भी ब्रंट फेस किया। तो जो एआई को लेके एक फ्रेंजी चल रही थी पीछे दिनों में, तो कहीं ना कहीं उसका रियलिटी चेक नजर आया कि भाई ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टमेंट हो चुका है या पाइपलाइन में है इन्वेस्टमेंट। तो उसका एक रियलिटी चेक जब हुआ तो एक अंदेशा होने लगा इन्वेस्टर्स को, और ये सब करते सेंटीमेंट बहुत बिगड़ा आज। और अभी यूएस फ्यूचर्स भी अच्छे नहीं दिख रहे, यूरोप भी खराब है, एशिया तो आपको मैंने जिक्र किया साउथ कोरिया का,
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: ये इन सब के चलते हम भी इस लपेटे में आए, लेकिन हमारा नुकसान थोड़ा कम हुआ है बिकॉज हम गिरे हैं कोई तकरीबन 1.6%, और बाकी मार्केट्स तो ब्लीड कर रहे थे।
1: हम एशिया की चर्चा भी श्रोताओं कर लेते हैं, एशियाई बाजार पर भी नजर डालते हैं, क्योंकि बड़ी गिरावट है। कल रिकॉर्ड स्तर पर कई सूचकांक पहुंचे थे, जबकि आज बड़ी गिरावट, जैसा कि हमारे विशेषज्ञ प्रकाश जी ने बताया कि दक्षिण कोरिया का कोस्पी 10% लुढ़क गया। कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव को रोकने के लिए सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल हुआ। 20 मिनट तक स्थायी रूप से कारोबार निलंबित भी रखा गया। उधर निक्केई 225 सूचकांक में 3.5% की गिरावट हुई। हांगकॉन्ग का हैंगसेंग 1.8% घाटे में रहा। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 1.4% की गिरावट हुई। ताइवान का ताइएक्स भी 1.3% नीचे आ गया। उधर सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स बिना किसी उतार चढ़ाव के अपने पूर्व स्तर पर बंद हुआ। यूरोप के प्रमुख सूचकांक यानी शेयर बाजार भी समाचार तैयार किए जाने तक घाटे में चलते दिख रहे थे। अंतरदिवसीय कारोबार में लंदन का फुटसी 100 0.5%, फ्रांस का कैक 40 0.6% और जर्मनी का डैक्स 0.9% नुकसान के साथ कारोबार कर रहा था। प्रकाश जी एक बार फिर लौटे बाजार में, जैसा कि आपने कहा कि ईरान इराक नहीं बल्कि ईरान और अमेरिका, इसके बीच में शांति की खबरें पूरी दुनिया में अच्छे संकेत देंगी, और वो दिखे संकेत भी, क्योंकि एशियाई बाजारों में कल की अच्छी खासी
0: नहीं,
1: बढ़त।
0: पेट्रोल में बड़ी करेक्शन
1: हाँ,
0: हुई है,
1: और
0: बड़े अच्छा हुआ है।
1: उसके बावजूद आज अचानक कुछ न कुछ तो वजह रहा होगा कि हर जगह पैनिक बटन जैसे दब गया हो, और सबसे अधिक प्रभावित एशियाई बाजार दिख रहे हैं, अपने यहाँ भी बाजार प्रभावित हुए।
0: हुआ क्या कि पिछले हफ्ते, अब इनफैक्ट कल आईटी की बहुत बड़ी कंपनी है
1: जी
0: अमेरिका की, उसके जब रिजल्ट्स आए और उसके आउटलुक, आईटी आउटलुक देखा ग्लोबल, तो उसमें एक अंदेशा आया कि जो आईटी स्पेंड होता है कंपनियों का वो कम होने वाला है। और अब पीछे जो एक फ्रेज बोलते हैं उसको Mag 7 बोलते हैं, मैग्निफिसेंट 7 कंपनीज
1: जी
0: में
1: जी जी
0: वो बिलियन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, है तो शेयर होल्डर का पैसा ना,
1: जी जी
0: तो वो जो पैसा कर चुके हैं तो लोगों के मन में अंदेशा आने लगा और ट्रिगर सा हो गया। एक्सेंचर कंपनी है वहाँ की, तो उनके रिजल्ट्स आए थे और उससे लोगों को एक अंदेशा आने लगा कि आईटी स्पेंड जो है इसकी कहीं ना कहीं तो लिमिट होनी चाहिए ना, हम अंधाधुंध तो पैसे नहीं लगा सकते। तो ऐसा अभी कोई डिसीशन नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट ठीक नहीं है एआई का, ज्यूरी स्टिल आउट, ऐसा नहीं है कि भाई कोई एआई एआई इज गोइंग टू बी हेयर, वो हमारे साथ रहने वाली है, ये तो
1: जी
0: कोई इसमें दो राय नहीं है, लेकिन बीच बीच में रियलिटी चेक, इस तरह के जर्क्स आते रहेंगे, तैयार रहना चाहिए।
1: जी प्रकाश चावला जी, यू आर टॉकिंग अबाउट द आईटी इंडेक्स व्हिच फेल बाय 2.2% इन ट्रेड टुडे, एंड इट्स फॉलोइंग द ट्रेंड सेट बाय नैसडैक फ्यूचर्स व्हिच हैज गॉन डाउन बाय 3%। वी हैव प्रोमिनेंट आईटी स्टॉक्स which have gone down by as much as 9% in the US itself, and right now the US stock market will also open and we'll see results as well. But conversely, in our market today, in the cash market, DIIs were net buyers to the tune of 680 crore rupees. FIIs, FPIs were marginally net buyers to the tune of almost 18 crore rupees. So they were being fence sitting. The sell-off has been carried out by whom? Retail investors today, or is it a combination of everyone?
0: No, it's a combination. It's, you can't really pinpoint. But what have happened is we were bleeding less, far less than some other Asian market, because we didn't have this kind of a frenzy around AI. Today's it's all AI bleeding, AI-led bleeding. So this frenzy was not around Indian market anyways. The frenzy was around Nasdaq and Korean and to some extent Taiwan. So we were spared this brunt today because we were not participating in a frenzied kind of a rally which was witnessed in the last few months. That's the reason.
1: What is the futures and options?

0: Market telling you today it was the Nifty futures and options expiry as well. Somehow derivatives and the cash market, they also move in tandem. How do you see next month based on what's happened today?
1: Well, it's very difficult, especially this trading, day trading, futures and options trading. They are a function of data. And when you have a big event like what happened today, the technical data also goes for it doesn't really tell you anything. What you are suggesting, the data expiry, it all, it's fine if the things are in a going in a smooth manner. Suddenly a big event, then technical analysts also find it very difficult to see what kind of outlook is there.
2: यहाँ पर प्रकाश जी फिर यदि आशंका के बादल संदेह के रूप में क्या बड़े स्तर पर जो सटोरी हैं वो दुनिया के बाजार पर हावी दिख रहे हैं यानी मैग सेवन के नाम पर या कह लें कि जो एआई का एक अंधाधुंध हर दिशा से निवेश उसी ओर बढ़ता नजर आ रहा था उसका बुलबुला फूटता संकेत तो नहीं दे रहा क्या कहना है
1: शेयर होल्डर्स बिग जो मैग सेवन के शेयर होल्डर्स और सटोरी है जिनका आपने जिक्र किया
2: जी
1: इन दोनों ने फ्रेंजी मिलके बनाई एआई के अब इनको अपने आप ही शक होने लगा भाई हम जो कर रहे हैं कहीं अपने हम हाथ जला तो नहीं बैठेंगे तो ये क्योंकि बिग प्लेयर्स हैं
2: जी जी
1: तो इनके लपेटे में हम सब आ जाते हैं तो जब इनको अपने आप पे संदेह होने लगा तो इन्होंने अपना हाथ खींचना शुरू किया और आप उसका रिजल्ट देखिए आज क्या हुआ
0: सो व्हाट इज गोइंग टू बी द टैक्टिक्स नाउ ऑफ द investors in the market, do you see them short covering tomorrow because of valuations that have come down? We've seen metals go down by 3%. IT, I mentioned 2.2%. PSU banks fell by 2.1%. Are we likely to see a buy-in to the market tomorrow?
1: Very difficult to say this because if you see Nasdaq futures right now, they are in the red. Okay, they are also bleeding. So it's very difficult to say how the market opens tomorrow, how the data pans out. But what has happened is that we were looking, Indian market was looking more or less stable in the past few days. And we found ourselves in a no risk zone, mind you, low beta. Because what has happened was that Indian markets were trading in a band of Nifty 23 around 24,000. And then within 500 band we were trading. So there was no risk of crash. Unless this, until you had this kind of event which has taken place. So in the face of this event, although I am feeling that AI, the way frenzy panned out, and again, people are saying, no, it's not all gone. There'll be some reality check and people will have a rational kind of thing.
0: So when you say low beta, it basically means low
1: risk,
0: volatility.
1: Low risk, low risk.
0: I understand
1: risk,
0: what you're right. saying. Is there any correlation to the currency market? The US currency has become stronger. It's crossed 100. It's 101 right now. Do you see any correlation of a strong US currency and the trend in the US market with what's happening in India?
1: Well, the Indian market, Indian financial system does get impacted by the US interest rates and the currency. So obviously, one of the reasons for our market not to really take a bounce is the US interest rate. We are keeping an eye on the US, the trajectory of the US interest rates. That's important for us.
2: प्रकाश जी कुछ तथ्य बड़े रोचक और कह लें अच्छे निकल के आ रहे हैं अपने बाजार के लिए विशेष रूप से जब दुनिया भर में क्राइसिस दिख रही है दुनिया भर के बाजार नीचे आते दिख रहे हैं वहां भारतीय बाजार अपेक्षाकृत अपनी थोड़ी मजबूती दिखा रहा तो इसमें क्या मुख्य रूप से योगदान हमारे अपने जो निवेशक हैं जो नए निवेशक हैं या जो हमारे संस्थागत निवेशक हैं उनका योगदान है और क्या हम बाहरी झटकों का प्रहार बेहतर तरीके से अब संभालने में सक्षम हो गए अपने बाजार और अपने
1: बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा और बड़ी इंटरेस्टिंग से इसकी सिचुएशन है हमारे जो घरेलू निवेशक हैं उसमें दो तरह के एक तो म्यूचुअल फंड के रास्ते से जाते हैं जो रिटेल इन्वेस्टर है वो अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स को दे देता है जो आगे इन्वेस्ट करता है तो DII जिनको बोलते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो धड़ल्ले से FII कई महीनों से बेचे जा रहा है और हम लोग धड़ल्ले से खरीदे जा रहे हैं तो उसने क्या किया उसने मार्केट को संभाल के रखा
2: जी
1: रेजिलियंस दिखाई हमारे मार्केट को डेप्थ दी अब क्या है कि एक नया तरह का

0: सवाल आ रहा है कि भाई हम ऐसा तो नहीं कर रहे कि हम FIIs को एग्जिट रूट दे रहे हैं
1: जी,
0: भाई बेची आइए, उनको बेचने की हम एक एग्जिट रूट दे रहे हैं। ये सारा चर्न चल रहा है, इंटरेस्टिंग है, ये सही बात है कि हमारी मार्केट स्टेबल है अभी रिलेटिव टू अदर मार्केट्स स्टेबल है, क्योंकि ज़्यादा अब यहाँ कोई उथल पुथल का स्कोप लगता नहीं। लेकिन अगर कुछ विश्व स्तर पर कुछ ऐसी चीज़ हो गई तो फिर अपने आप को हम उस चीज़ से टोटली अनछुआ नहीं रख सकते।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: Well, let's now move on to the U.S. Stock market. Most U.S. equities ended lower yesterday, weighed down by a weakness in technology stocks. Among the major stock market indices, the NASDAQ Composite Index plunged 1.3%, while the S&P 500 declined 0.4%. In contrast, the Dow Jones Industrial Average posted a modest gain of 0.3%. Investors are now closely monitoring the upcoming personal consumption expenditures data, a key indicator that could influence the Fed Reserve's future monetary policy decisions. We have a new Fed chair in the US right now, has left the Fed rate unchanged. But what we have seen in the markets right now, in the stock market indices in the US, is that the tech stocks have taken a huge hit. There's been an impact definitely on the US market. The Dow Jones Industrial Average, in fact, has posted a modest gain of 0.3%. Do you see a shift away from technology now in terms of buy-in?
0: Well, in the US, the interest rate trajectory prior to the US-Iran deal was on the upside. The interest rates are expected, even today, it is expected that the US interest rate might be there for upward revision. People are expecting at least one rate hike this year. But I am expecting that because of this US-Iran deal, the oil prices have corrected a lot. They are trading below $80 per barrel. And if they stabilize around between 75 to 80, then even in the US, the inflationary pressure might come down. So let's see how it pans out, because the US-Iran deal is right now in an interim kind of a stage. So let's see how it works, how it goes from here.
3: Prakash ji, badi achhi baat aapne baat kahi. Yahan par ye hum samajhna chahenge ki Bharat ke liye jo ye samjhauta dono pakshon ke beech mein hua hai, woh kis roop mein pan out karega, hamari jo urja aavashyaktaen hain unko sambhalne mein, unko behtar karne mein ye samjhauta kis roop mein
0: Bharat ke liye badi achhi baat ye hai, kyunki hamara energy dependence kafi import pe hai
3: ji,
0: aur jaise energy prices kam hota hai hamare liye badi rahat ki baat hoti hai. हमारी इकोनॉमी के लिए हमारे मैक्रोज बड़े इम्प्रूव होते हैं, उससे हमारे इन्फ्लेशन पे फ़र्क पड़ेगा, हमारे फिस्कल डेफिसिट पे फ़र्क पड़ेगा, हमारे ओवरऑल गवर्नमेंट बजट पे बड़े पड़ेगा, आम लोगों को महंगाई से जो परेशानी होती है उससे राहत मिलेगी. तो हमारे लिए बड़ा अहम है कि ये डील सक्सेसफुल हो. और हमारे मिडिल ईस्ट में हमारा बहुत स्टेक, हमारा डायस्पोरा है.
3: बिल्कुल, बिल्कुल.
0: हमारे NRIs वहाँ काम करते हैं, हम रेमिटेंस वहाँ से लेते हैं, वहाँ शांति होगी तो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बात है.
2: देयर इज आल्सो अ 60-day विंडो व्हिच इज अलाउइंग चाइना एंड अदर कंट्रीज टू बाय ऑयल फ्रॉम ईरान बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस वेवर बाय द US ऑन इरानियन ऑयल राइट नाउ. देयर सीम्स टू बी अ विंडफॉल रेवेन्यू फॉर ईरान टू द ट्यून ऑफ इन्वेंट्री व्हिच इज स्टिल फ्लोटिंग in the Strait of Hormuz, 67 million barrels, which is still there. Do you see these things improving the South Asian economies, because they're reacting very sharply to what's coming out from the US?
0: Well, what has happened is very interesting. Since 1979, it is for the first time that Iran will be free from any sanctions. Mind you, in the 60 days ahead, the deal will take a final shape. Let's hope it takes a final shape. Imagine Iran, mind you, is a very rich country, has rich reserves of crude oil.
3: Ji.
0: So if all the waivers go on Iran, you will find that there will be a glut of supply, crude oil supply in the world market. And we might see a kind of a glut situation, and it goes to the benefit of Indian economy.
3: Bilkul.
0: And South Asia economy and South Asian economy as well.
2: So central

0: Banks all across will take a decision to cut interest rates. Right now, Fed rate is 3.5 to 3.75%. Do you see our monetary policy also reacting to that?
1: Well, our central banks all over the world will have to keep a close eye on the developments in the Middle East, because the difficult part of the deal is Israel. And how the relation, how the Lebanon-Israel thing spans out, very critical. Let's hope a breakthrough is achieved on that front as well.
2: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभावों से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि देश में अब तक लगभग 43% वर्षा कम हुई है और जुलाई में भी मॉनसून के कमजोर रहने की आशंका है।
3: अलिनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है, और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है। इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे, क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले, मतलब जहां 25 से 50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं, ऐसे 76 जिले हैं, और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले, इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
2: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसे फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और ये कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। क्या प्रतिक्रिया करना चाहेंगे? अल नीनो अब साफ दिख रहा है, मंत्री महोदय स्वीकार कर रहे हैं, ऐसे में क्या हमारी अनिवार्य आवश्यकताएं बन जाती हैं, जहां सरकार काम कर भी रही है और किसानों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए?
1: जैसे मंत्री जी ने कहा, ये जो एफर्ट्स हैं ग्राउंड लेवल पे युद्ध स्तर तक लाने पड़ेंगे
2: जी,
1: किसानों के साथ हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो संकट है ना एल नीनो का, ये काफ़ी गंभीर है। और अच्छी बात है कि सरकार इस तरफ ध्यान दे रही है और तैयारी कर रही है, लेकिन तैयारी को ग्राउंड धरातल तक लाने के लिए बहुत बड़ी तैयारी की जरूरत है।
2: जी जी,
1: जैसे आपने जिक्र किया कि दालों की तरफ आप उधर आप जो खरीफ
2: दलहन तिलहन और खरीफ फसल,
1: हाँ जी, तो उस तरफ दीजिए, उनको हैंड होल्डिंग देखिए और मॉनिटरिंग चाहिए, वीक ऑन वीक बेसिस, मंथ ऑन मंथ बेसिस, तभी जाके बात बनेगी।
2: आइए आगे बढ़ें। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर और भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि वे भारत और अमरीका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सार्थक चर्चा की उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच गोर ने कहा कि भारत और अमरीका मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों देशों के लिए नए आर्थिक अवसर खुलेंगे और अमरीका भारत आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण मजबूती आएगी।
0: In more news, Vice Chairperson of Niti Aayog, Dr. Ashok Kumar Lahiri, today said that the total trade of India has grown by 5.4% in the last quarter. Dr. Lahiri said this while releasing the latest edition of the Trade Watch quarterly report in New Delhi. The Vice Chairperson added that India's exports reached $1.84 trillion and imports grew by 6.5% in the last quarter. Talking about the situation in West Asia, he said that the crisis was temporary and expressed hope that soon peace will prevail in the world. The report released today gives an analysis of India's role in global trade, primarily focus on pharmaceutical trade. Just a brief on pharmaceuticals. You have the APIs and you also have other ingredients and materials which play a very critical role. We import it from China. How are we going to bring down a dependence on China for the pharma industry?
1: Well, that's a long haul. You know, you can't do it in 1 year, 2 years. It takes at least 5 years. You have to, because the entire supply chain, the entire infrastructure, because API is a very complicated kind of complex situation to reduce dependence. So for now, we have to import anyways. But a move in that direction is a welcome move. We need to really reduce our dependence because that's very critical for us.
0: Moving on to the oil market, global crude oil prices extended their decline today amid signs that oil shipments through the Strait of Hormuz

0: returning to normal. Brent crude was trading 0.9% down at $77.24 per barrel, while West Texas Intermediate crude was trading 0.8% down at $73.27 per barrel at the time of the last report. While we've been talking about lifting sanctions on Iran, and we have discussed it as well, how do you see Russia also playing into this? Because the Russia-Ukraine war had come down, even though there are reports now coming in that there is attacks from Ukraine into Russia. How do you see that playing also on the oil prices?
1: As I said earlier, a very interesting situation, and to benefit of India. We are going to see a glut in the global oil supply, and it suits us fine, mind you. So whether it's Russia, whether it's Iran, because oil supply, because of sanctions, if sanctions are eased on Iran, then sanctions relating to Ukraine war might be there in Russia, but we'll have more than made up through Iran.
0: Plus, US also wants to supply us.
1: They are almost desperate to sell it to us.
0: Let's move on to the bullion market. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 1.1% down at 1,46,870 rupees per 10 grams, while silver was trading a 3% lower at 2,28,370 rupees per kilogram a short while ago.
2: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में भी सोने और चांदी की चमक समाचार तैयार की जाने तक थोड़ी फीकी दिख रही थी। अगस्त अनुबंध वाला सोना 1% मूल्य कम होकर 1,46,586 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। उधर जुलाई अनुबंध वाली चांदी भी 2.9% नुकसान के साथ 2,27,574 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही थी। एमसीएक्स में भी सोना कह लें कमजोर दिख रहा, चांदी भी। आने वाले दिनों में सोना किस रूप में बढ़ता दिख रहा है, जबकि दुनिया में तनाव घटने की अच्छी खबरें आ रही हैं, तो ऐसे में सोने की चमक किस दिशा में जाएगी?
1: अभी जो सोना है ना, वो अमेरिका डॉलर जो है, अमेरिकन डॉलर जो है एक रिजर्व करेंसी है ना, तो वो ट्रेड ऑफ चलता है
2: जी।
1: क्योंकि डॉलर मजबूत है, सोना थोड़ा नीचे चलता है, तो ये एक आपस में कशमकश चलती रहेगी। उसी के चलते ये अभी आप देख रहे हैं, तो ये सारा डिपेंड करता है कि डॉलर कैसे बिहेव करता है, ये कैसे सिचुएशन पैन आउट होती है, सारी चीजें उस पे फर्क पड़ता है।
0: प्लस बुलियन इज आल्सो बीइंग यूज्ड एज अ मोड ऑफ पेमेंट विद सैंक्शंस लूमिंग ऑन ईरान एंड रशिया। Now that they have been lifted, do you see further reduction in the bullion market prices?
1: Well, central banks will take a call ki usko kitna aur khareedna hai sona.
2: To ye usi par nirbhar karega. Bas yahi par shrotaon ki aur se Prakash ji, aapka bahut bahut dhanyawad.
1: Shukriya.
0: And before we close, a reminder of the headlines. The benchmark domestic stock market indices decline. Sensex drops nearly 900 points. Nifty settles below 23,850. Asian stock market indices end in the negative territory. And the government is making advanced preparations to deal with possible impact of a weak monsoon caused by El Nino, says Union Minister Shivraj Singh Chauhan. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से हैं। ये पुरस्कार पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री की तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और पार्श्व गायिका अलका याग्निक को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किए गए। सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवो भव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में

0: मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए काम करने का आह्वान किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है, और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी 2026 के स्नातक दाखिलों के परिणाम आज घोषित कर दिए हैं। उम्मीदवार सीयूईटी के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस साल प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार किया। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर्स के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक एलपीजी कैरियर, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजर पाएंगे। कतर में हुए धमाके पर श्री जायसवाल ने बताया कि इस घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई।
2: रास लफान परियोजना में जब वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: भारतीय नौसेना के आधुनिक स्टेल्थ युद्धपोत INS उदयगिरि और पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS कवरत्ती दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के दौरान कल वियतनाम के नारोंग बंदरगाह पहुंचे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच घनिष्ठ और दीर्घकालिक संबंधों तथा बढ़ती हुई समुद्री साझेदारी को दर्शाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 ग्रुप ए में पुर्तगाल का मुकाबला होगा उज़्बेकिस्तान से। ग्रुप एल में रात 1:30 इंग्लैंड का सामना घाना से होगा और वहीं सुबह 4:30 क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में कल सुबह 7:30 कोलंबिया का सामना कांगो से होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Anucha Kumar. President Draupadi Murmu presented the Padma Awards at the second civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Journalist P. Narayanan was awarded the Padma Vibhushan in the category of Literature and Education, and former judge Katie Thomas was given the Padma Vibhushan in Social Work. Former tennis player Vijay Amritraj, actor Mammootty and playback singer Alka Yagnik received the Padma Bhushan Award. This year, the government had announced a total of 131 Padma Awards. These include 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards. The Ministry of External Affairs today informed that 10 Indian-flagged vessels are still in the Persian Gulf region. Addressing media in New Delhi this afternoon, Ministry spokesperson Nandeep Jaiswal said that since the signing of MOU between the US and Iran on the 17th of June, 11 India-bound vessels have transited through the Strait of Hormuz.
2: Since the signing of the MOU on 17th

0: எஃப்எம் கோல்டு அலைவரிசையில் சில நொடிகளில் தொடர்வது டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से हैं। ये पुरस्कार पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और पार्श्व गायिका अलका याग्निक को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवोभव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
2: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है, और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल

0: उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
1: विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्रों में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG वाहक पोत, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। कतर में हुए धमाके पर श्री जायसवाल ने बताया कि इस घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई।
2: रास लफान परियोजना में जब वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
1: भारतीय नौसेना के आधुनिक स्टेल्थ युद्धपोत INS उदयगिरी और पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS कवरत्ती दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के दौरान कल वियतनाम के ना रोंग बंदरगाह पहुंच गए। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच घनिष्ठ और दीर्घकालिक संबंधों तथा बढ़ती समुद्री साझेदारी को दर्शाता है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने नई दिल्ली में रक्षा सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार की समिति की 15वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता और समयबद्ध तरीके से अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने पर बल दिया गया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा भारत पहल के जरिए देश भर में वंदे मातरम कैंप आयोजित करेगा। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को भारत की संवैधानिक और लोकतांत्रिक परंपराओं के बारे में गहरी समझ विकसित करने का अवसर देना है। जर्मनी में ISSF जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत ने आज 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत और युग प्रताप सिंह राठौर ने कांस्य पदक जीता। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए देश पर मिटे।

0: தொடர்வது டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मानसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जर्मनी में जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का दबदबा जारी। आज भारत ने 2 रजत सहित 3 पदक जीते। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शिष्टमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल

0: की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 2026 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त रूप से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक देवोभव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से दृढ़ संकल्प, नवाचार और नागरिक केंद्रित शासन के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह किया। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक निर्णय का उद्देश्य विकसित भारत का निर्माण होना चाहिए। श्री मोदी ने युवा अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान का निरंतर मूल्यांकन करने का भी आग्रह किया। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तथा पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। एक रिपोर्ट।
2: इस साल सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। आज के समारोह में पद्म भूषण 7 लोगों को दिया गया, जिनमें पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूडी और प्रख्यात गायिका अलका याग्निक शामिल हैं। वहीं राजनेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 57 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, मशहूर अभिनेता आर माधवन और प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पत्ति शामिल हैं। वहीं प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। सुपर्णा सेके के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
3: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और जो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। खान मंत्रालय ने 56 महत्वपूर्ण खनिज खंडों और 11 खनन अन्वेषण लाइसेंस खंडों की सफल नीलामी के साथ देश के खनिज मिशन को गति प्रदान की है। मंत्रालय ने नीलामी के सातवें चरण के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इससे अब तक नीलाम किए गए खंडों की कुल संख्या 56 हो गई है। कुल मिलाकर अब तक 88 खंडों की नीलामी हो चुकी है। इस चरण में ग्रेफाइट, दुर्लभ खनिज वेनेडियम, टाइटेनियम, ग्लोकोनाइट और रॉक फॉस्फेट जैसे खनिज शामिल थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए ट्रकों और बसों से बदलने के लिए सरकार डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा कि ये समझौते के अंतर्गत मूल उपकरण निर्माता योजना के अंतर्गत खरीदे गए ट्रकों और बसों के एक्स शोरूम मूल्य पर 8% की छूट प्रदान की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत

0: अंतर्गत दोनों मंत्रालयों में राष्ट्रीय परिवहन गतिशीलता और किफायती आवाजाही व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। केंद्र का मुख्य उद्देश्य सड़क और परिवहन क्षेत्र में दीर्घकालिक योजना, निवेश और नीति निर्माण में सहयोग के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करना होगा। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG वाहक पोत, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि कतर में हुए धमाके में मारे गए भारतीय नागरिकों के शवों को वापस लाने के लिए भारत सरकार कतर के साथ मिलकर काम कर रही है।
1: रास लफान परियोजना में जब वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल ईरान, इथियोपिया, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
1: ब्रिक्स NSA की मीटिंग चल रही है, कल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की चीन के विदेश मंत्री और वहाँ के पॉलिट ब्यूरो के जो चीफ हैं उनसे भी हमारे NSA की द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें उन्होंने जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं उसके बारे में जिक्र किया और ये सकारात्मक बातचीत थी।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने फिलिस्तीन के साथ अच्छे संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमने मानवीय आधार पर फिलिस्तीन को सहायता भी प्रदान की है।
1: सालों से फिलिस्तीन के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और हम लोगों ने उनको विकास की साझेदारी के तहत कई एक सारे प्रोजेक्ट्स मुहैया कराया है। ये प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने द्विपक्षीय तरीके से और साथ ही साथ UNRWA के माध्यम से भी मुहैया कराया है और मानवीय आधार पर उनको सहायता भी प्रदान की है और आगे भी ये कार्य हमारा चलता रहेगा।
0: भारत संयुक्त अरब अमीरात रक्षा साझेदारी पर श्री जायसवाल ने कहा कि हाल के कुछ वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के रिश्तों में काफी सुधार हुआ है और रक्षा साझेदारी की इसमें प्रमुख भूमिका है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेसेग बटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाम के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा है कि पिछली तिमाही में भारत का कुल व्यापार 5.4% बढ़ा है। आज नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री लाहिड़ी ने कहा कि पिछली तिमाही में भारत का निर्यात $1.84 ट्रिलियन तक पहुँच गया और आयात में 6.5% की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ पेट्रोल पर निर्भर न होकर दूसरे विकल्पों की ओर बढ़ना चाहिए।
2: डाइवर्सिफिकेशन मतलब सिर्फ पेट्रोलियम में निर्भर होना नहीं चाहिए, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी, बायोगैस, विंड, सोलर, न्यूक्लियर वो करना चाहिए। और दूसरी चीज है वी शुड एक्सप्लोर मोर सो दैट वी कैन हैव मोर डोमेस्टिक पेट्रोलियम। थर्ड इज वी शुड डाइवर्सिफाई आवर सोर्सेज। एक जगह कुछ गड़बड़ हो गया तो हमें और कहीं से ला पाएंगे।
0: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में

0: कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली, जिससे तापमान में गिरावट आई। अगले 2 से 3 दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में कल तक तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 3 पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत और युग प्रताप सिंह राठौर ने कांस्य पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर टीम स्पर्धा में शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई और चिराग शर्मा की तिकड़ी ने रजत पदक जीता। अब भारत के कुल 15 पदक हो गए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के एक मैच में अमेरिका के ह्यूस्टन में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। वहीं सुबह 4:30 बजे क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 के गोल से हरा दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के 2 समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, this is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says BRICS has vital role in deepening security cooperation and addressing challenges like terrorism and cyber security. President Draupadi Murmu presents Padma Awards at 2nd Civil Investiture Ceremony. Journalist P. Narayanan, tennis legend Vijay Amritraj, actors Mammootty and R. Madhavan and singer Alka Yagnik among renowned recipients. Government says it is making advanced preparations to help farmers deal with the possible impact of weak monsoon caused by El Nino. IMD issues orange alert for thunder squall in Delhi, Haryana, Chandigarh and West Uttar Pradesh till tomorrow. Indian men's hockey team beat arch rivals Pakistan 4-3 in opening match of FIH Pro League in London. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Uzbekistan in Houston, US. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said that in a changing global landscape, BRICS has a vital role in deepening security cooperation and addressing shared challenges from terrorism and cybersecurity to emerging technologies. Prime Minister Modi met national security advisors and senior security officials of BRICS countries, that is Brazil, Russia, India, China and South Africa, in New Delhi this evening. In a social media post, he also highlighted that India's BRICS chairmanship will seek to advance practical cooperation, support the priorities of the Global South and contribute to a safer, more secure and inclusive world. Prime Minister Narendra Modi has stressed on Nagrik Devo Bhava and urged officers to keep citizens at the centre of governance. Interacting with 183 officer trainees of IAS 2024 batch who have been attached as assistant secretaries in various ministries and departments in New Delhi today, Mr. Modi called upon young civil servants to lead India's journey towards Viksit Bharat at 2047. The Prime Minister urged the young civil servants to dedicate themselves to nation building with a strong sense of purpose, innovation,

0: Manthan.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए पारदर्शी सार्वजनिक खरीद में गवर्नमेंट ई मार्केट जैम की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं जैम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेहर कुमार और आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा।
2: मोदी सरकार की 12 वर्ष की यात्रा में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां दर्ज हैं। ऐसी ही एक है डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल सुशासन की एक मिसाल है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जैम पोर्टल। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसने लाखों सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, स्टार्टअप्स और महिला उद्यमियों को नए अवसर प्रदान किए हैं। जैम की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं जैम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार जी। नमस्कार मिहिर जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद प्रियंका जी।
2: मिहिर जी, शुरुआत की जाए जैम की भूमिका के बारे में। 2016 में इसकी शुरुआत हुई, तो आज भारत की जब डिजिटल सुशासन की यात्रा की हम बात करते हैं तो जैम को आप किस प्रकार देखते हैं, कहाँ ये खड़ा है?
3: प्रियंका जी, 2016 के पहले की अगर हम बात करें कि किस तरह से सरकारी खरीदारी की प्रणाली थी, तो जो मैनुअल सिस्टम होता था, टेंडर्स होते थे, कुछ लोगों को पता होता था कि कहाँ पे खरीदारी हो रही है, सूचना का अभाव होता था, फ्रैगमेंटेड सिस्टम था, कुछ लोगों को पता लगा, कुछ लोगों को नहीं पता लगा। जब इसको सुधार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी कल्पना की कि इसको कम्प्लीटली एक डिजिटल मार्केट प्लेस बने जिसमें कि हर किसी को पता लगे कि क्या खरीदारी सरकार करना चाहती है और हर एक छोटे से सूक्ष्म व्यापारी, बड़े व्यापारी, हर किसी को एक मौका मिले जानने का पहले, तो इस दिशा में बहुत सारे कदम सरकार ने उठाए डिजिटल इंडिया के इनिशिएटिव में। उसमें एक बड़ा कदम जो है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस रहा। DGSND एक संस्था होती थी सरकारी खरीद के लिए, उसको बंद करके और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की शुरुआत जो है 9 अगस्त 2016 को हुई और ये अपने तरह का विश्व स्तरीय डिजिटल इनिशिएटिव है।
2: तो ये जो पारंपरिक खरीद प्रणाली थी उससे काफी अलग है और एक पारदर्शिता, जो सबसे बड़ी एक लोगों में संदेह रहता था पारदर्शिता का, वो लेकर आया है।
3: पारदर्शिता लेकर आया है और कंप्लीट एंड टू एंड डिजिटाइजेशन है, तो किसी को किसी से मिलने की आवश्यकता नहीं है, बात करने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर एक छोटे व्यापारी हैं तो आप पोर्टल पे जाइए, देखिए, रजिस्ट्रेशन का सिस्टम आपके लिए, पूरी पंजीकरण जो है वो पोर्टल के माध्यम से कम्प्लीटली हो जाती है, किसी से बातचीत नहीं करने की आवश्यकता है। उसी तरह से खरीदारी के लिए भी आप पोर्टल पे जाइए, आपको जो सामान दिखता है आप वो ले लें। कहते हैं कि अपने में कम्प्लीट सॉल्यूशन देना और ह्यूमन इंटरफेस को हटा देना, जिससे कि शिकायतें आती हैं
2: जी,
3: तो उन शिकायतों को बिल्कुल खत्म कर दिया है।
2: पंजीकरण की बात हुई, अगर

0: कोई व्यक्ति पंजीकरण कराना चाहता है जेम पोर्टल पर, तो क्या व्यवस्था है और इसके अलावा क्या-क्या चीजें चाहिए और क्या सेवाएं उपलब्ध कराता है जेम पोर्टल और नई क्या सेवाएं शुरुआत करने की योजनाएं हैं?
1: पहले मैं बताऊं कि जो कोई भी जो सेलर है, व्यापारी है, वो रजिस्टर करने के लिए जेम पोर्टल पे जाएगा तो उसको वहां पे बहुत सारी लर्निंग वीडियोस भी है जो ये बताएगी कि भाई अगर आप एक विक्रेता हैं तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप रजिस्टर करेंगे, उसकी सारी स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया जो है वहां पे बताई गई है जिससे कि आप उस पर जुड़ें। इसमें ये भी है कि हमारी काफी इंटीग्रेशन है बहुत सारे सरकारी की डाटाबेसेस से, जैसे आपका आधार है, अब आपके आधार की इंफॉर्मेशन हम ले लेते हैं, आपने व्यापारी ने बताया, हम उसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, अगर आपका पैन नंबर है, अगर आप आईटी रिटर्न भरते हैं वो भी ऑनलाइन हम चेक कर लेते हैं, आपका जीएसटीएन है उसको ऑनलाइन हम चेक कर लेते हैं, मतलब आपको जितना सरलीकरण तरीके से किसी को ऑनबोर्ड किया जा सकता है वो हम करते हैं। और जहां तक किस तरह की अपॉर्चुनिटी है तो करीब 10,000 से ज्यादा कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं हमारे यहाँ और 350 करीब सर्विसेज की कैटेगरीज हैं, तो एक बहुत ही बड़ा बुके ऑफ ऑफरिंग है सरकार की तरफ से जिससे कि व्यापारी उद्यमी जुड़ सकते हैं।
0: जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करूं, क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतनी सर्विसेज हैं, तो उसको बढ़ावा देने में जेम की क्या भूमिका है और छोटे व्यवसाय, हम एमएसएमई की बात करते हैं, तो उनको किस तरह से लाभ हुआ है?
1: देखिए, पहले तो एक जगह पे आपको पता लग रहा है कि क्या क्या सरकार खरीदारी करती है, तो एक तो अवसर आपको मिला जानने का कि भाई क्या क्या मौके हैं। दूसरी ये भी है कि उसके साथ आपको ये हम बताते हैं कि सरकार की जो खरीदारी की प्रक्रिया है वो क्या है, तो वो भी आप वहीं पे देख ले सकते हैं और उसके हिसाब से आप जुड़ सकते हैं। और ये कम्प्लीटली हर एक स्टेप पे सारी की सारी जानकारी आपको जो है पोर्टल पे मुहैया होती है। मान लीजिए मुझे कोई सामान खरीदना है, मैं एक सरकारी संस्था हूं तो मेरी टेंडर लगी तो टेंडर की इन्फॉर्मेशन है वो सभी लोगों को दिखता है, प्लस नोटिफिकेशन जाता है लोगों को कि भाई ये सरकार का टेंडर आया है। तो पहले जो होता था कि भाई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, जिसको इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री कहते हैं अंग्रेजी में, कि भाई कुछ लोगों को पता कुछ लोगों को नहीं, वो कम्प्लीटली खत्म कर दिया, पारदर्शिता कम्प्लीटली आ गई है। तो इससे हुआ क्या है कि धीरे धीरे जो व्यापारी छोटे हैं उन लोगों को पता लगने लगा, वो जुड़ने लगे, और आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो 24 लाख सेलर्स हैं जिन्होंने हमसे जुड़ने की अपनी प्रक्रिया पूरी करी है और उसमें से करीब 4 लाख व्यापारी जो है एक्टिव है।
0: जी, तो जो जेम है, एमएसएमई के बारे में आपने बताया, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप्स, एससी एसटी उद्यमियों को भी किस प्रकार से सहायता दे रहा है?
1: एक बात मैं बताना चाहूंगा कि सरकारी नीति ये है कि जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज है, जो लघु और सूक्ष्म व्यापारी हैं, उनको करीब सरकारी खरीद में 25% का मिलना चाहिए। हमारे पोर्टल पे वो 45% से ऊपर है, तो हमारे पोर्टल पे सूक्ष्म और लघु व्यापारी जो है बहुत एक्टिव है।
0: जी।
1: एक तो वो बहुत बड़ा सशक्तिकरण, उसके अलावा अगर हम महिला उद्यमियों को देखें तो महिला उद्यमियों ने जब हमारे साथ जुड़ी तो करीब 8 करोड़ का बिजनेस किया, आज 80,000 करोड़ से ऊपर का व्यापार कर रही है। जो स्टार्टअप है जब वो जुड़े तो 2 करोड़ का उनका व्यापार हमारे साथ शुरू हुआ 2016 में, आज की तारीख में 50,000 करोड़ से ऊपर का ज्यादा का व्यापार वो कर चुके हैं। तो ये जो अवसर मिला है और इस अवसर को लोगों ने लिया है हाथों हाथ, तो ये अपने में दर्शाता है कि व्यापार करना सरकार के साथ जो है बहुत सरल हुआ है।
0: अगर आपको कोई याद हो ऐसा उदाहरण जो आप हमारे श्रोताओं के साथ बांटना चाहें, ऐसी किसी सेलर का या बायर का जो बहुत ही अच्छा हो और रचनात्मक और जो बाकी सभी प्रेरित हो, तो आप प्लीज हमारे साथ इसको बांटिए।
1: जैसे कि एक झारखंड की महिलाओं ने एक बार बिड किया दिल्ली एमसीडी के किसी बिड के लिए सर्विसेज देने के लिए, तो झारखंड के रांची के आसपास की एक महिला उद्यमी उनको दिल्ली का एक ऑर्डर मिला। तो ये दर्शाता है कि कहाँ तक जो है अवसर मिल सकता है और कहाँ आदमी पहुंच सकता है। उसी तरह से आज जो है ऐसे कई उदाहरण हैं। स्टार्टअप में महिला बैंगलोर की, उन्होंने जो है डिफेंस में बहुत अच्छा काम किया है। बहुत सारी और महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं।
0: प्रधानमंत्री ने अगर बात करें तो लगातार स्थानीय उत्पादों और वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने की बात कही है, तो उसमें जेम किस तरह से सहयोग कर रहा है?
1: हमारे पोर्टल पे हमने कुछ डेडिकेटेड स्टोर्स बनाए हैं वोकल फॉर लोकल को दिखाने के लिए, महिला उद्यमों को जो वो कर रही हैं, जो वो करना चाहती हैं, वो शोकेस करने के लिए। तो वो उन स्टोर्स के थ्रू जो पोर्टल से जो भी जुड़ता होगा उसे एक तो वो नजर आता है, दूसरा इसके अलावा हमारी कई संस्थाओं के साथ हमारा चलता रहता है कार्यक्रम जिससे कि हम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनको बताते हैं कि किस तरह से आप रजिस्टर कर सकते हैं, क्या क्या आपके पास अवसर हैं,

0: और भारत सरकार की जो नीति है जैसे ODOP प्रोडक्ट्स हो उसको शोकेस करने का, टेक्सटाइल की कुछ हैंडलूम के प्रोडक्ट्स हैं, इम्पोरियम के प्रोडक्ट्स हैं, ये सारा जो है हम अपने यहाँ शोकेस करते हैं और उनके साथ फिर उनको बताते हैं अवसरों के बारे में जो हमारे पोर्टल के थ्रू हो सकता है।
1: जी, जैसे आपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया तो जो जेम का प्रभाव है केवल खरीद तक सीमित नहीं है, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, जनसेवा जैसे क्षेत्रों में जेम का जो योगदान है वो किस प्रकार है?
0: सरकार की जो खरीदारी की प्रक्रिया है उसमें बहुत अहम बात होती है कि जो सामान आ रहा है वो समय से आए और वो जिस पर्पस के लिए आ रहा है वो पर्पस को फुलफिल कर दे। तो हम लोगों ने बातचीत करके दवाइयों की खरीद, वैक्सीन की खरीद, स्कूल के सामान की किट की खरीद, पोषण अभियान में ट्रैकर के सामान की खरीद, तो तमाम जितनी वेलफेयर इनिशिएटिव्स है सरकार की, जितनी भी जन कल्याण की योजनाएं हैं जिसके लिए खरीदारी की जाती है, वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अपने यहाँ बनाया और उनको हमारी जो कि पारदर्शी प्रक्रिया है उसमें हम लोगों ने इनको काफी एफिशिएंटली इनको करने का भी मौका दिया। जो चीज करीब खरीदारी में मान लीजिए कि पहले 5 से 6 महीने लग जाते थे, अब हम लोगों ने उसको जो है घटा के करीब 2 महीने में कर डाला है। तो सामान सही समय पे आना और लोगों को मुहैया करा देना, ये हमारा जो है उद्देश्य रहा है।
1: अगर प्रौद्योगिकी की बात करें मिहिर जी, तो जेम के विकास में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अब एक नया प्रचलन में आ रहा है और डेटा आधारित नवाचारों के बारे में आप क्या बताना चाहेंगी?
0: इसमें मैं कहना चाहूंगा कि चूंकि ये डिजिटल ऑनलाइन सिस्टम है तो इसके पास शुरू से ही ये कैपेसिटी कैपेबिलिटी भी रही कि यहाँ पे आप एनालिटिक्स जो कहते हैं कि जिस चीज को आप मीमांसा कर सकते हैं, उस मीमांसा की ताकत इसमें शुरू से ही रही। ये इस तरह से बना ही, इसकी कल्पना ही इस तरह से की गई। तो हम लोगों ने क्या किया है कि AI ML की यूज केसेस जो पार्लेंस होती है, जो भाषा होती है AI प्रौद्योगिकी की, उसके हिसाब से हम लोगों ने यूज केसेस डिप्लॉय करी हैं अपने पोर्टल पे, जिससे हम देखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहूँ, हमारे यहाँ एक टूल है प्राइस गैप एनालिसिस टूल, PGA टूल कहते हैं। अब हम देखते हैं कि कोई व्यापारी अगर हमारे यहाँ ऐसा प्रोडक्ट डालना चाह रहा है जिसका कि सामान का जो कीमत है वो हमारे हिसाब से उचित नहीं है, तो हम उनको आने नहीं देते हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है वो ये है कि आप एक विश्वास के साथ चलेंगे, ट्रस्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म। तो मैं दोनों के साथ विश्वास रखता हूँ, हमारे जितने व्यापारी हमारे साथ जुड़ते हैं और जो हमारे खरीदार करने वाले जो हमारे सरकारी संस्थाएं हैं, तो दोनों को विश्वास। तो इस विश्वास को बनाए रखने में कई बार इस लक्ष्मण रेखा को लोग न क्रॉस कर लें, उसके लिए हम लोगों ने AI ML से ये कोशिश करी है कि हम आपको बताएं कि क्या आप कर सकते हैं और कहां ये लक्ष्मण रेखा अगर आप क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जन कल्याण के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हर विभाग आगे ऐसे ही बढ़ रहा है। कई लोग ये सोचते हैं जब हम विश्वास की बात कर रहे हैं कि जो जेम है वो केवल बड़े व्यवसायों के लिए है, तो जो छोटे उद्यमी हैं, जो स्टार्टअप्स हैं और या पहली बार भाग लेने वाले विक्रेता हैं, उनके लिए जेम क्या अवसर देता है?
0: देखिए, जो सरकारी खरीद की जो मूलभूत नीति होती है उसमें हमें ये कहा जाता है और हम उसको अपने यहाँ ढाल के रखे हैं कि भाई सभी को हमें बराबरी का हक देना है। तो कोई छोटा व्यापारी ये ना समझे कि मैं छोटा हूँ तो मुझे ये अवसर कम मिलेगा। तो पहले तो है इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ सप्लायर, जो कहते हैं बिल्कुल मूलभूत नीति होती है, वो हमारे यहाँ रूल इंजन में ही डाला हुआ है। तो उससे ये नहीं हो सकता कि कहीं कोई भी उसको तोड़ने की कोशिश करेगा। और दूसरा जो हमारा लगातार रहा, हमारे यहाँ स्टार्टअप के लिए एक स्टार्टअप रनवे, एक शोकेस भी है, प्लस स्टार्टअप के साथ बहुत सारी संस्थाओं के साथ हमारी बातचीत होती रहती है। तो नए जो उनके प्रयास हैं उनके बारे में लोगों को बताना, उनको हमारे पोर्टल पे अवसर देना आने के लिए, इस तरह से हम उनको जोड़ना चाहते हैं। बड़े व्यापारियों के बराबर ही हम हक देते हैं।
1: विकसित भारत के लक्ष्य की बात करें, जो 2047 तक लक्ष्य रखा गया है, उसकी दिशा में आगे बढ़ते हुए आप सुशासन, आर्थिक विकास और राष्ट्र निर्माण में जो जेम की भूमिका है उसको आप किस तरह से देखते हैं?
0: राष्ट्र निर्माण की जो अभी हमारे विकसित भारत की 2047 की जो पहल है उसमें बहुत आवश्यक है कि जो सरकार की नीतियां हैं जिसमें मेक इन इंडिया एक बहुत बड़ी नीति है, दूसरी नीति ये है कि आप माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को बराबर का हक देंगे, उसको हम लोग हमेशा लेके चल रहे हैं। और हमने ये भी सोचा हुआ है कि धीरे धीरे हम, हमारी पहल ये है कि हम राज्यों तक भी पहुंच रहे हैं, केवल केंद्र के बायर ही नहीं, राज्य के बायर, राज्य के भी जो खरीदार हैं उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं, जिससे क्या हो कि ये जो नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल

0: ये तमाम गुड्स एंड सर्विसेज जो खरीदारी हो रही है उसको सरकार को उसमें सेविंग्स दिलाए, उसमें करप्शन फ्री रखे
1: जी,
0: और उसको सभी लोगों को, जिसको हम कहते हैं ना कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट,
1: जी
0: उसकी तरफ लेके जाए, तो ये हमारी प्रयास रहेगा। और बहुत बड़ा जो इसमें रोल है वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इसको बढ़ाने में रहेगा।
1: बिल्कुल। और अंत में यही जानना चाहूंगी कि आप उन उद्यमियों, स्टार्टअप्स और जो महिला नेतृत्व वाले उद्यमों को और जो युवा जो भाग लेना चाहते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: जेम पोर्टल एक बहुत ही बड़ी पहल है सरकार की, अवसरों का द्वार है। और मेरी यही गुजारिश है सभी लोगों से, यही विनती है, यही संदेश है हमारी तरफ से कि आप ये न सोचें कि सरकार के साथ काम करना कठिन है, सरकार के साथ काम करना बहुत आसान है। मेरी यही गुजारिश होगी लोगों से, पहल करें, आए और जेम के साथ जुड़ें और अपना व्यापार बढ़ाएं।
1: जी हाँ, निसंदेह श्रोताओं, डिजिटल क्रांति के इस दौर में सरकारी खरीद व्यवस्था को पारदर्शी, तेज और सुगम बनाने में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम पोर्टल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और ऐसे ही ये और भी नई सेवाएं और सहूलियत उपलब्ध कराता रहेगा। मिहिर जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे ढेर सारी चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद।
0: धन्यवाद प्रियंका जी।
2: अभी आप सुन रहे थे पारदर्शी सार्वजनिक खरीद में गवर्नमेंट ई मार्केट जैम की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे जैम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार और आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा।
3: मंथन।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने तथा आतंकवाद और साइबर सुरक्षा को लेकर उभरती प्रौद्योगिकी तक साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यवहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवो भवा की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
5: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
4: सर्वोच्च न्यायालय ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें 1993 के कोलकाता बाजार बम विस्फोट मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक दोषी को समय से पहले रिहाई का निर्देश दिया गया था। न्यायाधीश पीके मिश्रा और न्यायाधीश संजीव

सचदेवा की पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दायर याचिका पर अंतरिम राहत दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया है कि ईरान अपने परमाणु केंद्रों की व्यापक निगरानी के लिए सहमत हो गया है। इसके बदले अमेरिका हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही पर पाबंदियों में ढील देगा और कड़े नियंत्रण के अंतर्गत रोकी गई वित्तीय रियायतें जारी करेगा। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेतृत्व ने मौजूदा कूटनीतिक बातचीत के दौरान लचीला रुख अपनाया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने परमाणु निगरानी ढांचे के दायरे को लेकर अमेरिका के दावों को खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने स्पष्ट किया कि ईरान ने अपने विशिष्ट परमाणु केंद्रों की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसियों द्वारा निगरानी के लिए कोई सहमति नहीं दी है। लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया है। भारत के लिए राजेंद्र सिंह, सुखजीत सिंह, अभिषेक और नीलकांता शर्मा ने एक एक गोल किया, जबकि पाकिस्तान के लिए अहमद नदीम, मोइन शकील और अबू महबूद ने गोल किए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 ग्रुप के में अमेरिका के ह्यूस्टन में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। वहीं सुबह 4:30 क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। ग्रुप के अन्य मुकाबले में कल सुबह 7:30 कोलंबिया का सामना कांगो से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Entrance Test or CUET 2026 for undergraduate admissions. Candidates who appeared for the examination can now access their scorecards through the official CUET portal. According to NTA, over 11 lakh candidates appeared for the examination this year. A three-member Special Investigation Team or SIT probing the alleged anomalies in donations and offerings at the Ayodhya Ram Mandir has submitted its initial probe report today. The high-level panel was constituted by the state government to investigate alleged financial irregularities and misappropriation of funds. In hockey, India defeated Pakistan 4-3 in the thrilling FIH Men's Pro League 2025-26 clash in London. Pakistan took a shock lead against the run of play in the first quarter as Ahmed Nadeem scored after a penalty corner. After squandering a number of penalty corners, India finally equalized in the second quarter, courtesy Abhishek Nain's goal. Neelkanth Sharma scored soon after to give India the lead. Sukhjeet Singh added India's third goal with a superb strike. Rajinder Singh sealed the win with a brilliant drag flick from a penalty corner in the fourth quarter. Shakil Moin and Abu Mahmood scored the other two goals for Pakistan. And India finished another successful day at the ISSF Junior World Championship, with the country's shooters adding three more medals, including two silver and one bronze, to their tally in Zoll, Germany. Shivan Arwal won the silver in the men's 10-meter air pistol junior event with an impressive performance, while Jug Pratap Singh Rathore claimed the bronze in the same event. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं पूनम आहूजा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज करते हुए इसे नाकामियों को छुपाने का निराशाजनक प्रयास बताया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीका और ईरान के बीच हुए समझौते ज्ञापन के बाद से भारत जाने वाले 11 जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार कर चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों से पर्यावरण प्रभाव रिपोर्ट जारी करने और स्वच्छ ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्धता जताने का आह्वान किया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एफआईएच प्रो लीग के लंदन चरण के पहले मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हराया और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल का मुकाबला उज्बेकिस्तान के साथ थोड़ी देर में शुरू। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने तथा आतंकवाद और साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित और समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में शुरू हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। एक रिपोर्ट।
2: इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य, सप्लाई चेन और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 2026 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त रूप से मुलाकात की। समाचार कक्ष से अमीषा।
1: विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला 1 एलपीजी कैरियर, 1 कच्चे तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने

0: उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि कतर में हुए धमाके में मारे गए भारतीय नागरिकों के शवों को वापस लाने के लिए भारत सरकार कतर के साथ मिलकर काम कर रही है।
1: रास लफान परियोजना में जब वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल ईरान, इथियोपिया, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
1: ब्रिक्स एनएसए की मीटिंग चल रही है, कल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की चीन के विदेश मंत्री और वहाँ के पॉलिट ब्यूरो के जो चीफ हैं उनसे भी हमारे एनएसए की द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें उन्होंने जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं उसके बारे में जिक्र किया और ये सकारात्मक बातचीत थी।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने फिलिस्तीन के साथ अच्छे संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमने मानवीय अधिकार आधार पर फिलिस्तीन को सहायता प्रदान की है।
1: सालों से फिलिस्तीन के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और हम लोगों ने उनको विकास की साझेदारी के तहत कई एक सारे प्रोजेक्ट्स मुहैया कराया है। ये प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने द्विपक्षीय तरीके से और साथ ही साथ उनरवा के माध्यम से भी मुहैया कराया है और मानवीय आधार पर उनको सहायता भी प्रदान की है और आगे भी ये कार्य हमारा चलता रहेगा।
0: भारत यूएई रक्षा साझेदारी पर प्रवक्ता ने कहा कि हाल के कुछ वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के रिश्तों में काफी सुधार हुआ है और रक्षा साझेदारी की इसमें प्रमुख भूमिका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों पर कहा कि ऐसे बयान पड़ोसी देश की अपनी नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं से ध्यान भटकाने की हताशा भरी कोशिशें हैं। उन्होंने कहा कि भारत इन मनगढ़ंत दावों को पूरी तरह खारिज करता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान की दशकों पुरानी नीति का नतीजा है। पाकिस्तान अपने अवैध और जबरदस्ती कब्जे वाले इलाकों में लोगों का आर्थिक शोषण करता है, बुनियादी अधिकारों से वंचित रखता है और उनका दमन करता है। श्री जायसवाल ने उम्मीद जताई कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उनके गलत कामों और अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से कहा है कि भारत और चीन के बीच स्थिर और सकारात्मक संबंध आपसी विश्वास और समझ को मजबूत करेंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों से अपने परिचालन से होने वाले कार्बन उत्सर्जन, जल उपयोग और भूमि उपयोगी संबंधी जानकारी सार्वजनिक करने का आह्वान किया है। लंदन क्लाइमेटिक एक्शन वीक में संबोधित करते हुए श्री गुटेरेस ने एआई पर्यावरणीय पारदर्शिता पहल का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि एआई कंपनियों को अपनी तकनीक के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन कर उसे सार्वजनिक रूप से साझा करना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि ईरान अपने परमाणु केंद्रों की व्यापक निगरानी के लिए सहमत हो गया है। इसके बदले अमेरिकी हार्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही पर पाबंदियों में ढील देगा और कड़े नियंत्रण के तहत रोकी गई वित्तीय रियायतें जारी करेगा। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेतृत्व ने मौजूदा कूटनीतिक बातचीत के दौरान लचीला रुख अपनाया है। भारतीय नौसेना के आधुनिक स्टिल्थ युद्धपोत आईएनएस उदयगिरी और पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस कवरत्ति दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के दौरान कल वियतनाम के नेहरोंग बंदरगाह पहुंचे। लंदन में एफआईएच हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया है। भारत के लिए राजेंद्र सिंह, सुखजीत सिंह, अभिषेक और नीलकांता शर्मा ने एक एक गोल किया। पाकिस्तान के लिए अहमद नदीम, मोइन शकील और अबू महमूद ने गोल किए। फीफा

0: फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के में अमेरिका के ह्यूस्टन में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। वहीं सुबह 4:30 बजे क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में कल सुबह 7:30 बजे कोलंबिया का सामना कांगो से होगा। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 1 कांस्य पदक हासिल कर सहित कुल 3 पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत और युग प्रताप सिंह राठौर ने कांस्य पदक जीता। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज करते हुए इसे नाकामियों को छुपाने का निराशाजनक प्रयास बताया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीका और ईरान के बीच हुए समझौते ज्ञापन के बाद से भारत जाने वाले 11 जहाज हार्मुज जलडमरू मध्य पार कर चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों से पर्यावरण प्रभावी रिपोर्ट जारी करने और स्वच्छ ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्धता जताने का आह्वान किया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने FIH प्रो लीग के लंदन चरण के पहले मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अभिनीत शुक्ला विद द वर्ल्ड न्यूज। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi says BRICS has vital role in deepening security cooperation and addressing challenges like terrorism and cyber security. India rejects remarks by Islamabad over situation in Pakistan-occupied Kashmir, calls it desperate attempts to cover up its own failings. External Affairs Ministry says 11 India-bound vessels crossed Strait of Hormuz since MOU between US and Iran. UN Chief Antonio Guterres calls on artificial intelligence companies to release environmental impact report and commit to clean energy. Indian men's hockey team beat Pakistan 4-3 in opening match of London leg of FIH Pro League. And in FIFA World Cup, Portugal will take on Uzbekistan in a group stage fixture at Houston in a short while. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said, in a changing global landscape, BRICS has a vital role in deepening security cooperation and addressing shared challenges from terrorism and cybersecurity to emerging technologies. Prime Minister Modi met national security advisors and senior security officials of BRICS countries comprising Brazil, Russia, India, China and South Africa in New Delhi this evening. In a social media post, Mr. Modi also highlighted that India's BRICS chairmanship will seek to advance practical cooperation, support the priorities of the Global South, and contribute to a safer, more secure, and inclusive world. Earlier, the two-day BRICS National Security Advisors meeting concluded in New Delhi. During the meeting, the NSAs and heads of delegation from BRICS member countries exchanged views on security challenges confronting the world. The leaders extended support to enhancing further BRICS cooperation to counter terrorism and cyber risks in a collective manner. They reaffirmed their commitment to combating terrorism in all its forms and manifestations, including through countering the use of new technologies being utilized by them. Speaking at the meeting, National Security Advisor Ajit Doval stressed the need for collective deliberation and cooperation among BRICS nations to address emerging security risks and evolving forms of terrorism in an increasingly digitized world.
2: We need to be cognizant of the new security threats and challenges. Non-traditional threats have transcended national borders and have developed defeat systems against conventional responses. Innovative disruptive technologies, more camouflaged variants of terrorism, cyber threats in a world which is getting increasingly digitized, they all constitute an important threats for us.
1: On the sidelines of the meeting, National Security Advisor Ajit Doval met his Russian counterpart Sergei Shoigu today and discussed their ongoing cooperation under the BRICS framework, including some proposals put forward by Russia. During his meeting with Chinese Foreign Minister Wang Yi, National Security Advisor Ajit Doval underlined that

0: The time is 11 p.m. Please stand by for the news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रस लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदनाएं व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। साथ ही भारत कतर सहयोग को विभिन्न क्षेत्रों में और मजबूत बनाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार एलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
2: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
1: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज

दावा किया कि ईरान अपने परमाणु केंद्रों की व्यापक निगरानी के लिए सहमत हो गया है। इसके बदले अमरीका हार्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही पर पाबंदियों में ढील देगा और कड़े नियमों के तहत रोकी गई वित्तीय रियायतें जारी करेगा। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेतृत्व ने मौजूदा कूटनीतिक बातचीत के दौरान लचीला रुख अपनाया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने परमाणु निगरानी ढांचे के दायरे से को लेकर अमरीका के दावों को खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने स्पष्ट किया कि ईरान ने अपने विशिष्ट परमाणु केंद्रों की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसियों द्वारा निगरानी के लिए कोई सहमति नहीं दी है। पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग के लंदन चरण के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। भारत की ओर से अभिषेक नैन, नीलकांत शर्मा, सुखजीत सिंह और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 11:11 और 5 सेकंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत का। और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं यानी आपका दोस्त फेरोज। तो अब तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: நேரம் 11:15:25. ஆகாஷ்வாணி, நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது சென்னை வானொலியின் 1.1 FM கோல்டு. ஒலிக்கவிருப்பது திரைகானம். இப்போது ஒலிவிழா வருவது இதமான சுகமான பழைய திரைப்பட பாடல்கள். கேட்டு ரசிப்போம்.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने तथा आतंकवाद और साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों NSA की 16वीं बैठक नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण तथा पूर्व न्यायाधीश KT थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभावों से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: जम्मू कश्मीर में संसद की विदेश मामलों संबंधी स्थायी समिति ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। शशि थरूर की अध्यक्षता वाली समिति ने सीमा प्रबंधन, सुरक्षा तैयारियों और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति में सुधार की जानकारी दी, जबकि मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और जन सेवाओं को मजबूत करने पर जोर दिया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबिया खाड़ी क्षेत्र के तीन देशों के दौरे के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे हैं। श्री रूबिया का ये दौरा अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में हुई हालिया कूटनीतिक वार्ता के बाद हो रहा है। इस दौरान वे संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन के नेताओं से मुलाकात करेंगे। बैठकों में क्षेत्रीय सुरक्षा और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा होने की संभावना है। पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग के लंदन चरण के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। भारत की ओर से अभिषेक नैन, नीलकांत शर्मा, सुखजीत सिंह और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। पाकिस्तान के अहमद नदीम ने 3 गोल दागे, लेकिन भारतीय टीम ने बढ़त बनाए रखी और मैच अपने नाम कर लिया। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिम

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अली थानी ने टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने तथा आतंकवाद और साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों NSA की 16वीं बैठक नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश KT थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: रिजर्व बैंक ने ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम TREDS के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME के लिए वित्तीय सुविधाओं को आसान बनाना है। TREDS एक ऑनलाइन मंच है जहां छोटे उद्यम अपने बिलों को बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से नकदी में बदल सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों से कार्बन उत्सर्जन, जल उपयोग और भूमि उपयोग संबंधी जानकारियां सार्वजनिक करने का आह्वान किया है। लंदन क्लाइमेट एक्शन वीक में संबोधित करते हुए श्री गुटेरेस ने AI पर्यावरणीय पारदर्शिता पहल का प्रस्ताव रखा। उन्होंने वर्ष 2030 तक AI डेटा केंद्रों को पवन और सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित करने की अपील की। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम CB जॉर्ज ने लग्जमबर्ग के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जॉर्ज ने कहा कि दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे साझेदारी संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग के लंदन चरण के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। भारत की ओर से अभिषेक नैन, नीलकांत शर्मा, सुखजीत सिंह और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

Yeah.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अली थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने

0: पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने तथा आतंकवाद और साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों NSA की 16वीं बैठक नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार अलनीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है, और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो खाड़ी देशों के 3 देशों के दौरे के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे हैं। श्री रूबियो का यह दौरा अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में हुई हालिया कूटनीतिक वार्ता के बाद हो रहा है। इस दौरान वे संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन के नेताओं से मुलाकात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी से कार्बन उत्सर्जन, जल उपयोग और भूमि उपयोग संबंधी जानकारी सार्वजनिक करने का आह्वान किया है। लंदन क्लाइमेट एक्शन वीक में संबोधित करते हुए श्री गुटेरेस ने AI पर्यावरणीय पारदर्शिता पहल का प्रस्ताव रखा। उन्होंने वर्ष 2030 तक AI डेटा केंद्रों को पवन और सौर ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित करने की अपील भी की। फीफा विश्व कप 2026 में पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागकर टीम को जीत हासिल कराई। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही रोनाल्डो ने विश्व कप इतिहास में नया कीर्तिमान भी स्थापित किया। वो 6 अलग अलग विश्व कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं ग्रुप एल मुकाबले में इंग्लैंड और घाना के बीच मैच जारी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति से हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कल तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चलीं, जिससे तापमान में गिरावट आई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ஒழித்த பாடலுடன் நிறைவு பெற்றது இன்று நெஞ்சம் மறப்பதில்லை நிகழ்ச்சி. தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अली थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने तथा आतंकवाद और साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने ब्राजील, रूस, भारत

0: भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों NSA की 16वीं बैठक नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण तथा पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून से संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है, और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहाँ वर्षा कम रहने की संभावना।
0: उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, IT, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। लखनऊ में हाल ही में हुई आग की घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट मिशन मोड पर कराया जाए। रिजर्व बैंक ने ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम TREDS के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME के लिए वित्तीय सुविधाओं को आसान बनाना है। TREDS एक ऑनलाइन मंच है जहां छोटे उद्यम अपने बिलों को बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से नकदी में बदल सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो खाड़ी क्षेत्र के तीन देशों के दौरे के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे हैं। श्री रूबियो का ये दौरा अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में हुई हालिया कूटनीतिक वार्ता के बाद हो रहा है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिम उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कल तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली जिससे तापमान में गिरावट आई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி ஏஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने तथा आतंकवाद और साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों NSA की 16वीं बैठक नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश KT थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
2: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है।

0: ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है, और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहाँ वर्षा कम रहने की संभावना है।
1: उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। रिजर्व बैंक ने ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम TREDS के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME के लिए वित्तीय सुविधाओं को आसान बनाना है। TREDS एक ऑनलाइन मंच है जहां छोटे उद्यम अपने बिलों को बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से नकदी में बदल सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो खाड़ी देशों के तीन देशों के दौरे के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे हैं। श्री रूबियो का ये दौरा अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में हुई हालिया कूटनीतिक वार्ता के बाद हो रहा है। फीफा विश्व कप 2026 में पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागकर टीम को जीत की अहम भूमिका दिलाई। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। वहीं ग्रुप एल मुकाबले में इंग्लैंड और घाना के बीच मैच जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: தொடர்பது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता के प्रयासों का भी समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने तथा आतंकवाद और साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए की 16वीं बैठक नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रधानमंत्री प्रतिनिधि मंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पत्रकार पी नारायण को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
2: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहाँ वर्षा कम रहने की संभावना है।
1: उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम

की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। लखनऊ में हाल ही में हुई आग की घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट जल्द से जल्द कराया जाए। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो खाड़ी देशों के तीन देशों के दौरे के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे। श्री रूबियो का ये दौरा अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में हुई हालिया कूटनीतिक वार्ता के बाद हो रहा है। फीफा विश्व कप 2026 में पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप ए के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। वहीं ग्रुप एल मुकाबले में इंग्लैंड और घाना के बीच मैच जारी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में भी तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी 29 जून तक किसी तरह का मौसम रहने की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं विभाग ने अगले 2 दिन तक बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।